सुप्रभात श्रोताओ, FM 101.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी खंडवा है। आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 22वीं तिथि, तदनुसार 12 जून 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:56 और 55 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की यह सभा आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी खंडवा है। अब प्रस्तुत है भक्ति रचनाओं का हमारा कार्यक्रम आस्था के स्वर।
1: आस्था के स्वर।

देश वंदना के बाद अब गणेश वंदना, स्वर सुरेश वाडकर का।

आकाशवाणी खंडवा से श्रोताओं, आप सुन रहे हैं भक्ति रचनाओं का हमारा कार्यक्रम आस्था के स्वर। प्रस्तुत है हनुमान अष्टक।

पंडित राजन मिश्र और पंडित साजन मिश्र के स्वर में हम सुन रहे थे श्री हनुमान अष्टक। और अब एक पारंपरिक देवी स्तुति स्वर विदुषी श्रुति साडोलीकर का।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे भक्ति रचनाओं का हमारा कार्यक्रम आस्था के स्वर।
1: आस्था के स्वर।

0: यह आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। अब प्रस्तुत है चिंतन, आलेख रचना वैद्य का और स्वर उमेश कुलकर्णी का।
1: प्रतीक हमारे सांस्कृतिक सूत्र हैं। सूत्र संक्षेप में असंदिग्ध, सारगर्भित और व्यापक अर्थों को प्रकट करते हैं। प्रतीकों के संबंध में वैसा ही है जिस प्रकार से छोटे से सूत्र में अनंत अर्थ समाया हुआ रहता है। एक छोटे से बीज में विशाल वृक्ष का विस्तार छिपा रहता है, उसी प्रकार प्रत्येक प्रतीक के पीछे भव्य भावना की सुगंध छिपी रहती है।

0: यह भावना ही प्रतीक को सार्थक, सामर्थ्यशील और प्राणवान बनाती है। भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो राष्ट्रध्वज कपड़े का एक छोटा ही तो है, उसका कोई विशेष मूल्य भी नहीं है, परंतु सांस्कृतिक और देशभक्ति की भावना से देखा जाए तो वह अमूल्य है। हमारे देश के हजारों लाखों शहीद लोगों ने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए इस राष्ट्रध्वज के सम्मान का संरक्षण किया है। प्रतीक मौन की भाषा है, शांति का संगीत है, संस्कृति की महिमा का मुख गीत है। प्रतीक यानी भाषा के अभाव में भावों को व्यक्त करने की क्षमता, प्रतीकों की उपासना यानी बिंदु में सिंधु को देखने की हिम्मत या गागर में सागर को समाविष्ट करने की शक्ति, प्रतीक यानी शास्त्र रहस्य को संकेत में समझाने वाला अनोखा विद्वान तथा प्रतीक अर्थात जीवन में गहराई तक जाने की साधना। जैसे हम देवी देवता के चित्र मूर्तियां देखते हैं तब स्मरण होता है कि वैदिक काल से संकेतों का या प्रतीकों का उपयोग हो रहा है। भगवान के हाथों में कमंडल, माला, शंख, चक्र, त्रिशूल और डमरू होते हैं। ये छह प्रतीक भी विशिष्ट अर्थ सूचक हैं। कमंडल और माला ब्रह्मा के हैं, शंख और चक्र विष्णु के हैं और त्रिशूल और डमरू शिवजी के हैं। ब्रह्मा सृजन के देवता हैं, उनके हाथ में कमंडल और माला है। कमंडल में जल रहता है, यानी जल यानी जीवन। इस दृष्टि से हमारा प्रत्येक सृजन एवं सृजनकर्ता प्राणवान होना चाहिए। फिर वो शिल्पी हो या चित्रकार, नर्तक हो या संगीतकार, या शिक्षक हो या कोई सांस्कृतिक कृति ही क्यों न हो। कोई भी सृजन प्राणवान तब होता है जब उसके पार्श्व में भक्ति होती है, लगन होती है। माला भक्ति की प्रतीक होती है। कोई भी कला भगवान के चरणों में अर्पण हुई तो उसका रंग ही बदल जाता है और उसकी प्रतिभा 16 कलाओं में निखर उठती है। जैसे मोदक का स्वाद प्रसाद स्वरूप भगवान के श्री चरणों में रखते ही अत्यंत स्वादिष्ट और श्रद्धा से सेवन योग्य हो जाता है, लोग उसे नमन करके ग्रहण करते हैं। हमारे भारतवर्ष में सभी कलाएं मंदिरों में अर्थात भगवान के चरणों में विकसित हुई हैं। हमको भारत की उत्कृष्ट शिल्पकला, नृत्यकला, संगीत प्रवीणता मंदिरों में देखने को मिलती है। आज भी खजुराहो में नृत्य प्रस्तुति, मंदिरों में गायन कीर्तन, आरती व्यक्ति के जीवन को भक्ति से ओतप्रोत कर देती है और कुछ क्षणों के लिए सांसारिक जिम्मेदारियों से दूर हम भक्ति भाव और ईश्वरीय आनंद में डूब जाते हैं। विष्णु पोषण करने वाला पालक देवता है। उनके हाथों में शंख और चक्र है। शंख ध्वनि का प्रेरक है और चक्र गति सूचक। कार्य का पालन करने वाला कार्य प्रमुख समग्र कार्यक्षेत्र में चक्र के समान फिरता रहना चाहिए। वैसे ही शंख के समान तेजस्वी विचारों का उद्घोष करके उससे अन्य कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाना चाहिए। किसी भी कार्य का कर्ता धर्ता या संस्था अगर चक्र के भांति घूम घूम कर कार्य की पूर्णता की जांच करे, देखे परखे और कार्य में आने वाले अवरोधों को दूर करता जाए तो सफलता निश्चित रूप से हासिल होगी। अब बात करते हैं भगवान शंकर की। वे संहार के प्रतीक हैं। उनके हाथ में त्रिशूल और डमरू है। त्रिशूल संहार का प्रतीक है और डमरू संगीत का। संहार या मृत्यु कोई भयानक घटना नहीं है, यह समझाने के लिए शिवजी स्वयं शमशान में रहते हैं। मृत्यु अर्थात जीव का शिव से मिलने जाना। शंकर भगवान डमरू हाथ में लेकर संगीत से सबका सहर्ष स्वागत करने के लिए खड़े रहते हैं। विसर्जन एक महान संस्था है, उसका कार्य भी महान है। भगवान दत्त ने अनेक लोगों को गुरु मानकर उनसे गुण लिए, यह उनकी अतुलनीय विनम्रता है। स्वमतग्राही रहने की अपेक्षा गुणग्राही बना हुआ मनुष्य अनेक लोगों के अनुभवों को आत्मसात करके महान कार्य कर सकता है और इसे ही भगवान ने अपने आचरण द्वारा समझाया है।
1: आप सुन रहे थे चिंतन, यह आकाशवाणी खंडवा है। अब प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान।

उन्हें लगा कि शिव का धनुष तोड़ने का अपराधी होकर भी वो उन्हें ही ज्ञान सिखा रहे हैं। उनकी ये धारणा भी पक्की हो गई कि राम की सहमति से ही उनका छोटा भाई कटुवचन बोल रहा है। श्री राम ने मन ही मन में सोचा कि दोष तो लक्ष्मण का है और मुनि का क्रोध अब उनकी ओर बढ़ रहा है। सच ही तो है कि कभी कभी सीधापन भी भ्रामक होता है, तभी तो लोग टेढ़े लोगों की वंदना करते हैं। किंतु प्रकट रूप में राम ने परशुराम के कुठार के आगे अपना सिर झुका दिया। बोले, स्वामी, जिस प्रकार भी आपका क्रोध शांत हो आप वही कीजिए। भला स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा? सच तो यह है कि मुनिवर का वीरों का सा वेश देखकर लक्ष्मण ने कुछ कह डाला। वैसे वास्तव में दोष लक्ष्मण का भी नहीं, उसने उनका नाम तो सुना था किंतु पहचानने में भूल हो गई। यदि वो मुनि के वेश में आते तो लक्ष्मण ने उनकी चरण धूली ले ली होती।

0: रविन्द्र साठे और श्रीकांत पारगांवकर के स्वर में हम सुन रहे थे श्रोताओं श्री रामचरित मानस गान। ये कार्यक्रम आपकी सेवा में आकाशवाणी खंडवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब प्रस्तुत है कृषि चर्चा।
1: भाई बहनोनी राम राम। हमारी आज की कृषि चर्चा को विषय छे नींबू की खेती। नवाचक स्वर छे माधुरी सेन को। भाई बहनोनी नींबू साइट्रस न लिमोन फूल पौधा परिवार रूटेसी का साइट्रस जीनस में छोटा सदाबहार पेड़ की एक प्रजाति छे। नींबू विटामिन सी को एक समृद्ध स्रोत छे। जी 100 ग्राम संदर्भ मात्रा में दैनिक मूल्य का 64% प्रदान करज। नींबू का रस न छिलका को इस्तेमाल कई तरह का खाद्य पदार्थ न पेय पदार्थ में करो जाए। नींबू का रस को

इस्तेमाल एका खट्टा स्वाद का लेना करियो जाएज, क्योंकि एमा 5 से 6% तक साइट्रिक एसिड हो जी पूरा नींबू को इस्तेमाल मुरब्बा नींबू दही न नींबू लीकर जैसा लिमोन सेलो बनाना में कियो जाए। नींबू का स्लाइस न नींबू का छिलका को इस्तेमाल खाना न पेय पदार्थ में सजाना का तौर पर लोग करज। न नींबू को रस को इस्तेमाल नींबू पानी न कुछ कॉकटेल बनाना में भी कियो जाए। नई नई गर्मी में नींबू पानी पीने का कई फायदा छे। साथ नींबू का पेड़ की पत्ती को उपयोग चाय बनाना न मांस न समुद्री भोजन पकाना का लेना कियो जाए। नींबू की खेती का लेना सबसे पहला अच्छी किस्म का पौधा लगाना चाहिए, जैसा कि कागजी 12 मासी जी साल भर फल देज। पौधा लगाना का लेना दिसंबर फरवरी जून या सितंबर को समय उपयुक्त होए। पौधा का 5 मीटर की दूरी पर लगावा न जैविक खाद को इस्तेमाल करा। नींबू का पौधा 2 से 3 साल में फल देना शुरू करी देज न एक बार लगाना पर 30 साल तक फल देज। बात करा भूमि की तैयारी की तो अच्छी जल निकासी वाली बलुआई दोमट या दोमट मिट्टी चुना साथ।

0: दिसंबर फरवरी जून या सितंबर को समय उपयुक्त होए। पौधा ख 5 मीटर की दूरी पर लगावा न जैविक खाद को इस्तेमाल करा। नींबू का पौधा 2 से 3 साल में फल देनो शुरू करी देज न एक बार लगाना पर 30 साल तक फल देज। बात करा भूमि की तैयारी की तो अच्छी जल निकासी वाली बलुआई दोमट या दोमट मिट्टी चुना। साथ ही नींबू की खेती का लेना हल्की मिट्टी जी अच्छी जल निकास वाली होए वो अनुकूल रहे। नींबू की खेती का लेना पीएच मान 5.5 से 7.5 का बीच होना चाहिए। अच्छी किस्म का पौधा चुना जैसा कि कागजी नींबू, पाती नींबू, कागजी कला, बारहमासी नींबू, इंदौर सीडलेस। एक अलावा भारत में अन्य कई नींबू की प्रजाति भी पाई जाए जिनमें चक्रधर नींबू, सफेद नींबू, गलगल नींबू, खट्टो नींबू, कर्नाटक नींबू न हिमालय नींबू प्रमुख छे। नींबू की प्रजाति न को चयन करता समय जलवायु, मिट्टी न अन्य परिस्थिति का ध्यान में रखा। जुलाई न अगस्त का महीना नींबू का पौधा लगाने को सबसे उपयुक्त समय मान्यो जाए। एखा लगाना का लेना गड्ढा बनावा न इना गड्ढा न 10 से 15 दिन तक धूप लगने का बाद अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद मिलाई खन इनखा भरी देवा। रोपाई का समय पौधा के बीच की दूरी लगभग 4 से 4.5 मीटर तक होनी चाहिए। नींबू का पौधा आमतौर पर बीज या कलम से उगाया जाए। बीज से लगाया गया पौधा अधिक समय लेज न उनमें फल आने में देर हो न कलम से लगाया गया पौधा जल्दी फल देना लगा। बात करा सिंचाई की तो नींबू का पौधा की रोपाई करने का तुरंत बाद एक ही पहली सिंचाई करा। एका बाद मिट्टी में पर्याप्त नमी बनाए रखा, खास तौर पर रोपाई का शुरुआती 3 से 4 हफ्ता तक। नींबू का पौधा की सिंचाई थालो बनाई ख या टपक सिंचाई विधि से आप करी सकोज। न समय समय पर खाद न उर्वरक को भी प्रयोग करा, कीटनाशक न फफूंद नाशक को उपयोग करा, पर जैविक तरीका ख सर्वप्रथम प्राथमिकता देवा। फल पकने पर उनका तोड़ी ख बाजार में बेचा अपना उपयोग का लेने रखा न हर 3 से 4 साल में फसल ख बदलता रहवा जेकासी मिट्टी स्वस्थ रहे। बात करा नींबू की खेती से लाभ की तो नींबू की खेती कम लागत में अधिक मुनाफो दे सकच न एक बार लगाने पर नींबू को बगीचो 30 साल तक फल दे। नींबू की खेती से आप सालाना 5 से 7 लाख तक कमाई सकोज। भाई बहनों नींबू का पेड़ ख ज्यादा धूप की जरूरत नहीं होती है। एक अलैंड ऐसी जगह पर लगावा जहाँ धूप पर्याप्त मिला। नींबू का पेड़ ख नियमित रूप से पानी देना की जरूरत होए खास करी ख गर्मी में। नींबू की खेती एक लाभप्रद व्यवसाय हुई सकज यदि आप सही तरीका से खेती करो। न आज की कृषि चर्चा में बस एतरोज। राम राम।
1: श्रोताओ आप सुन रहे थे कृषि चर्चा स्वर माधुरी सेन का।

0: सुबह बनारस, शामे अवध और शबे मालवा की तो क्या बात है।
1: लेकिन जब साथ में हो निमाड़ की सुरीली धड़कन, तो यहाँ की सुबह भी किसी से कम नहीं है ना।
0: जी हाँ, सुनते रहिए आकाशवाणी खंडवा।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: हम आकाशवाणी खंडवा से बोल रहे हैं और आपको जानकारी दे रहे हैं आज के कार्यक्रमों की।

7:10 पर प्रादेशिक समाचार हम भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे और भोपाल केंद्र से ही जिले की चिट्ठी आप सुनेंगे सुबह 10 बजे। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनहरे पल रोजाना एक तरह आज भी आपके लिए पेश होगा, लेकिन आज सुबह 7:20 पर। आठ बजे सुनिएगा समाचार पत्रिका समाचार प्रभात। 8:15 पर कीर्ति गोखले और पराग गोखले प्रस्तुत करेंगे राग रंग। आज राग आसावरी की बारी।

कार्यक्रम विवरण के बाद आपको सुनवाएंगे आज की ताजा खबर सुबह 6:55 पर, और उसके बाद सुबह 7 बजे सुनेगा भारती राठौर से उनकी वार्ता मीरा की काव्य चेतना।

आपकी उम्मीद ये गीत फरमाइशी फिल्मी गीतों का एक कार्यक्रम होगा सुबह 8:30 से 9 बजे तक और 9 बजे से 10 बजे तक आपको सुनवाएंगे विविध रति सेवा के कार्यक्रम।

0: निमाड़ी लोक गीतों का आनंद आप ले सकते हैं सुबह 10:05 से 10:35 तक, और 10:35 पर होगा नारी जगत कार्यक्रम। रक्तदान विषय पर इस कार्यक्रम में डॉक्टर प्रतीति जैन से मीनू जैन की बातचीत आप सुन सकते हैं। इसके अलावा नियमित क्रम भी होंगे। ग्यारह बजे से सुनिएगा राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम। प्रायोजित कार्यक्रम उमंग शाम 5:30 और युववाणी कार्यक्रम होगा शाम 6:00। आज सुनिएगा शीर्षक संगीत। खेती गृहस्थी कार्यक्रम होगा शाम 7:21 से 8:00 तक, और रात 8:00 हम भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के संबंध में विभिन्न विषयों पर आकाशवाणी द्वारा एक विशेष श्रृंखला का प्रसारण हो रहा है। आज इसकी 12वीं कड़ी सुनिएगा, सेवा के 12 वर्ष जन विश्वास। इसे हम रात 8:00 आपको सुनवाएंगे। ये था कार्यक्रम विवरण।
1: हमारे श्रोता कार्यक्रम में इस बार आपकी मुलाकात होगी सुशील कुमार शर्मा से।
2: जो सामने वाले के चेहरे पे जो मुस्कान दिखाई देती है, उस मुस्कान के लिए मैं सुबह से शाम तक काम करता रहता।
1: तो सुनना ना भूलिएगा हमारे श्रोता इस रविवार सुबह 7:00।
0: आकाशवाणी खंडवा से प्रस्तुत है आज की ताजा खबर। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा आयोजित हायर सेकेंडरी द्वितीय परीक्षा वर्ष 2026 का परीक्षा परिणाम आज 12 जून को शाम 4:00 घोषित किया जाएगा। परीक्षार्थी अपना परीक्षा परिणाम मंडल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकेंगे। जिले के विभिन्न विकास खंड और नगरीय निकायों के मुख्यालयों पर आज 12 जून से 14 जून के बीच जन कल्याण शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इस अवधि में जिले के प्रत्येक विकास खंड नगरीय निकाय मुख्यालयों पर केंद्र एवं प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत छूटे हुए पात्र लाभार्थियों के पंजीकरण के लिए शिविर आयोजित होंगे।

महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और अधिकारों की रक्षा और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग ने एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए महिलाओं की सुरक्षा के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन का शुभारंभ किया है, जिसके माध्यम से प्रदेश की महिलाएं सीधे आयोग से संपर्क कर अपनी शिकायतें, समस्याएं और सुझाव दर्ज करा सकेंगी। टोल फ्री नंबर है 1800-233-6112। नंबर दोहराते हैं 1800-233-6112।

0: उच्च शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए बीएड, एमएड, बीपीएड और एमपीएड सहित अन्य पाठ्यक्रमों के प्रथम चरण में महाविद्यालय आवंटित कर दिए हैं। प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए 15 जून तक प्रवेश शुल्क जमा करा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के सातवें काउंटडाउन के अवसर पर आयुष मंत्रालय भारत सरकार ने 14 जून को सुबह 6:15 से 7:35 तक एक विशेष ऑनलाइन योग सत्र का आयोजन किया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेशवासियों से ऑनलाइन योग सत्र में शामिल होने की अपील की है। खबरें खेल जगत से। फीफा विश्व कप। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 के पहले मुकाबले में मेक्सिको ने साउथ अफ्रीका को 2-0 से हराया और श्रीलंका में जारी ए टीमों की ट्राई सीरीज के दूसरे मुकाबले में अफगानिस्तान ए ने इंडिया ए को डीएलएस के तहत 4 रनों से हराया। मौसम। कल अधिकतम तापमान 40.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। आप सुन रहे थे आज की ताजा खबर, संकलन किया प्रियंका गुप्ता ने।
1: आज की ताजा खबर।
0: यह आकाशवाणी खंडवा है। विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत आइए सुनते हैं भारती राठौड़ की वार्ता मीरा की काव्य चेतना।
2: भक्ति काल हिंदी साहित्य का बहुत महत्वपूर्ण समय रहा है। भक्ति काल में अनेक संत, कवि व समाज सुधारक हुए। वहीं भक्ति काल में स्त्री की सज्जनात्मकता किस प्रकार रही होगी, यह हमें मीरा के काव्य से समझना चाहिए। मीरा का जीवन व व्यक्तित्व एक प्रेरणा बनकर नारी संघर्ष की व्याख्या करता है। मीरा का व्यक्तित्व इसीलिए भी आकर्षक है कि उसने एक ऐसे वातावरण एवं समाज में स्त्री मुक्ति के स्वरों को आवाज़ दी थी। स्त्री के अधिकारों को सीमित करने वाले समाज के विरुद्ध आवाज़ उठाई। मीरा ने लोक लाज कुल श्रृंखला त्याग कर कृष्ण भक्ति का मार्ग चुना। मीरा मेड़ता के संस्थापक राव दूदा की पोत्री एवं रतन सिंह की पुत्री थी। मीरा के पिता का युद्ध में निधन हो गया और माता का बचपन में देहांत। उनकी परवरिश दादा के संरक्षण में हुई। धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति राव दूदा का मीरा पर बहुत प्रभाव रहा। वहीं उन्हें राजनीतिक व दरबारी गतिविधियों की भी अच्छी समझ थी। तीक्ष्ण बुद्धि व सौंदर्य से युक्त मीरा को मेवाड़ के राजा महाराणा सांगा ने अपने ज्येष्ठ पुत्र कुंवर भोज की पत्नी के लिए चुना। दुर्भाग्यवश कुंवर भोज की कुछ समय बाद मृत्यु हो गई, किंतु मीरा ने भोज के साथ सती ना होकर अपना जीवन कृष्ण भक्ति को समर्पित कर दिया। चित्तौड़गढ़ किले के मंदिर में मीरा कृष्ण साधना करते हुए जीवन निर्वाह करने लगी, किंतु राज परिवार में मीरा को संघर्ष करना पड़ा।

कुछ विद्वानों व रचनाओं में मीरा को विष देने की बात भी कही गई। मीरा का जीवन इसी प्रकार की राजनीतिक घटनाओं, षड्यंत्रों और कुचक्रों के इर्द गिर्द घूमता रहा होगा। मीरा ने वृंदावन में भी कुछ समय व्यतीत किया, किंतु वहाँ भी रूढ़िवादी सोच के कारण वह ज़्यादा समय नहीं रुक पाई और गुजरात के द्वारका में आकर रहने लगी। विद्वानों का मत है कि वहीं उनकी मृत्यु भी हुई होगी। राज परिवार से संबंध होने के बाद भी मीरा एक कृष्ण भक्त के रूप में विख्यात हुई, किंतु मीरा को केवल भक्त कहना उचित नहीं होगा। उन्होंने उस समाज का विद्रोह किया जहां नारी को सीमाओं में बांधकर रखा जाता। मीरा कृष्ण भक्ति में लीन होकर नृत्य करती, इसी प्रसंग को पद के माध्यम से समझते हैं। पगे घुंघरू बांधे मीरा नाची रे, मैं सपने तो नारायण की हो गई आप ही दासी रे। लोग कहे मीरा भई बाबरी, नायत कहे कुल नासी रे। विष का प्याला राणा जी ने भेजिया, पीवत मीरा हासी रे। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, हरिचरणा की दासी रे। मीरा की कविता और उनके जीवन संघर्ष का महत्व स्त्री पराधीनता को चुनौती देने से है। मीरा का महत्व इसीलिए भी है कि वे केवल कविता और शब्दों के स्तर पर ही विद्रोह नहीं करती, वरन अपने जीवन संघर्ष को ही कविता में रूपांतरित कर देती है। इससे उनके काव्य में विश्वसनीयता, प्रामाणिकता, नैतिकता और ईमानदारी का जो आलोक फैला है वह बहुत कम कवियों में देखने को मिलता है। बड़े रचनाकारों के जीवन संघर्ष भी उतने ही बड़े होते हैं, तभी वे अपने समय तक ही सीमित नहीं रहते, बल्कि उससे आगे तक के युगों को प्रभावित करते हुए कालजयी रचनाओं की सूची में स्थान पाते हैं। सामान्यतः सामान्य लोग वैभव जुटाने को ही अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य मानकर काम करते हैं, लेकिन मीरा इस तरह के सामान्य मार्ग की अवहेलना करती है। भोग विलास के प्रति आसक्त ना होने के कारण मीरा का जीवन सामान्य से विशेष बन गया था। भारतीय चिंतन पद्धति में भगवान तक पहुँचने के तीन मार्ग स्वीकृत हैं, योग, ज्ञान और भक्ति मार्ग। मीरा ने लिए अपने लिए भक्ति मार्ग चुना। मीरा और प्रभु का रिश्ता अटूट है। इस अटूट रिश्ते का अभिमान मीरा के पदों में भक्ति आंदोलन में मिलता है। यदि यह विश्वास डिग जाए तो कविता बिखर जाएगी। कृष्ण के सौंदर्य का मीरा महत्वपूर्ण वर्णन करते हुए कृष्ण के परंपरागत रूप को चित्रित करती है। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल वेजंती माला, वृंदावन में धेनु चराबे, मोहन मुरली वाला। मीराबाई भक्ति काल की एक महत्वपूर्ण कवित्री है। मीरा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह मध्यकाल की स्त्री की अकेली आवाज़ है। उनकी कविताओं में भक्ति और दर्शन के साथ साथ स्त्री का दर्द भी अभिव्यक्त हुआ। उनके पदों में अंकित लोक लाज, कुल की मर्यादा, घूंघट, यह सब तत्कालिक स्त्री जीवन की सच्चाई है। मीरा ने एक मध्यकालीन समुदाय की पीड़ा को भी अभिव्यक्त किया। मनुष्य का ईश्वर में आस्था रखना, ईश्वर दर्शन करना, ईश्वर पाने में कठिनाइयों को पूर्ण करना, उसे विश्वास है कि यह सब करके उसे ईश्वर के दर्शन मिलेंगे। मीरा के पदों में, कृपा करो म्हारे भवन पधारो, नहींयो झेवड़ो जासी। मीरा के प्रभु कब्रे मिलोगे, तुम मिलिया सुख होए। मीरा व्याकुल विरणी, हरि अपनी कर लीजे। बेगी मिलो प्रभु अंतर जामी, तुम बिन रहो न जाई। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बाट जौ थारी कद की खाड़ी। जैसी पंक्तियाँ उनके वीरा की पीड़ा की गहनता का वर्णन करती है। मीरा ईश्वर से बिछड़े हुए जीव की पीड़ा की अभिव्यक्ति, घड़ी एक नहीं आवड़े तुम दर्शन बिन मोए कहकर करती है। उनकी यह पीड़ा दार्शनिक की पीड़ा है। अपने पीव से दूर रहकर और उसे ना पाकर भी

0: निराश नहीं होती, वह अपने विश्वास पर कायम रहती है। यद्यपि मीरा के विश्वास के टूटने के अनेक कारण उनके पदों में दिखाई देते हैं, पंथ निहारू डगर बिहारू ऊभी मारक जोए की भी बात करती है। मीरा हार न मानकर अपने विश्वास को टूटने नहीं देती, यह महत्वपूर्ण बात है। इसीलिए मीरा मध्यकाल की अत्यंत साहसी कवित्री है। मीरा का चिंतन उनके अपने वास्तविक अस्तित्व को स्थापित करना है। भक्तिकाल का हर भक्त कवि अपने नैसर्गिक गुण से युक्त है। मीरा का अलग दिखाई देने वाला व्यक्तित्व उन्हें समाज में विशिष्ट पहचान देता है। चारित्रिक दृढ़ता, ईमानदारी और पारदर्शिता उसकी अपनी विशिष्ट पहचान है। मीरा पितृसत्तात्मक व्यवस्था के कठोर नियमों का विरोध करती है, लेकिन उसके पास अपनी निश्चलता और पारदर्शिता को पुष्ट कराने के लिए कोई तर्क नहीं, या यूं कहें कि वे देना ही नहीं चाहती। वह स्त्री पुरुष संबंधों में परस्पर समानता, सद्भाव और एक दूसरे को समझने की भावना पर विश्वास करती है। वह आरोपित संबंध को स्वीकार न करके अपने द्वारा वर्णन किए गए कृष्ण को ही पति के रूप में देखती है और चाहती है समाज उसकी इस भावना को समझे और स्वतंत्रता की रक्षा करे। ऐसा न होने पर वह उस समाज की कोई परवाह नहीं करने की बात कहती है। स्त्री के लिए ऐसा कदम उठाना बहुत कठिन था। ऐसी स्त्री के लिए परिवार या समाज में कोई स्थान नहीं था। मीरा अपनी ननंद उदाबाई को स्पष्ट रूप से कहती है, उदाबाई मन समझ जाओ अपने धाम, राजपाट भोगो तुम ही हमें न तासु काम, ओड़ी चुनर प्रेम की गिरदर जी बरतार, कहकर अपनी भाव भक्ति में मगन रहती है। मध्यकाल में एक स्त्री और वह राजकुल की स्त्री, ऐसा विद्रोह और तेवर दिखाना संभव नहीं था, किंतु मीरा अपने हृदय की बात सुनती। मीरा केवल कवित्री नहीं, प्रगतिशील मूल्यों की भी संवाहक थी। उन्होंने समाज में फैली अनेक कुरीतियों एवं प्रथाओं के विरुद्ध आवाज उठाई। मीरा ने कृष्ण भक्ति को साध्य नहीं माना, अपितु साधनम माना। जुगन जुगन से बिछड़ी मीरा घर लीना हमें पाए, मीरा के प्रभु गिरधर नागर सदगुरु दिया बताए।
1: आप सुन रहे थे भारती राठौड़ से उनकी वार्ता मीरा की काव्य चेतना। यह आकाशवाणी खंडवा है, 7:10 हुए हैं। आइए सुने भोपाल से प्रादेशिक समाचार।
2: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गान।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर, देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड का करेंगे निरीक्षण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की, सभी 28 राज्यों के मुख्यमंत्री हुए शामिल। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त होने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। और 10वां ICC महिला T20 विश्व कप आज से शुरू, पहला मैच इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच होगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर हैं। वे इस दौरान देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी NDA के 198 नियमित पाठ्यक्रम और 141वें तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। पहली बार सभी 28 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस बैठक में भाग लिया। प्रधानमंत्री ने राज्यों से लखपत

0: की दीदियों की संख्या 3 करोड़ से बढ़ाकर 6 करोड़ करने, युवाओं के कौशल विकास और जल संरक्षण पर जोर देने का आह्वान किया। उन्होंने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने के लिए केंद्र और राज्यों की साझी भागीदारी को अनिवार्य बताया। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कल रात इंदौर में ब्रिक्स कृषि मंत्रियों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में आए विदेशी प्रतिनिधियों के सम्मान में भव्य रात्रिभोज का आयोजन किया। इस अवसर पर प्रदेश की लोक कला, आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक विविधता पर आधारित रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा,
1: यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वैश्विक स्तर पर अलग अलग सभी देशों के साथ संबंध बनाते हुए एक दूसरे की अनुकूलता का लाभ ले, ऐसे समय में कृषि सेक्टर हमारा, खासकर एग्रीकल्चर ईयर हमने डिक्लेयर किया। कृषि मंत्रियों का और कृषि से जुड़े हुए विद्वानों का एक बड़ा सम्मेलन है। कृषि एक तरह से व्यक्ति से व्यक्ति को जोड़ने का सबसे उत्कृष्ट माध्यम है। मैं सभी मंत्रियों का, राजनयिकों का, राजदूतों का सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं।
0: मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने प्रदेशवासियों से 14 जून को सुबह 6:15 पर आयोजित होने वाले विशेष ऑनलाइन योग सत्र में शामिल होने की अपील की है। आयुष मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के काउंटडाउन के तहत आयोजित इस 20 मिनट के सत्र में कोई भी नागरिक हिस्सा ले सकता है। टोल फ्री नंबर 1800-315-7008 पर मिस्ड कॉल देकर पंजीयन किया जा सकता है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 11वीं बैठक में प्रदेश की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने बताया कि प्रदेश ने केंद्र की तय समय सीमा से पहले ही नक्सलवाद का खात्मा कर लिया है और अब प्रभावित क्षेत्रों में विकास की गति तेज की जाएगी। मुख्यमंत्री ने आयुष्मान योजना, पीएम मित्रा पार्क, कौशल विकास और नदी जोड़ो परियोजनाओं का भी उल्लेख किया। प्रदेश से राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त होने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। रिटर्निंग अधिकारी ने भाजपा की आपत्ति स्वीकार करते हुए 9 जून को उनका नामांकन रद्द कर दिया था। भाजपा का आरोप था कि नटराजन ने अपने खिलाफ दर्ज एक मामले की जानकारी नामांकन पत्र में नहीं दी थी। प्रदेश से राज्यसभा के लिए भाजपा के तरुण चुग, रजनीश अग्रवाल और महेश केवट निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए। कल रिटर्निंग अधिकारी अरविंद शर्मा ने तीनों को निर्वाचन प्रमाण पत्र भी सौंपे। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास तथा सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस दौरान सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा सशक्तिकरण के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। आकाशवाणी की 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला के आज के अंक में हम सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में चर्चा करेंगे।
2: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीबों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। गरीबों के लिए पक्का घर उपलब्ध कराना मोदी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है। देश भर में अब तक लगभग 10 करोड़ 82 लाख लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस इलाज का लाभ लिया है। वहीं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर लोगों को सस्ती दरों पर जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, जिसके तहत अब तक 10 करोड़ 55 लाख से अधिक महिलाओं को मुफ्त LPG कनेक्शन दिए गए। वहीं सड़क किनारे कारोबार करने वाले रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को ऋण देने के लिए शुरू की गई PM स्वनिधि योजना के तहत अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक लोगों को ऋण दिए जा चुके हैं। भारत ने सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2015 में 19% लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा था, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 64% से अधिक हो गया है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार की अध्यक्षता में कल भोपाल में विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 पर उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में विधेयक के प्रमुख प्रावधानों, उच्च शिक्षा संस्थानों की स्वायत्तता, गुणवत्ता अनुसंधान और नियामकीय सुधारों पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। मंत्री श्री परमार ने कहा कि यह विधेयक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप उच्च शिक्षा को वैश्विक मानकों तक ले जाने में अहम भूमिका निभाएगा। आज 12 जून को बाल श्रम के विरुद्ध विश्व दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस हर बच्चे की शिक्षा, सुरक्षा और सम्मानजनक बचपन के अधिकार की याद दिलाता है।

भारत में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से काम कराना कानूनन प्रतिबंधित है। विशेषज्ञों का मानना है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सामाजिक जागरूकता ही बाल श्रम उन्मूलन का सबसे कारगर रास्ता है। टीकमगढ़ जिले के अस्तोन गांव में कल 3 मासूम बच्चों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। कोतवाली थाना क्षेत्र के सिद्धसागर तालाब में नहाने के दौरान तीनों बच्चे गहरे पानी में जा फंसे। मृतकों में 12 वर्षीय प्रिंस अहिरवार और 13-13 वर्षीय दीपेश व राज अहिरवार शामिल हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हादसे पर दुख जताते हुए तीनों परिवारों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए हैं। वहीं प्रदेश के युवा अजय अहिरवार ने इंडिया स्किल्स नेशनल कंपटीशन में ब्रिक लेइंग स्किल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। उनका चयन सितंबर 2026 में शंघाई में होने वाली वर्ल्ड स्किल्स कंपटीशन और जून में ऑस्ट्रेलिया में होने वाली ग्लोबल स्किल चैलेंज के लिए भी किया गया है। राज्य कौशल विकास बोर्ड ने उनकी तैयारी के लिए विशेष वित्तीय सहायता भी प्रदान की थी। प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा हायर सेकेंडरी द्वितीय परीक्षा 2026 का परिणाम आज शाम 4 बजे घोषित किया जाएगा। परीक्षार्थी मंडल की आधिकारिक वेबसाइट mpbsc.mponline.gov.in पर रोल नंबर और आवेदन संख्या दर्ज कर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। यह परीक्षा उन छात्रों के लिए आयोजित की गई थी जो मुख्य परीक्षा में सफल नहीं हो पाए थे या अपने अंक सुधारना चाहते थे। मंगोलिया के 10 दिवसीय आध्यात्मिक प्रवास के बाद भगवान बुद्ध के परम शिष्यों सारिपुत्र और महामौत गलायन के पवित्र अवशेष कल भोपाल के राजा भोज विमानतल पहुंचे। मंगोलिया की राजधानी उलान बातार के गंदन मठ में आयोजित प्रदर्शनी के दौरान 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने इन अवशेषों के दर्शन किए। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून 3 से 4 दिन की देरी से आएगा। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के दक्षिणी जिलों में मानसून 17-18 जून को दस्तक देगा और अगले 10 से 15 दिन में पूरे प्रदेश को कवर करेगा। मौसम विभाग के मुताबिक आज मुरैना, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर में ओलावृष्टि का अनुमान है, जबकि भोपाल सहित प्रदेश के 40 से अधिक जिलों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी और बारिश हो सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। झाबुआ कलेक्टर डॉक्टर योगेश तुकाराम भरसट के निर्देशन में कल NRLM आजीविका भवन में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत मास्टर वॉलंटियर्स का एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। आगरमालवा में 40 दिवसीय योग अभियान चल रहा है, जिसके तहत योग के महत्व, स्वस्थ जीवन शैली और नियमित योगाभ्यास के लाभों की जानकारी दी जा रही है। खंडवा में उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य संरक्षण के लिए 6, 7 और 8 जुलाई को विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के प्राध्यापकों तथा कर्मचारियों का ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। ITI इंदौर में एक निजी कंपनी ने तकनीशियन के 50 पदों के लिए युवाओं का चयन किया और केंद्रीय राज्य मंत्री एवं सांसद दुर्गादास उइके ने बैतूल में 18 जून को प्रस्तावित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यक्रम आध्यात्मिक जागृति से जनजाति समाज का सशक्तिकरण की तैयारियों का जायजा लिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के उत्तराखंड के दौरे पर। देहरादून में NDA की पासिंग आउट परेड का करेंगे निरीक्षण। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। सभी 28 राज्यों के मुख्यमंत्री हुए शामिल। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त होने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। और 10वां ICC महिला T20 विश्व कप आज से शुरू। पहला मैच इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

FM 101.2 MHz पर श्रोताओं, ये आकाशवाणी खंडवा है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुनहरे पल।

सभी को विद्याधर मुले का नमस्कार। श्रोताओ श्रोताओ, बीती 4 जून ये तारीख एसपी बाला सुब्रमण्यम से जुड़ी हुई है। जी हाँ, 1946 साल में इसी दिन उनका जन्म हुआ था और आपको याद होगा इसी महीने की बात है कि उस दिन पूरे दिन आकाशवाणी के सभी केंद्रों से एसपी बाला सुब्रमण्यम साहब के गाने बज रहे थे, सबने उन्हें याद किया। लेकिन इस नाचीज को मौका नहीं मिला कि उस दिन या उसके बाद मैं उन पर

प्रोग्राम कर सकूं या उनका कोई गाना सुनवा सकूं। तो आज मौका है, पूरे 40 मिनट का ये कार्यक्रम है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हमारे पलों को सुनहरा किया जाए उनकी आवाज़ सुनकर। और उस दिन आपने उनके सारे मशहूर गाने सुने हैं, आज कोशिश है उन गाने को शामिल करने की जो ज़्यादातर छूट जाते हैं, या उनके जो मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन और साजन इन मशहूर गानों के बीच में रह जाते हैं, तो उन गानों को हम शामिल कर सकें। चलिए शुरुआत करते हैं। लता जी के साथ उनकी जोड़ी बहुत मशहूर थी, बहुत हिट गीत उन्होंने दिए हैं, आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर के साथ उनका एक गाना, रास्ते हैं प्यार के।

श्रोताओ, एसपी बालसुब्रमण्यम साहब को उनके चाहने वाले कई नामों से पुकारते हैं। उन्हें एसपी भी कहा जाता है क्योंकि नाम बड़ा है। उनके जो करीबी हैं उन्हें बाला कह के पुकारते थे, और जो संगीत को समझते हैं, जानते हैं, संगीतज्ञ हैं, वो उन्हें गान गंधर्व तक कहलाते थे। वैसे उनका पूरा नाम श्रीपति पंडिताराधुला बालसुब्रमण्यम था। और उनकी खासियतों का अगर जिक्र करें तो कई बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति की योग्यता डिग्री में नापी जाती है, उपाधियों में नापी जाती है, और बहुत सारे लोगों की योग्यता शायद डिग्रियों में उपाधियों में नहीं होती है, लेकिन असंख्य लोगों के मनों में उन्होंने अपना स्थान बनाया होता है। एसपी बालसुब्रमण्यम के साथ ये दोनों बातें हैं। जी हाँ, 16 भाषाओं में लगभग 50,000 गीत, जाहिर है 50,000 शब्द है तो ये एक पूरा फिगर नहीं है, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। उन्हें 6 नेशनल अवार्ड मिले, जो 4 दक्षिण की भाषाओं के लिए और 1 हिंदी के लिए, और तेलुगु के जो दूसरे जो अवार्ड्स हैं वो तो बिल्कुल अनगिनत हैं। लेकिन फिर वही बात कि उनके गाए गीतों को दशकों बाद भी उतना ही सराहा जाना,

नहीं प्यार से सुना जाना, ये किसी भी अवार्ड से बहुत ऊपर है। और उनकी ये जो योग्यता है, गायन क्षमता है, वो उनके पिता से उन्हें मिली थी। वो एक गायक भी थे और स्टेज एक्टर भी थे। स्टेज एक्टर जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि एस पी बाला सुब्रमण्यम एक गायक के साथ साथ एक बहुत अच्छे अभिनेता भी रहे हैं। लेकिन पिता चाहते थे कि वो उनकी तरह हरी कथा गायक ना बने, वो इंजीनियरिंग करे। तो उन्होंने पिता की आज्ञा को माना और इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन भी हुआ, लेकिन टाइफाइड के कारण वो उस पढ़ाई को जारी नहीं रख पाए। लेकिन ईश्वर ने उन्हें रचा तो संगीत के लिए ही था, तो संगीत की शिक्षा या कहें रियाज वो चलता रहा। कोई एक पारंपरिक शिक्षा तो उन्होंने नहीं ली है। और 1966 में उनको पहला तेलुगु फिल्म का गीत मिला और उसके बाद उनकी यात्रा जारी रही। 1980 में एक तेलुगु फिल्म आई थी शंकराभरणम, वो शास्त्रीय संगीत पर आधारित एक गायक की कहानी थी और उस गायक को आवाज मिली एस पी बालासुब्रमण्यम की, और इसके लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार तक मिला था। अब देखिए, वो क्लासिकली ट्रेंड गायक नहीं है एस पी बालासुब्रमण्यम, लेकिन एक शास्त्रीय संगीत पर आधारित फिल्मी गीतों के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। वो कहते हैं कि जैसे मछली तैरने का प्रशिक्षण नहीं लेती, एसपीबी हर किस्म के गाने उसी सहजता से गाते थे। आप इसे किशोर कुमार के उदाहरण से भी समझ सकते हैं। चलिए आपको सुनवाते हैं उस फिल्म का गीत जिससे वो हिंदी फिल्म दर्शकों में मशहूर हो गए थे, एक दूजे के लिए।

वी आर मेड फॉर ईच अदर। और ये बात बहुत अच्छे से समझा हमारे जो हिंदी फिल्मों के संगीत को पसंद करने वाले जो श्रोता हैं कि कमल हासन और सलमान खान ये दोनों के लिए तो जैसे एसपी की आवाज़ ही बनी थी। बहुत सारी फिल्मों में इन्होंने गाने गाए हैं और सफलता का प्रतिशत बहुत ऊपर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो इन दोनों के लिए ही सफल गीत देते रहे। जीतेंद्र और राजेश रोशन के लिए, जैकी श्रॉफ के लिए बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो बहुत हिट हुए थे, लेकिन कहते हैं कि बहुत सफल गानों के पीछे छुप जाते हैं कुछ अच्छे गाने भी। एक गाना अपने रिलीज के समय बहुत मशहूर था, शायद आज भी है, आपको सुनवाते हैं, देखिए आपको पसंद आ सकता है।

श्रोताओ, विद्याधर मुले के साथ आप सुन रहे हैं आकाशवाणी खंडवा का कार्यक्रम सुनहरे पल, और आज बात एसपी बाला सुब्रमण्यम और उनके गीतों की। श्रोताओ, पसंद की बात जरा विचित्र सी होती है। किसी को कोई बात इसलिए पसंद नहीं आती कि वो सामान्य से कुछ अलग ही है, तो वही बात किसी अन्य को इसलिए पसंद आती है कि वो सामान्य जैसी नहीं है, और उसकी असामान्यता ही उसकी विशिष्टता हो जाती है। एसपीबी की आवाज ऐसी ही है। उनकी आवाज की मिठास, उच्चारित शब्दों की वो गोलाई, वो गहन, वो बेस वॉइस, एक शब्द से दूसरे शब्दों तक वो जो अद्भुत ग्लाइड है, वो तरंग है, सुरों से आगे श्रुतियों को वो कानों में घोल देते थे। ऐसा तो रफी साहब के गीतों में ही नजर आता था। हाँ, मोहम्मद रफी साहब के बहुत गहरे प्रशंसक थे एसपी बाला सुब्रमण्यम। एक टीवी प्रोग्राम में उनका गाया हुआ दीवाना हुआ बादल आज भी मुझे याद आता है, जो रफी साहब को दिल से याद करते हुए एसपी बाला सुब्रमण्यम ने सुनाया था। आइए आपको एक ऐसा अनसुना गाना सुनाते हैं। उस फिल्म में हीरो कमल हासन कवि हैं, पोएट, और हीरोइन अनिता राज एक गायिका हैं। अब वो जो गायिका है यानी नायिका है, वो चाहती है कि कविराज तुरंत मेरे सुरों पर गीत रच दे, और ऐसा ही होता है। और गीत की अंतिम पंक्ति में नायक अपने मन की बात कह जाता है, और गीत अचानक एब्रप्टली रुक जाता है, लेकिन दोनों की कहानी पूरी हो जाती है। जरा सी जिंदगी फिल्म का ये गाना है।

श्रोताओ, एस पी बाला सुब्रमण्यम ने अपनी जिंदगी में कला से जुड़े बहुत सारे कामों को कर डाला था। हम तो उन्हें ज्यादातर लोग एक बहुत बड़े गायक के तौर पर जानते हैं, जिन्होंने 5-6 भाषाओं में 50,000 से अधिक गाने गाए हैं। लेकिन उनका करियर सिर्फ गायक का करियर ही ना, वो एक प्रोड्यूसर भी थे, वो डायरेक्टर भी थे, और एक समय तो ऐसा भी था कि किसी एक संगीत कार्यक्रम में वो एक होस्ट की तरह होते थे और दूसरे चैनल पर

वो जज भी होते थे। इसी तरह वो एक बहुत बड़े वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं। वॉइस ओवर आर्टिस्ट के बारे में श्रोता जानते होंगे कि कई बार ऐसा ही होता है कि एक दूसरी भाषा की फिल्म हिंदी में डब हो रही है या हिंदी की फिल्म तमिल या कन्नड़ में डब हो रही है, तो एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट के तौर पर उन्होंने बहुत बड़े बड़े कलाकारों को अपनी आवाज़ दी है और सिर्फ वाणी से जुड़े हुए काम भी नहीं, वो डांस भी बहुत अच्छा करते थे। और ऐसा वैसा डांस नहीं, प्रभु देवा के साथ भी उन्होंने डांस किया है एक फिल्म में, हमसे है मुकाबला।

वाणी से जुड़े हुए काम भी नहीं, वो डांस भी बहुत अच्छा करते थे। और ऐसा वैसा डांस नहीं, प्रभु देवा के साथ भी उन्होंने डांस किया एक फिल्म में। हमसे है मुकाबला फिल्म का एक गाना आपको सुनवाते हैं, जिसमें प्रभु देवा के साथ पर्दे पर आप उन्हें डांस करते देख सकते हैं। प्रभु देवा पर आवाज़ उदित नारायण की है और SPB पर उन्हीं की आवाज़।

श्रोताओं, मेरी लिस्ट में गाने बहुत सारे हैं लेकिन समय बहुत थोड़ा सा है, तो इसलिए कोशिश करते हैं कि बहुत सारे गीतों में से कुछ मुखड़े आप तक मैं पहुंचा सकूं, और उसके बाद एक छोटी सी बात के साथ हम विदा लेंगे।

जी हाँ श्रोताओ, बहुत सारे गाने हैं मेरे पास जो एसपी बाला सुब्रमण्यम ने हमें दिए थे और आपके लिए पेश हो सकते हैं, लेकिन वक्त बहुत थोड़ा है और बात उस पल की, उस दिन की और उस तकलीफ की जिसे पूरे विश्व ने भोगा है, कोविड-19। जी हाँ, इसी के चलते 25 सितंबर 2020 को ये गायक हमसे जुदा हुआ था और आज इतने लंबे समय बाद भी उनके जो गीत उन्होंने 1980 के दशक में गाए, 85 के दशक में गाए, जस के तस ताज़े हैं और हमें आज भी लुभाते हैं और यकीनन आने वाली पीढ़ियां और उसके बाद की पीढ़ियां भी इन गीतों को गुनगुनाती रहेंगी। आइए उन्हीं का एक गीत गुनगुनाते हैं, वंश फिल्म का गाना किसे पसंद नहीं।

0: ये आकाशवाणी खंडवा है, 8 बजे हैं, आइए समाचार सुनें दिल्ली केंद्र से।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए एआई का उपयोग करने के बढ़ते खतरे की चेतावनी जारी की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वर्तमान संघर्षों के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता का हवाला देते हुए ईरान पर नए सैन्य हमले रोके। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में आज इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से, और फीफा फुटबॉल विश्व कप के आरंभिक मैच में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में कल सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। श्री शाह ने कहा कि एक ऐतिहासिक क्षण है, इससे देश में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज की संभावनाएं और बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि समझौते से हमारी विदेशों पर निर्भरता कम हो जाएगी।
4: अब सिर्फ एक एमओयू से ही 1,000 से 1,500 बैरल प्रतिदिन जो दोहन की हमारी क्षमता है उसको 10 गुना से ज्यादा हम बढ़ा पाएंगे, और एक ही फील्ड में 15,000 करोड़ से ज्यादा रिकवरी के संभावनाएं हैं। परंतु पूरे नागालैंड के अंदर

0: ऑयल और गैस जितना भी पड़ा है इसका उत्खनन होगा, तो मुझे लगता है कि हमारी जो कमी है इस क्षेत्र में, हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, वो निर्भरता काफी हद तक हम पूरी कर पाएंगे।
1: गृह मंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना दर्शाता है।
0: हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
1: नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने इस समझौते को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए श्री रियो ने कहा कि पूर्वोत्तर में शांति, स्थिरता और विकास के प्रति केंद्र की प्रतिबद्धता ने इस समझौते को संभव बनाया है। उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा और असम सरकार को उनके सहयोग और सद्भावना के लिए धन्यवाद दिया। केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरों के बारे में चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
2: केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरे के बारे में चेतावनी जारी की है। गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की ओर से जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी डीप फेक वीडियो और कृत्रिम पहचान बनाने के लिए AI का तेजी से उपयोग कर रहे हैं। इन तकनीकों का दुरुपयोग चेहरे की पहचान, जीवंतता, सत्यापन, वीडियो KYC प्रक्रियाओं, खातों को दोबारा सक्रिय करने की प्रणालियों और वित्तीय तथा डिजिटल सेवाओं तक पहुंच बनाने के लिए किया जा रहा है। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थाओं को डीप फेक का पता लगाने, प्रणाली मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग तरीकों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। लोगों से यह भी आग्रह किया गया है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और विविध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों और अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का प्रभाव उन क्षेत्रों से भी आगे बढ़ता है जहां वे घटित होते हैं। ऊर्जा सुरक्षा के विषय में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत के ऊर्जा संबंधी निर्णय राष्ट्रीय हित से प्रेरित हैं और खरीद सामर्थ्य और उपलब्धता को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं।
3: We signed this year a free trade agreement with Europe.
4: हमने यूरोप के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हमने यूरोप के साथ सुरक्षा और रक्षा साझेदारी भी की है। साथ ही हमारे पास यूरोप के साथ टैलेंट मोबिलिटी एग्रीमेंट की एक रूपरेखा भी है। इसीलिए मुझे लगता है कि रक्षा उद्योग, खासकर स्मार्ट सेक्टर में आपसी सहयोग के रास्ते तलाशेंगे और देखेंगे क्या ऐसी कोई साझेदारी बन सकती है जो कारगर साबित हो।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश में आज एक भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सवेरे लखनऊ में और शाम को वाराणसी में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि होंगे। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के उठाए गए कदमों पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
5: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। इन पहलों में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का जज्बा और काम करने की लगन दोनों शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन कोशिशों को जिम्मेदारी और सबको साथ लेकर चलने की भावना से जोड़ा गया है, जिससे भारत की आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है। भारत ने इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखते हुए अपनी विदेश नीति में नई ऊर्जा भरी है, पुराने रिश्तों को मजबूत किया है और नए दोस्त भी बनाए हैं। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारत

0: तिरंगा को हर तरह की मदद दी। पानी साफ करने वाली किट, दवाएं व सर्जिकल उपकरण और 60 टन विशेष मशीनें शामिल थी। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। चक्रवात दित्वा के बाद प्रभावित इलाकों में रास्तों को फिर से जोड़ने और मजबूत करने के लिए भारत ने 14 लोहे के अस्थायी पुल भेजे। भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए श्रीलंका के बंदर और नागर विमानन उपमंत्री जनित रवान कोदितोवक्कू ने कहा कि भारत ने श्रीलंका के लोगों के प्रति प्यार और अपनापन दिखाया है। बाइट, भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की, जो इंसानों को ध्यान में रखकर की गई भारत की कूटनीति का एक बड़ा उदाहरण है। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत अपने पड़ोसी देशों को सबसे आगे रखा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बांग्लादेश के रहने वाले फिजियोथेरेपिस्ट और योग शिक्षक डॉक्टर ज्योतिष को विश्वास ने कहा,
1: इंडिया जो किया हमारे लिए वैक्सीन, वो टाइम पे फास्ट रिस्पॉन्स किया और भेज दिया, हम भी वो वैक्सीन लिया तो हमारे भी बहुत अच्छा हुआ। हमारा रिलेटिव्स और देशवासी को लिए वो एक बहुत अच्छा तोहफा था इंडिया से, तो इसलिए हम बहुत कृतज्ञ हूँ।
0: पिछले 12 वर्षों में वैक्सीन मैत्री, ऑपरेशन सागर बंधु जैसी पहलों के जरिए भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे आया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन के दौरे पर उत्तराखंड जाएंगे। वे आज देहरादून में राष्ट्रपति निकेतन पहुंचेंगे। उत्तराखंड प्रवास के दौरान वे 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 2 दिन की स्विट्जरलैंड यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मोलिन और आर्थिक राज्य सचिव हेलेन बुडलिगर आर्टिडा से मुलाकात करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी मजबूत करेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर नए सैन्य हमले रोक दिए हैं। इससे पहले ट्रंप ने धमकी दी थी कि ईरान के तेल उद्योग पर कब्जा करके युद्ध और बढ़ाया जाएगा। श्री ट्रंप ने ईरान के उच्च स्तरीय नेतृत्व के साथ हुई बातचीत में प्रगति को इस बदलाव का कारण बताया है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि युद्ध विराम को बढ़ाने के लिए चल रही वार्ता में भी प्रगति हुई है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले मैच में मेजबान मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया है। मेक्सिको ने 9वें और 67वें मिनट में गोल कर मैच जीत लिया। ये टूर्नामेंट 20 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में संयुक्त रूप से खेला जाएगा। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप आज शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित इस टूर्नामेंट का फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स में होगा। भारतीय टीम 14 जून को पाकिस्तान के साथ अपना अभियान शुरू करेगी। टूर्नामेंट में पहली बार 12 टीम हिस्सा ले रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा हो सकती है। देश के पूर्वोत्तर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने दिल्ली और NCR के कई स्थानों पर आज गरज चमक के साथ वर्षा का भी अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक की खबर सभी अखबारों में है। दैनिक जागरण के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राज्यों के विकास के बिना विकसित भारत का निर्माण संभव नहीं। नवभारत टाइम्स के अनुसार पीएम ने कहा, भारत तेजी से तरक्की की राह पर। बैठक में पीएम ने दिया विकसित भारत

0: का रोड मैप। हिंदुस्तान की सुर्खी है, चार दिन में भारतीय क्रू वाला तीसरा पोत तबाह। हॉर्मुज में हुए हमले में सभी सुरक्षित, बुधवार को लापता नाविकों के शव मिले। पत्र ने भारतीयों की चिंता शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, पश्चिम एशिया में फिर तनाव फैलने और युद्ध भड़कने पर भारत पर सीधी आंच आई है। ये पश्चिम एशिया में टकराव का नया और खतरनाक मोड़ है। युद्ध रोकने के लिए वार्ता जारी थी, पर शीघ्र वार्ता के लिए अमरीका का युद्ध छेड़ना अतार्किक है। जनसत्ता की सुर्खी है, तृणमूल से एक और इस्तीफा, कल्याण के बगावती तेवर। पत्र ने राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के मामले में सुर्खी दी है, मीनाक्षी नटराजन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। पंजाब केसरी ने सर्वोच्च न्यायालय के हवाले से लिखा है, गृहिणियां हैं राष्ट्र की निर्माता, परिवार की नींव मजबूत करती हैं, उनके काम की कीमत हर महीने 30,000 रुपए होनी चाहिए। नवभारत टाइम्स ने इसी मामले पर खबर संपादकीय में लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने सड़क दुर्घटना मामले में कहा, इसका जितना व्यापक कानूनी असर है उतना ही सामाजिक। अदालत ने राष्ट्र निर्माण में घरेलू काम और जिम्मेदारियों के महत्व को स्वीकारा है। ये फैसला उस सोच पर प्रहार है जिसके अनुसार घर का काम कोई मायने नहीं रखता। दैनिक भास्कर ने विशेष रिपोर्ट में दिया है, आंखों से देख नहीं सकती थी मासूम, आवाज से पहचान लिए तीन दरिंदे, दुष्कर्म केस में आरोपियों की जमानत याचिका रद्द। पंजाब और हरियाणा कोर्ट में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और अपीली अदालत का फैसला बरकरार। लोकसत्य का शीर्षक है, दिल्ली एनसीआर में ऑरेंज अलर्ट, आंधी और बारिश की संभावना, हवा के कारण तापमान में 6 से 7 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए एआई का उपयोग करने के बढ़ते खतरे की चेतावनी जारी की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वर्तमान संघर्षों के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता का हवाला देते हुए ईरान पर सैन्य हमले रोके। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में आज इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से और फीफा फुटबॉल विश्व कप के आरंभिक मैच में मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी खडवा है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम राग रंग, प्रस्तुत कर रहे हैं कीर्ति गोखले और पराग गोखले।

0: श्रोताओं, हम हर बार आपसे वादा करते हैं कि माह के दूसरे शुक्रवार को हम आपके सम्मुख आएंगे और रेडियो के माध्यम से आपका मनोरंजन करेंगे, साथ ही साथ आपके लिए पेश करेंगे राग रंग कार्यक्रम।
1: तो इस बार भी हमने अपना वादा निभाया और लीजिए हम एक बार फिर हाजिर है आपका पसंदीदा कार्यक्रम
0: राग रंग लेकर।
1: तो इस गीत को पूरा हम सुन लेते हैं और फिर आपसे इस कार्यक्रम में आगे बात करेंगे।

0: मैं पराग।
1: तो इस गीत को सुनकर क्या आप कुछ अंदाज लगा पाए कि ये गीत किस राग पर आधारित है?
0: कोई बात नहीं यदि आप नहीं भी लगा पाए, क्योंकि हम आपके लिए आने वाले 14 मिनटों में इसी राग पर बातचीत करेंगे और आपके लिए इससे भी बेहतर बेहतर गीत प्रस्तुत करेंगे।
1: बिल्कुल, तो जल्दी से बता दीजिए ना हमारे आज के कार्यक्रम का राग।
0: दो पंक्तियों में बताते हैं आज के कार्यक्रम का राग। ग ध नी स्वर कोमल रहे, आरोहन ग नी हानी, ध ग वादि संवादि से आसावरी पहचानी।
1: बिल्कुल ठीक। तो श्रोताओं, क्या आप समझे कि हमारे आज के कार्यक्रम का राग कौन सा है? आज का राग है राग
0: आसावरी।
1: क्योंकि इस राग में बहुत सारे गीत हैं श्रोताओं, तो आज हम बातें करेंगे कुछ कम और गीत सुनवाएंगे कुछ ज्यादा।

0: श्रोताओं, यदि हम सुरों को जीवित प्राणी के रूप में माने, मानव शरीर के रूप में माने, राग इन जीवित प्राणियों की एक महफिल होती है।
1: क्या बात है। हाँ? तो ऐसी ही महफिल है भाई राग आसावरी की। तो इस राग की महफिल में भी स्वरों की कुछ ऐसे ही
0: धूमधाम है।

0: तो इस राग में श्रोताओं गांधार यानी कि ग, धैवत यानी कि ध और निषाद यानी कि नी स्वर कोमल उपयोग में आते हैं।
1: इसका वादी स्वर धैवत है और संवादी स्वर गंधार यानी ग है।
0: आरोह में इस राग में ग और नी का प्रयोग वर्जित हो जाता है, पर अवरोह में सारे ही स्वर उपयोग में आते हैं, इसलिए इस राग की जाति बन जाती है औडव संपूर्ण।
1: और देखिए, हम कहते हैं ना कि हर राग किसी न किसी थाट से उत्पन्न हुआ है
0: जी, जी।
1: तो राग असावरी जो है वो अपने नाम वाले ही थाट से उत्पन्न राग है।

0: सनम।
1: श्रोताओं, ये जो आसावरी राग है ना, ये बड़ा ही कर्णप्रिय राग है। और सबसे खास बात ये कि इस राग में जिस तरीके की हमने कार्यक्रम के आरंभ में भी कहा कि बहुत सारे गीत इस राग पर रचे हैं हमारे हिंदी सिनेमा में
2: जी।
1: तो इन गीतों में कुछ मतलब रोमांटिक गीत भी हैं और वहीं कुछ सैड सॉन्ग्स भी इस राग में बहुत ही खूबसूरत गाने हैं
2: जी जी।
1: तो दो हम जो है खुशनुमा गाने सुन चुके हैं, तो एक सैड सॉन्ग हो जाए बीच में।
2: बिल्कुल, पर हाँ, दुख भरा गीत जरूर है, दुखी नहीं होइए, क्योंकि इसके बाद में जो गीतमाला आएगी उसमें आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा।

0: श्रोताओं, राग असावरी की कुछ विशेषताएं आपको बता देते हैं। ये राग कोमल ऋषभ की असावरी भी कहलाता है। जब संगीतज्ञ इसमें शुद्ध ऋषभ के स्थान पर कोमल ऋषभ का प्रयोग करते हैं तो इसे कोमल ऋषभ असावरी कहा जाता है।
1: ऋषभ यानी कि रे।
0: इसी प्रकार मध्यम का इसमें वक्र प्रयोग होता है। अवरोह में मध्यम का वक्र प्रयोग इसमें किया जाता है। मध्यम का मतलब है म।
1: तो ये तो हुई श्रोताओं राग असावरी की विस्तृत जानकारी। और अब कार्यक्रम में ज़्यादा समय शेष नहीं है तो हम आपको सुनाते हैं इस ही राग पर आधारित गीतों की वानगी।

0: तो श्रोताओं, आपने सुना ही कितने बेहतरीन गीत इस एक राग पर निबद्ध हैं हमारी भारतीय फिल्मों में। तो अब समय समाप्त हो रहा है और इस कारण आज के इस कार्यक्रम को हमको यहीं समेटना होगा। तो इजाजत दीजिए रागरंग कार्यक्रम को संपन्न करने की पराग को
1: और कीर्ति को।
0: नमस्कार।
2: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे राग आसावरी में निबद्ध राग रंग कार्यक्रम। प्रस्तुति कीर्ति गोखले और पराग गोखले की थी। ये कार्यक्रम आपकी सेवा में आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से प्रसारित हो रहे हैं। अब प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके मीत ये गीत।
3: आपके मीत ये गीत।
2: सभी को एक बार फिर विद्याधर मुले का नमस्कार। आपके पत्रों और ईमेल के आधार पर हमने कुछ गीत चुने हैं जो आप तक हम पहुंचाएंगे। शुरुआत हम आपके पत्रों से कर लेते हैं। पटियाला के बत्ता परिवार का पत्र आया है। मुकेश बत्ता, नीलम, नितिन, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता, जूनापानी सनावत से, कालू सिंह बड़ोले, सीताराम, हीरालाल, तेर सिंह डावर, साहिल, हरिओम, विशाल, सुमन, रमा और कंचन, बहरामपुर टेमा के हमारे श्रोता हैं डॉक्टर त्रिलोकचंद वर्मा, भागवत, अभिषेक, सीमा, डॉक्टर अमित वर्मा के साथ सचिन, समरराज, आर्यन, आरोही, इशिका, अंजलि और श्वेता वर्मा, मोहत गांव के रहने वाले भैया तड़वी, रीना, सनी, रोजू, परु, मुबारक, विलास, मनोहर और उनके साथी, पोखरी रावेर से अरशद तड़वी, आरिश और यूनुस, इसके अलावा मुशर्रफ खां, जरीना, मुबारक, परवेज और तड़वी परिवार। और ये पत्र आया है जबलपुर के जीनेन्द्र जैन जी का। अब ईमेल फरमाइशों की तरफ बढ़ते हैं। खंडवा से शालिया डावर, हलीमा, जिक्रा और आयशा, साथ में है अकबर खत्री, तेलहारा से प्रकाश पोहरकर, नर्मदा और सुजाता, रमेश कटनकर, वैशाली, धनंजय, अकोला से, अमरावती से कमरुल्ला के साथ नसीम बेग, खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, अब्दुल हक, जियाउल हक और मोहम्मद उमर डावर, बड़वा से प्रवीण श्रीमाली और मीना श्रीमाली, ओंकारेश्वर से राकेश पप्पू सेन, निशा, ओम, सपना, धर्मेंद्र, मुकेश, द्वारिकीबाई के साथ ऋषि सेन, खंडवा से विजय महोबिया, कविता, विशाल, विवेक, सोनू, मोनू, सपना, शिवी, सलोनी और सुदामा, यहीं से कमला देवी महोबिया, अनय, अनाया, भयू के साथ लूसियान भी, कैलाश फूलमाली, दीपक समर और वेदिका फूलमाली अहमदपुर खैगांव से, छत्र

पति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राशि और शीतल राजेश, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल और पूजा परिहार, खंडवा के श्रोता हैं दुर्गा प्रसाद सैनी, अनिता और गौरव के साथ ईशान, कार्तिक सैनी यहीं से, ठाकुर भवानी सिंह बैस, रिया, रोहन और अंगद ठाकुर खंडवा के ही हमारे श्रोता हैं, संजय पंचोलिया, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया, खंडवा से ही राजेंद्र कटारे, अनिता, उदय, उज्जवल और मीतांश कटारे का भी मेल आया है, फरमाइश आई है जमशेदपुर से, हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल, सोनू और पप्पी, सनावत से किशोर कुमार सांवले, रेखा, हिमांशु, अनुराग, सुलोचना, चारवी और प्रणय, यवतमाल से पंजाब रामटेके और यशोधरा, दिल्ली के श्रोता हैं अजीम वकार, माहिरा अजीम और नीलिमा अजीम, और रामगढ़ कैंट से धर्मेंद्र मोदी और उनके साथी। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का यह पहला गीत।

0: है स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: अगला गाना आपके ख्वाहिश पर। दाढ़ी नांदूरा महाराष्ट्र से श्री कृष्ण बाठे, संदीप और अमूल्य, हांसी से राजू मेघलानी, बबीता, सुभाष, योगी, बब्बू और डब्बू, पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता, किशु, अर्णव, आनंद, सत्यम, ओडागाछी, पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत, बठेना पाटन से परमेश्वर साहू, राजवती, काजल, पूर्वी, हेजल, रेशमा और राजेश साहू, सहरसा बिहार से राधे कुमार विद्यार्थी, सविता, राकेश रंजन, राजीव रंजन, संजय, ओम, गुंजेश, रीना, कुमकुम, साक्षी, अच्छेलाल और बुल्की, इंदौर से गिरधारी लाल चौधरी और मनीषा चौधरी, नंदलाल राजपूत, राजू, मनुका, नंदिनी और रुद्र राजपूत, गुरावा से डुमरा बिहार से असमा परवीन, वलीउल्ला अंसारी, डॉली और जूही परी, खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, बेनजीर कौसर, मोहम्मद साकिब, हसनैन और उनके साथी, दीवाल से शंकरलाल गंगराड़े, वनीता और उनके साथी, माणक चंद राठौड़ और पुष्पा बाई राठौड़ का मेल है, जामली कला से सनावत से शेख मूसा मोहसिन, कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल, विनीत और सोनम वर्मा, भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, अर्चना आनंद और गिरिजा के साथ लोकेश, पायल, सावन, बबला यादव, अंकिता और वैदेही जोशी, अनूपपुर से जयवंती केवट, जगदलपुर से पूनम नायडू, श्रीरामपुर भोकर महाराज से हरिभाव बिड़वे, अनिकेत, शुभांगी, श्रावण और अनिता, अमरावती की श्रोता है सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना, प्रतिभा, हीरामन शेंडे, प्रणय, प्रसिद्धि और महेश, सनावत से यूनुस खत्री, शफी खत्री, इद्रीस, नूर मीना, इरफान और काशिफ मीना, जमानिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला, दीपक, स्वाति, साथ में है रोहन और आर्य भी, बठेना पाटन से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति, सुजान, मुरली, शिवम और यश प्रयाण पार्थ, एटा से नबी हसन अब्बासी, नवेद हसन, सुहेल और रशीद, बोरी खुर्द से जाफराबाद के श्रोता श्री सुधाकर, राजे जाधव, प्रशांत, जगु, साक्षी, संचित, प्रथमेश, स्वामी, प्रणाली देशमुख के साथ सानवी देशमुख। आइए सुनते हैं आपके फरमाइश पर कार्यक्रम का ये अगला गाना। ये आखिन देखी फिल्म का गाना है, पद्मा सचदेव की रचना, जेपी कौशिक का संगीत, मोहम्मद रफी के साथ आवाज आप सुनेंगे सुलक्षणा पंडित की भी।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: धर्मपुरी से शेख फहीम मोहम्मद, मोहम्मद तस्लीम शेख, मुजफ्फर अयान, फैजान सुमेरा, कशिश सायमा, हसनैन और खुशी। किशनगंज से रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, राघव कुमार के साथ और उनके बहुत सारे साथी, रमेश चंद चौहान, मोहिनी, कल्पित और गर्वी। जोधपुर राजस्थान से पटिंडा मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू, मोहित और तानिया नारंग। मोटका माफी से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम, ज्योति।

शुभम, देवी किशन, भावना, मन, मानस और कनिका पटेल, सहारनपुर से कौशल्या जोशी, सोनाली, सुरेश डोमन और उनके साथी, इंदौर से नारायण खर्चे, ललिता, गणेश, कार्तिक, परी, खुशी और वंदना, यहीं से अनिल कवचाले, सबिहा और सुषमा, पोटियाकला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता, शशांक और सीमा, सनावत से अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र, शेख मूसा, राजकुमार बोडाना, अदलपुरा गोगावा से फरमाइश करने वाले हैं संजय बामनिया, माया, कान्हा और कृष्णा, जाखोट राजस्थान से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत, सुंदरलाल, योगेश, दीपक और पूजा खटक, मेहरानगर पश्चिम बंगाल से अभिजीत प्रसाद, दीपक दास, अजीता और उनके साथी, दमदम कोलकाता से बसंत कुमार सिन्हा, रेखा देवी, अजय, अभय, सनातनी, गुड्डू, रिमी, तनुश्री और उनके साथी, कोलकाता से ही शिवानी कुमार साहू, प्रियंका, मुन्नी देवी साव, जयप्रकाश, रिया, आयुषी, अनुरुद्ध और बांके बिहारी, नेपानगर के

चीता और उनके साथी। दमदम कोलकाता से बसंत कुमार सिन्हा, रेखा देवी, अजय, अभय, सनातनी, गुड्डू, रिमी, तनुश्री और उनके साथी। कोलकाता से ही शिवानी कुमार साहू, प्रियंका, मुन्नी देवी साव, जयप्रकाश, रिया, आयुषी, अनुरुद्ध और बांके बिहारी। नेपानगर के श्रोता हैं सुदर्शन शाह, पल्लवी, प्रखर, कुश, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगला और राजेंद्र। बक्सर से शरफुद्दीन अंसारी, आसमा, राज अंसारी के साथ असलम, आफ्ताब, मेराज और उनके साथी। दुल्हापुर से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, इरफान, इसरार और नरगिस। सरधना मेरठ से अनिल जैन, संयम, मुस्कान, जिव्यम के साथ आदि और अंश जैन। हीरामन शेंडे, शीला देवी और सिद्धार्थ गोंडा ने अमरावती से। मंगनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति, कार्तिक, आर्यन, मऊ से मुन्ना स्वर्णकार, पिंकी, आर्यन, कृष्णा और पीहू, नजमुल हौदा, असम, जावेद, शगुफ्ता और उनके साथी। और ये खत के जरिए आप तक फरमाइश पहुंचाते हैं। सनावत के हमारे श्रोता हैं दिलीप मालाकार, सुनीता मुस्कान, बगुड़वा पथरिया से नरेंद्र नेताम और कुसुम नेताम, भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर दीपे और जावेंद्र कुमार वर्मा। आइए सुने कार्यक्रम का अगला गाना, लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म परदेसी।

कार्यक्रम का अंतिम गीत आपकी फरमाइश पर। रतनपुर के हमारे श्रोता हैं भागीरथ नायक, जीतेंद्र, सुभाष, रविंद्र, शिवानी, अश्विनी, हर्षराज, अरविंद, आदित्य, सोना, प्रियांश और गुनगुन। नागपुर से वैशाली, शैलेश गवांडकर, श्वेता, सुमित, ध्वनि और परी। दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना, आशीष। चंडीगढ़ से राहुल खराना, रचित और केशु। नागर कोहरा राजनांदगांव से झग्गर राम साहू, जामुन देवी, प्रेम पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और आराध्या साहू। खंडवा से संजय मार्कंडेय, राजेंद्र, ममता, मुकेश, संध्या और संहिता ताइडी के साथ वंदना राजवैद, रंजना तारे और किट्टू। उमरखेड़ महाराज से अभिजीत गवांडकर, सरिता प्रिंस, एकाश गवाड़कर। दुर्ग के श्रोता हैं आरसी कांबड़े, करुणा, मीना, अश्विनी और विपुल कांबड़े, मंगला पेंडे, विजय शुभम, पवन, संजीव डाबेराव आकोट से, निसार सलमानी, नौशाद, आलिया और आयान धनोरी तेलीवाला से। हरियाणा से अंकित कांगड़ा, मोनी, प्रिंस सीताराम और साहिल। कंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी, लकी, विक्की, नानू, रविंद्र, रौनक सेन। मजनू कटीला दिल्ली से कमल बालूजा, मधु, सागर। सतना से उमंग मलिक और आकांक्षा मलिक। कांडला बंदरगाह भुज से जगदीश चौहरी, पूजा और पायल, हुकुमचंद कटारिया, पिंटू सेन, हरिनिवास खेड़े, बाबूलाल चौधरी, कृष्णपाल चौहान, मिश्रा गोल्डन, राजेंद्र जैन और दीपक सचिन सनावत से। यवतमाल से संतोष खड़से और विनोद खड़से। वड़िंगखेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। और गोराया जालंधर से संदीप मक्कड़, ज्योति, मन्नत, भारत और कमल साहनी। आइए सुनते हैं दीदारे यार फिल्म का ये गीत, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़।

0: श्रोताओं, विद्याधर मुले के साथ आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का हमारा कार्यक्रम आपके मीत ये गीत। नमस्कार श्रोताओं।
1: आपके मीत ये गीत।
0: FM 101.2 MHz पर ये आकाशवाणी खंडवा है। आइए श्रोताओं, आपको सुनवाएं विविध भारती सेवा के कार्यक्रम।

0: फिल्म संसार के जानी मानी कलाकारों पर केंद्रित कार्यक्रम आज के फनकार, हर रोज सुबह 9:30 और रात 9:30 पर सिर्फ विविध भारती पर।
1: विशाल मिश्रा की आवाज में ये एनिमल फिल्म का गाना है।

और अब सुनते हैं अरिजीत सिंह और तुलसी कुमार की आवाजों में ये गाना। फिल्म का नाम है सत्य प्रेम की कथा।

0: जब शोर भरी दुनिया में विविध भारती हो आपके संग, तो घुलता है सुकून का रंग। दिन में 11 बजे जब आप सुनते हैं रंग तरंग, गैर फिल्मी गजलें, गीत और कव्वालियों का सफर।
1: ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो।
0: रंग तरंग हर रोज दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
2: कार्यक्रम जारी रहेगा संतराल के बाद।

संस्कृति से चित्रलोक, अलका याग्निक और शान की आवाजें। फिल्म का नाम बस इतना सा ख्वाब है।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य वो उनकी जवानी जो

0: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ। आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर।
1: वंदे मातरम सुजला।
0: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।
1: शस्य श्यामला मातरम वंदे।
0: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष। प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष।
2: यह है विविध भारती।
3: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी

दोस्तों, आ गई हूँ मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज के फनकार। आज के फनकार हैं गुजरे जमाने के जानी मानी ऐसी अदाकारा जो हैं बला की खूबसूरत, जिनके चेहरे पर है नूर।

0: अभिनेत्री श्यामा लाहौर में एक मुस्लिम परिवार में जन्मे थी। उनके माता पिता ने उनका नाम खुर्शीद अख्तर रखा था। फिल्मों में आने के बाद उनका नाम श्यामा पड़ा।
1: एक दिन मैं गई प्रकाश पिक्चर
0: जी,
1: प्रकाश पिक्चर वालों ने मुझे बुलाया और उसमें कहा नई माँ एक पिक्चर थी, उसमें रोल था छोटी लड़की का
0: जी।
1: तो मुझे बीजू भाई ने कहा कि तुम्हारा क्या नाम है, तो मैंने कहा खुर्शीद अख्तर। तो कह लगे खुर्शीद तो गाने वाली है, और फिर हमारे पास एक दूसरी भी है खुर्शीद, वो है खुर्शीद जूनियर, और ये तुम सीनियर कहाँ से आ गई
0: जी।
1: तो मैंने कहा तो फिर क्या किया जाए, तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं। मैंने कहा जैसे आप कहें। तो उन्होंने मुझे मेरा नाम श्यामा दिया।
0: अच्छा, उस समय
1: और मुझे
0: नाम
1: वो नाम इतना पसंद आया कि लोगों को अभी तक याद है कि श्यामा कौन है
0: जी। बिल्कुल।

दोस्तों 9 साल की नन्ही खुर्शीद ने पहली बार फिल्म जीनत की कवाली में बतौर सिंगर काम किया। उन दिनों नूरजहां की किसी फिल्म की शूटिंग चल रही थी और खुर्शीद अख्तर यानी श्यामा अपनी सहेलियों के साथ पहुंच गई दादर के स्टूडियो में शूटिंग देखने। तभी उस फिल्म के निर्देशक और नूरजहां के पति शौकत हुसैन ने पूछा कि तुम में से कोई लड़की इस फिल्म में काम करोगी। इस पर श्यामा ने तुरंत कहा, हाँ मैं करूंगी। बस इस तरह श्यामा का फिल्मी पर्दे की शुरुआत हो गई। हालांकि श्यामा के माता पिता हरगिज नहीं चाहते थे कि वे फिल्मों में काम करें, लेकिन श्यामा के जिद के सामने उन्हें झुकना पड़ा।

गाने में सिचुएशन ये है कि कार में गुरुदत्त और श्यामा हैं और रूठे हुए गुरुदत्त को श्यामा मना रहे हैं। उन्होंने आंखों और चेहरे के भावों से ऐसी खास अदायगी की है कि जब जब आंखों से और चेहरे से अभिनय की बात चलती है तो श्यामा का नाम आता है।

गुरुदत्त को श्यामा मना रही हैं। उन्होंने आंखों और चेहरे के भावों से ऐसी खास अदायगी की है कि जब जब आंखों से और चेहरे से अभिनय की बात चलती है तो श्यामा का नाम आता है।

श्यामा को बचपन से ही एक्टिंग और डांस से बेहद प्यार रहा है। स्कूल के दिनों में लंच टाइम में वे डेस्क पर खड़ी होकर डांस किया करती थीं। बाद में उन्होंने नृत्य और गायन की बाकायदा तालीम ली। घर में फुर्सत के लम्हों में डांस की प्रैक्टिस किया करती थीं। अब सुनिए फिल्म शारदा का ये गीत।

0: श्यामा को फिल्म शारदा के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। फिल्म देखने की बड़ी शौकीन रही हैं श्यामा। खास बात यह है कि करीब करीब हर फिल्मों से जुड़ी उनकी याद आज भी ताजा है।
1: जब मैं साइड हीरोइन बनी
2: जी,
1: तो तब दिलीप साहब के साथ एक पिक्चर आई थी मेरी, और उसका नाम था तराना
2: जी,
1: जिसमें थी मधुबाला और दिलीप साहब और श्यामा ही कहूंगी अपने आप को अब।
2: बिल्कुल।
1: और उसके बाद फिर पिक्चर मिली मुझे सजा। सजा पिक्चर में भी देवानंद साहब थे और निमी जी।
0: उस दौर के जाने माने सिनेमेटोग्राफर फली मिस्त्री ने श्यामा की खूबसूरती को कैमरे के लेंस से देखते हुए और सेल्यूलॉइड पर उतारते हुए उन्हें दिल में उतार लिया। फली मिस्त्री और श्यामा पहले प्यार के बंधन में बंधे और सन 1953 में फली मिस्त्री से उनका विवाह हो गया।
3: छुपा

अभिनेत्री श्यामा ने तकरीबन 200 फिल्मों में काम किया। फिल्मी पर्दे पर लगभग एक दशक श्यामा का एक छत्र राज था, यानी पांचवें दशक में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में उनका नाम शुमार था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की इस छवि को श्यामा ने कभी धूमिल नहीं होने दिया। उन दिनों सशक्त अभिनय के चलते उनके पास फिल्मों की भरमार थी, उनकी अदाकारी के जलवे थे और श्यामा उन दिनों खूब व्यस्त रही फिल्म संसार में।

0: हरदम।
1: सन 1979 में श्यामा अकेलेपन से घिर गईं और उनके पति फली मिस्त्री उन्हें इस फानी दुनिया में अकेला छोड़ गए। लेकिन श्यामा हिम्मत नहीं हारी, वे कदम दर कदम आगे बढ़ती गईं फिल्म संसार में।

सुपुत्री श्यामा ने पर्दे पर हर तरह के किरदार निभाए, लीड रोल भी किए, चरित्र अभिनेत्री के किरदार को भी बड़ी कुशलता से निभाया और कई फिल्मों में खलनायिका के रोल को भी पर्दे पर उन्होंने साकार किया। बहरहाल सुनिए बरसात की रात फिल्म का ये गाना।

0: मैंने ऐसे ऐसे डायरेक्टरों के साथ काम किया है कि वो कहते हैं ना कि प्यास बुझ गई
1: जी।
0: उसका नाम है बीमल रॉय
1: जी,
0: गुरुदत्त
1: जी,
0: कारदार साहब, फिर सत्यन बोस, फिर शक्ति सामंता, फिर ऋषिकेश मुखर्जी, फिर एसपी ईरानी, फिर बी मित्रा
1: जी,
0: और फिर आईएस जौहर, वो भी डायरेक्टर थे
1: जी।
0: और किन किन के नाम गिनवाऊं, बहुत ऐसे डायरेक्टर हैं जिनके नाम फिलहाल मुझे याद नहीं हैं, लेकिन कई ऐसे भी डायरेक्टर आए जिनके साथ वाकई मेरी तमन्ना थी कि मैं काम करूं
1: जी।
0: वैसे तो मैंने बचपन से लेके अभी तक 60 साल हो गए इंडस्ट्री में, तो कहते हैं ना कि सिर्फ एक आदमी बचा होगा बेचारा
1: जिनके साथ बेचारा अच्छा।
0: जिनके साथ मैंने काम नहीं किया
1: जी। दोस्तों आइए अभिनेत्री श्यामा की मशहूर फिल्मों पर एक नजर डालें। फिल्म मिर्जा साहिबा, खानदान, छोटी बहन, स्वर्ण सुंदरी, भाई भाई, छू मंतर, लाला रुख, दरवाजा, धूप छांव, भागवत महिमा, शबनम, निशाना, रूपलेखा, पतंगा, तकदीर, आसमान, ठोकर, मुसाफिर खाना वगैरह वगैरह। बाद की कुछ फिल्मों में अभिनेत्री श्यामा चरित्र अभिनेत्री के रूप में नजर आईं, लेकिन उन फिल्मों में भी उन्होंने अपने अभिनय की बारीकी से दर्शकों को खूब आकृष्ट किया। श्यामा की उस दौर की फिल्में हैं खेल खेल में, सेवक, अजनबी, नया दिन नई रात, हनीमून, सूरज और चंदा, कंगन, जिंदगी जिंदगी, पायल की झनकार वगैरह वगैरह। अभिनेत्री श्यामा चली गईं इस फानी दुनिया से, दे गईं फिल्मी दुनिया को खलिश और सन्नाटा। जब इंसान नहीं रहता तब वो हमारे आसपास और ज्यादा रहता है, उसके न होने का एहसास कचोटता है, दुख देता है। जब सुनी थी श्यामा जी की आवाज तो वे सामने थीं, उन्हें छूकर उन्हें नमन किया था, लेकिन आज सिर्फ उनकी आवाज है, वे नहीं है हमारे साथ।

0: शोध, आलेख और स्वर रेडियो सखी ममता सिंह का, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले की। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।
2: भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में हमारा अगला प्रसारण होगा।
3: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है पन्ना जिले की चिट्ठी। आलेख दिलीप कुमार शर्मा का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। पन्ना जिले के सुप्रसिद्ध धार्मिक और प्राकृतिक स्थल बृहस्पति कुंड में बने नए ग्लास ब्रिज का क्षेत्रीय सांसद वीडी शर्मा ने निरीक्षण किया। भगवान श्रीराम के वनगमन पथ और देवगुरु बृहस्पति की तपोस्थली के रूप में पूजनीय इस स्थल पर बना यह ग्लास ब्रिज पर्यटकों को प्रकृति का अनूठा नजारा दिखाएगा। सांसद श्री शर्मा ने कहा कि इससे क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। पन्ना को सीधे रेल नेटवर्क से जोड़ने वाली ललितपुर सिंगरौली नई रेल लाइन परियोजना के तहत फुलवारी से देवेंद्र नगर के बीच करीब 7 किलोमीटर लंबे नए रेल खंड का रेल संरक्षा आयुक्त ने विस्तृत निरीक्षण किया। इस दौरान नए ट्रैक पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सफल स्पीड का ट्रायल भी किया गया। हालांकि खजुराहो पन्ना खंड में रूट डिजाइन में बदलाव के चलते 7 सुरंगें और 10 पुल बनाए जाएंगे, जिससे समय और लागत दोनों बढ़ने की संभावना है। पन्ना जिले में विश्व पर्यावरण दिवस पर बीते दिनों एक पेड़ मां के नाम 2.0 महाअभियान के तहत विभिन्न स्थानों पर पौधरोपण किया गया। पन्ना विधायक ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने अटल पार्क में और पवई विधायक प्रहलाद लोधी ने बनौली में पौधे लगाए। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष, कलेक्टर और वन मंडलाधिकारी की उपस्थिति में 150 फलदार और छायादार पौधे रोपे गए। पन्ना जिले की शाहनगर ग्राम पंचायत प्रदेश की नंबर 1 स्वावलंबी पंचायत बन गई है। ये पंचायत जल कर, स्वच्छता कर, संपत्ति कर और बाजार बैठकी कर से हर महीने करीब 3 लाख रुपए यानी सालाना 36 लाख रुपए का राजस्व अर्जित कर रही है। पंचायत ने मुख्य बाजार में डिवाइडर युक्त डामर सड़क और सुंदर लाइटिंग भी कराई है। तमोली ग्राम वन समिति के अध्यक्ष अजय चौरसिया की पक्षी संरक्षण की अनूठी पहल पूरे प्रदेश के लिए मिसाल बन गई है। उन्होंने सूखी लौकी और प्लाईवुड से प्राकृतिक पक्षी घर तैयार किए हैं, जिसमें आज सैकड़ों पक्षी बसेरा कर रहे हैं। उनकी इस कोशिश को पर्यावरण प्रेमियों से खूब सराहना मिल रही है। शाहनगर तहसील के सामने कांग्रेस पार्टी ने किसानों की मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन बीते दिनों किया। तेंदुघाट बांध सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र के 4 गांवों के किसानों को 8 साल से मुआवजा न मिलने पर यह प्रदर्शन किया गया। तहसीलदार ने बताया कि भू अर्जन की फाइल जिला मुख्यालय भेज दी गई है और जल्द ही मुआवजा वितरित किया जाएगा। अजयगढ़ जनपद की ग्राम पंचायत बिहरपुरवा में मनरेगा कुआं निर्माण के दौरान मिट्टी धंसने से 5 मजदूरों की मौत के मामले में प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सरपंच और ठेकेदार सहित 3 जिम्मेदारों पर FIR दर्ज की है। प्रभारी मंत्री इंदर सिंह परमार, सांसद वीडी शर्मा और विधायक ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधवाया। भाजपा नेता संजय नागराइच को मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। गुनौर विधायक राजेश वर्मा, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रविराज यादव और पूर्व भाजपा अध्यक्ष अंकुर त्रिवेदी सहित अनेक कार्यकर्ताओं ने उन्हें बधाई दी। जिले की प्रशासनिक व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए कलेक्टर उषा परमार ने बीते दिनों पवई क्षेत्र का दौरा कर सब जेल, नवनिर्मित सिविल अस्पताल, कस्तूरबा कन्या छात्रावास और जनजाति छात्रावास की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी अनिल कुमार तलैया ने शाहनगर में सभी प्राचार्यों की आपात समीक्षा बैठक ली। उन्होंने मानसून से पहले स्कूल भवनों की मरम्मत, पेयजल व्यवस्था और विद्यार्थियों की अपार आईडी बनाने के काम को हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए। जिले के कृषि विज्ञान केंद्र की प्री खरीफ वैज्ञानिक परामर्शदात्री समिति की बैठक बीते दिनों जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के कुलगुरु प्रोफेसर प्रमोद कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में किसानों को खरीफ मौसम में समन्वित खेती, धान की सीधी बुआई, जैव उर्वरकों के उपयोग और

0: मोटे अनाज की खेती अपनाने की सलाह दी गई। विशेषज्ञों ने परंपरागत बीजों के संरक्षण और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर भी विशेष जोर दिया। जिला चिकित्सालय में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में गर्भवती महिलाओं की निःशुल्क हीमोग्लोबिन, ब्लड प्रेशर, शुगर और सोनोग्राफी सहित अन्य जांचें की गयी। जिले में जनगणना 2027 के तहत मकान सूचीकरण का कार्य समय पर पूरा न करने पर कलेक्टर उषा परमार ने 42 प्रगणकों और सुपरवाइजरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जिले के शासकीय कार्यालयों में AI टूल्स के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज कलेक्ट्रेट स्थित ई दक्ष केंद्र में 45 शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। विभिन्न विभागों के इन कर्मचारियों को कार्यालयीन कार्यों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रभावी उपयोग की जानकारी दी जाएगी। पन्ना जिले की चिट्ठी में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे पन्ना जिले की चिट्ठी। आलेख था दिलीप कुमार शर्मा का, वाचन स्वर अभिषेक कटियार का था। ये प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जा रहा था। कृपया
2: FM 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से। प्रस्तुत है निमाड़ी लोक गीतों का हमारा कार्यक्रम और आज के कार्यक्रम के कलाकार प्रभाकर दुबे और उनके साथी। पहले आपको सुनवाते हैं गम्मत।
3: अरे यार, यो घर मगा खाना का दौड़ा है। आना जब से लुगाई मरी गई, जब से कहीं मगा स्वादो नहीं।

0: अरे क्यों रे भाई, तुखा मैंने कहती हाक पाड़ी, थारो कहीं पत्तो नहीं है, कहाँ गयो तो तू?
1: अरे पटेल साहब, मग माफ कर दियो। अरे हाँ, ये बड़गांव बावड़ी खेड़ा ने पांजरिया ने बड़गांव गयो तो बाल बनाऊ।
0: अरे बाल बनाने पर महारा भी तो बाल बनाऊ तो
1: चलो लियो बैठो।

0: अरे अंगो तो उतारो।
1: अरे यो अंगो उतार दियो यार, ले
0: जरा सिल्ली पर जरा उस तरह घिस लियो।
1: हाँ घिस, देख तो भाई क्यों रे, वो तू अभी 3-4 गांव से आयो।
0: हाँ।
1: तू वहाँ का कहीं हाल चाल बताओगे कि नहीं?
0: हाल चाल लियो। अरे वो नानो छे ने नाना की छोरी का हम्मल रही गो थो, तो वो को लोग लाएगा दूसरा गांव।
1: अरे के को थो?
0: अरे लोग कैद की सखाराम को थो। अरे पटेल दाजी, तुम हाथ से कब तक रिता रहोगा? अरे ये सुनसान घर आप खाना दौड़े, अरे ब्याह क्यों नहीं करता?
1: अरे हाँ यार बुआनिया, बिना लुगाई का सब सुनो छे। मारी लुगाई मरी जब से घर सुनसान हुई गई, ये घर मगा काटना का दौड़े।
0: ता तुम कहो तो नात्रा को सोए भिड़ो। अब उठो, बन गया बाल।
1: आ तो यो मैं कुर्तो पहरियो, कहाँ चला बोल, चलने का तैयार छा हूँ।
0: हाँ तो चलो, नया काम में देर नहीं होनी चाहिए, चलो जल्दी चलो।
1: हाँ चलो
0: चलो। अरे अरे थोप थोप, अरे पोरा जरा गाड़ी के थोप रहे। अरे पटेल, अरे जरा, अरे पटेल जरा गाड़ी का थोबार जा। अरे अरे हाँ सो जरा पोरा थोप थोप थोप। अरे देख देख, अरे कुआ भाई देखे रही कुआ पर। अरे ओका से सोई भेड़े नाव थारो। अरे बरका से बाल्टी पानी पीने का बाल्टी मांगूंगा, इना भाना जाऊं
2: छोटी
0: न थारो सोए जमे नाव। यहां रजे पटेल गाड़ी जोड़े खड़े रजे
2: छोटी बड़वाणी को।

0: ओ जीजी, अरे वो बहन, अरे वो काकी, ओ मारी लुगाई,
1: थारी सीढ़ी बांधू थारी मरी गया, तू ना मखा लुगाई क्यों कयो?
0: देख देख देख, मैंने तू का जीजी कयो तो तू बोली नहीं, अन पर तू का बहन कयो अन तब भी नहीं बोली, अन कार में तू काकी कयो और तब भी तू बोली, ना लुगाई कयो तो क्यों तूने सुनियो क्यों हुआ?
1: वारे तू लुगाई कय ना हम सुनिया करूं, जीभ नहीं खाई लूंगा थारी।
0: अच्छा चल चल चल चल, अरे ओ पोरिया, अरे गाड़ी में से रुपया ना उड़ना दे उड़ना दे, मत पकड़ा उनका, ना कलदार ना दार दाबी दे तो उन्हें ना बांडिया बेल की जरा छमटिक मोड़, अने उन्हें बिना पटाख की गाड़ी की जरा गिर रहे, अने कलदार ना दचक।
1: क्यों रे भाई, या काई बात है, ये रुपया ना का क्यों उड़ाई रहा है?
0: अरे वो पटेल छे नी गाड़ी में, ओका आनो लगानो, उनका वाटा लुगाई लाउनो।
1: तुमरा पटेल का पास में कितना कलदार छे, काई आसामी अच्छी छे?
0: अरे काई बात।

0: करत उनका यहाँ एक एक भैंसी नाक पाछ बारह बारह हेलगा पायला चले न मई मांगने दूसरा घर जाओ।
1: क्यों भाई तुमरो नाव काई छे?
0: अरे मारो नाव भुवानियो छे।
1: भुवानिया भाई पटिल का यहाँ मई दूध की कहीं कमी तो नहीं होएगी मखा?
0: अरे मई की बात छे हम यानी एक तड़ाई खोदे देवाय न ओकाम सारो भैंसी नाको दूध नाखी देवाय ने एक टाया बेल का ओका अंदर पटकी देवाय न बेल का अल्यांगसी वल्यांगसी फेरिया कराय न बेल का फेरते फेरते जब वो फूली जाए तो समझनो कि माखन आई गयो न एक बेलदार को बुलाई न फिर उन्हें माखन की दीवार खड़ी करनो न भाभी तुम्हारो मन माखन खाना को हो तो आसो कर जो दो हाथ ना के पाछे बांधी ले जो न जबान का ऐसी हेड़ी ना चाय ले खाई ले माखन।
1: तो भुवानिया भाई तुमरा पटिल का यहाँ रकम भाव छे?
0: अरे भाभी की बात काई बात नींदता नींदता यदि खेत में कभी बिच्छो मिली गयो तो ठीक छे आ नहीं तो अपना पाँव तो पोसे ही रोज।
1: अच्छा ऐसी बात छे रकम ना घर में छे कि नहीं है?
0: रकम आ रकम वकम कहीं घर में रखता तब बैंक का नाम जमा कराए ले छे। अरे ओ परिया अरे सुन तो नहीं साहब अरे उन्हें बिना पाठा की गाली का कर रे ना उन्हें कलदार ना कर चक अरे उन्हें रुपया ना को उन्हें था मत पकड़ अरे उन्हें बांडा बेल की जरा छमटिक मचक।
1: हाँ तो भाई हम पटिल का यहाँ बैठने का तैयार छे।
0: सही में तो चल वो पटेल वहाँ गाड़ी जोड़ खड़े छे पट से तुम्हारो नाथरो लगे देवांगा ना तुम घर में राज कर जो अरे हमारो काई छे।
1: हाँ तो भाई चलो हम राजी छे नात्रो लगाने को
0: राजी छे। वाह वाह चलो चलो चलो। अरे पटेल ओ पटेल देख रे या भाई राजी हुई गई रे।
2: यार
0: तुम्हारा घर बैठने को तैयार छे।
2: वाह
0: मनो को खूब झांसा पट्टी दी।
2: अच्छा
0: हाँ ने वाह समझाए कि तुम्हारे यहाँ खूब रुपयो पैसो छे।
2: वाह यार तू तो बड़ो होशियार छे रे।
0: अरे फिर आवाज़ थोड़ी छे। अरे ओ भाई
1: कहीं आए
0: अलग जाए पटेल का पास। हाँ आसो
2: कहो थारो नाम कई छे?
1: मारो नाव फुंदा छे। फुंदा
2: अरवा आयन फुंदा ना की तरफ तू छे हो
1: तो साहिबा मका करण फूल लाई दोगा?
2: अरे सब करण फूल लावांगा
1: जुमको लाई दोगा
2: वो तो करना था भाई। अरे तू सिंगाड़ो बजा यार नाथरो लगा बजा सिंगाड़ो।
0: हाँ ये लो ये बजाया है ने अब तू है ने पटलेन हुई गई।
1: हाँ
0: अब आलियांगा आई जाए इनका जोड़ा आई जाए अब यो आसो यो न यो हुई गए ना तो।
1: हाँ तो मखा तुम करण फूल झुमको लाई दीजो।
2: अब आसो कहनी अब सब थारो घर है हुई गए नहीं सब तू को लाई देवांगा
1: साहिबा।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: हमारे श्रोता कार्यक्रम में इस बार आपकी मुलाकात होगी सुशील कुमार शर्मा से।
2: जो सामने वाले के चेहरे पे जो मुस्कान दिखाई देती है उस मुस्कान के लिए मैं सुबह से शाम तक काम करता रहता।
1: तो सुनना ना भूलिएगा हमारी श्रोता इस रविवार सुबह 7 बजे।

0: हमारी बेटी।
1: काया है?
0: अरे देखनी कौन आया वो।

0: कर भाई ससरा, तू जागो भन्न का। अरे बेटा वो तो कहीं जाने का तैयार नहीं है।
1: बेटी मारी थारो ससरा।

0: कहिया दादाजी
1: बेटी हो मारी बेटी
0: अरु कहिया
1: अरे देखनी यार दूसरो आयो यहाँ तो लेने वाला नहीं कि लंगाल लगे
0: जे
1: वो धरो जे
0: हाँ तो नहीं जाऊंगा
1: कसी नहीं जाएगी

0: अरे काय आए काय तारा लेने वाला ना किधर लंगाल लगे
1: हम नहीं जाती
0: वो आई गो
1: नहीं, तो नहीं जाऊंगा।

0: अरे कल्याण कौन आया घोड़ा बैठी ना
1: आया?
0: वो थारो धनिया अच्छा कोई नहीं आवा कहीं लेना का तुका
1: नहीं आओ तो कहीं नहीं जाऊंगा
0: जानू पड़ से बेटा
1: नहीं नहीं

भाई या तो कही रही कि तू बाछी ने बता बेटी थारो धनियार काई कही रो वो तो बड़ी अच्छी बात बताई रो बेटी मारी थारो

0: बाबा तू तो वेगा गणित ही पूछने लग गई।
1: केतरा बचग कदी दस मसीना नो सात बोर खाई जाए हो झालरियो।
0: बता भाई कोई सारो करी रोज। अरे बेटी भारी ओका तरफ देख आंगले न गिण तू, ओका तरफ देख आंगले न गिण तू, उत्तर ओको तीन आए
1: हो झालरियो।
0: तीन उत्तर बताई दिया उन्हें।
1: सुलझ

निवाड़ी लोकगीतों के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे पारंपरिक लोक रचनाएं, कलाकार प्रभाकर दुबे और उनके साथी। अभी कार्यक्रम समाप्त होता

0: क्या बात है जीजी, नई साड़ी, नए गहने, बड़ी सजी धजी लग रही हो।
1: अरे जीजी, असल में बात ये है, हमारे इनने ना जब से आकाशवाणी खंडवा पे हमारी दुकान का विज्ञापन दिया है ना, तब से हमारी दुकान बहुत चल रही है। मतलब
0: है? ऐसा क्या? अब मैं भी अपने इनको बोलूंगी कि हमारे बिजनेस का विज्ञापन भी आकाशवाणी खंडवा पर दे। पर देंगे कैसे?
1: अरे इसमें क्या है जीजी, बस आकाशवाणी खंडवा जाओ और विज्ञापन दो।
2: सुनते रहिए निमाड़ की सुरीली धड़कन, आकाशवाणी खंडवा।
3: FM 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी खंडवा है, आपको सुनवाते हैं नारी जगत कार्यक्रम।

नमस्कार सखियों, स्वागत है आपका अपने मनपसंद कार्यक्रम नारी जगत में और मैं हूं आपकी सखी मीनू जैन। सखियों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हमारे समाज और देश के भविष्य से जुड़ा हुआ है। वो है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, जो हर साल 12 जून यानी आज के दिन मनाया जाता है। इसका उद्देश्य बाल श्रम की समस्या के प्रति लोगों को जागरूक करना और बच्चों को उनके अधिकार दिलाने के लिए प्रयास करना है। सखियों, हर बच्चे का स्थान स्कूल, खेल का मैदान और परिवार का प्रेमपूर्ण वातावरण है, न कि किसी फैक्ट्री, दुकान या कहीं और मजदूरी करना। सखियों, बाल श्रम से बच्चों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास प्रभावित होता है। भारत में बाल श्रम को रोकने के लिए कानून बनाए गए हैं, बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से मजदूरी करवाना कानूनन अपराध है। इसके साथ ही हमें भी बाल श्रम को रोकने में अपनी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। और सखियों, कल है अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस। यह दिवस हर साल 13 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य एल्बिनिज्म के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाना, इससे जुड़े भ्रम और मिथकों को दूर करना और उनके अधिकारों और सम्मान की रक्षा करना है। सखियों, एल्बिनिज्म कोई संक्रामक रोग नहीं है, यह एक आनुवांशिक स्थिति है जिसमें शरीर में मेलानिन नामक रंग द्रव्य बहुत कम या बिल्कुल नहीं बनता। इसके कारण व्यक्ति की त्वचा, बाल और आंखों का रंग सामान्य से हल्का होता है। ऐसे लोगों को धूप और दृष्टि संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस वर्ष की थीम है प्राउडली इन माई स्किन, सेलिब्रेटिंग ऑल स्किन टोन्स, यानी कि अपनी त्वचा पर गर्व करें, सभी त्वचा रंगों का उत्सव। यह संदेश हमें सिखाता है कि हर व्यक्ति अपनी पहचान में अनूठा और सुंदर है। किसी के रंग रूप या शारीरिक विशेषताओं के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है कि हम सभी व्यक्ति का सम्मान करें, जहां हर कोई गर्व के साथ कह सके, मैं जैसी हूं वैसी ही अच्छी हूं। और अब सुनते हैं अशोका फिल्म का ये गीत।

0: लगता ही है, साथ ही उसका असर अपने पूरे परिवार को पड़ता है। सखियों, दिवस कोई भी हो, ये सिर्फ एक दिन के लिए नहीं होता, बल्कि हमें जागरूक करने के लिए बनाया जाता है, जिससे हम उसको समझकर उस पर अमल कर सकें। यह अभियान भारत सरकार द्वारा 15 अगस्त 2020 को शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य देश को नशा मुक्त बनाना है, लोगों को नशे से होने वाले नुकसान बताकर उन्हें जागरूक करना है और उन्हें नशे से दूर रहने के लिए प्रोत्साहित करना है। सखियों, नशा मुक्त जीवन जीने के लिए परिवार और दोस्तों का सहयोग सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर समाज भी इस समस्या के खिलाफ एकजुट हो जाए तो नशे पर काबू पाया जा सकता है। एक नशा मुक्त समाज न केवल स्वस्थ बल्कि सशक्त भी होता है। हमें इस दिशा में जागरूकता फैलाने और एकजुट होकर काम करने की जरूरत है, ताकि नशे को जड़ से खत्म किया जा सके।
1: हमारे श्रोता कार्यक्रम में इस बार आपकी मुलाकात होगी सुशील कुमार शर्मा से।
2: जो सामने वाले के चेहरे पे जो मुस्कान दिखाई देती है, उस मुस्कान के लिए मैं सुबह से शाम तक काम करता रहता।
1: तो सुनना ना भूलिएगा हमारे श्रोता इस रविवार सुबह 7 बजे।
0: सखियों, अब बात करते हैं 14 जून, यानी कि 14 जून को हम मनाते हैं एक महत्वपूर्ण दिवस, वो है विश्व रक्तदाता दिवस। सखियों, रक्तदान करने वाले को रक्तदाता कहते हैं। हम रक्तदान इसलिए करते हैं ताकि अगर किसी की दुर्घटना हो जाए या आकस्मिक चिकित्सा में ब्लड की जरूरत पड़े तो उसे तुरंत उस ब्लड ग्रुप का ब्लड उपलब्ध करा सके। इस कार्य के लिए जिलों में ब्लड बैंक की स्थापना की गई है, जहां पर जनता के द्वारा दिया गया ब्लड सुरक्षित रखा जाता है और जरूरतमंद लोगों को उपलब्ध कराया जाता है। आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रतीति जैन। तो सुनते हैं ये भेंटवार्ता। सखियों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपसे चर्चा करेंगे, रक्तदान के विषय में। रक्तदान एक ऐसा विषय है जिसे लेकर बहुत सारे सवाल हमारे मन में आते हैं। उन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रतीति जैन। तो नमस्ते प्रतीति जी, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: नमस्ते मीनू जी, धन्यवाद और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
0: प्रतीति जी, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि हम विश्व रक्तदाता दिवस क्यों मनाते हैं और इसका क्या महत्व है?
3: विश्व रक्तदाता दिवस हर साल 14 जून को मनाया जाता है। इसे मनाए जाने का मुख्य कारण लोगों को रक्तदान के लिए जागरूक एवं प्रेरित करना है तथा रक्तदाताओं का सम्मान करना भी है। जैसा कि हम सब जानते हैं, रक्त का कोई और विकल्प नहीं है और न ही इसे किसी फैक्ट्री में बना सकते हैं। दुर्घटना, बड़ी सर्जरी, डिलीवरी, कैंसर, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया जैसी बीमारी में मरीजों की जान बचाने के लिए ब्लड की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए सुरक्षित एवं पर्याप्त रक्त अवेलेबल कराने में ब्लड डोनर का रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसीलिए हमें स्वयं ब्लड डोनेट करना चाहिए और दूसरे लोगों को भी ब्लड डोनेशन के लिए प्रेरित करते रहना चाहिए।
0: तो फिर एक यूनिट रक्त में कितने लोगों की मदद की जा सकती है?
3: एक यूनिट ब्लड से 3 लोगों की मदद की जा सकती है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि दान किए हुए ब्लड को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जैसे लाल रक्त कोशिकाएं यानी RBCs, प्लाज्मा और प्लेटलेट। उदाहरण के लिए RBCs का यूज एनीमिया के लिए होता है और प्लेटलेट का डेंगू में।
0: और कौन कौन लोग रक्तदान कर सकते हैं?
3: मीनू जी, नॉर्मली 18 से 65 वर्ष की आयु का कोई भी स्वस्थ व्यक्ति ब्लड डोनेट कर सकता है। उनका वजन कम से कम 45 से 50 किलो होना चाहिए और हीमोग्लोबिन कम से कम 12 ग्राम होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आप स्वस्थ हैं तो आपका खून किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति की जान बचा सकता है।
0: अच्छा डॉक्टर, लोगों में ऐसी भ्रांति है या सच कि रक्तदान करने से शरीर में कमजोरी आती है? इसके अलावा भी ऐसी कौन कौन सी गलत धारणाएं हैं रक्तदान को लेकर?
3: बहुत लोगों को लगता है कि ब्लड डोनेशन के बाद उनके शरीर में कमजोरी आ जाएगी, परंतु ये बात बिल्कुल गलत है। देखिए, रक्तदान के बाद हमारा शरीर कुछ ही समय में ब्लड की भरपाई कर लेता है और व्यक्ति अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज करने लगता है। इसके अलावा लोग ये भी मानते हैं कि रक्तदान से शरीर में खून की कमी हो जाएगी, वजन कम हो जाएगा या उन्हें कोई बीमारी हो जाएगी, परंतु ये सब सच नहीं है।
0: तो एक व्यक्ति कितनी बार रक्तदान

सखियों, अब बात करेंगे हम नशा मुक्ति अभियान के बारे में। सखियों, नशा किसी का भी हो, चाहे वो सिगरेट बीड़ी हो, तंबाकू हो या कोई मादक पदार्थ हो, उसका नुकसान तो हमारे शरीर को पड़ता है।

0: कर सकता है।
1: यदि हीमोग्लोबिन नॉर्मल है तो पुरुष हर 3 महीने में और महिलाएं हर 4 महीने बाद रक्तदान कर सकते हैं। ब्लड डोनेट करने के बाद हमारा शरीर नए रक्त को बना लेता है, इसीलिए 3 से 4 महीने के बाद दोबारा रक्तदान करना सुरक्षित है।
0: प्रतिदिन जी रक्तदान की प्रक्रिया में कितना समय लगता है?
1: नॉर्मली ब्लड डोनेशन की पूरी प्रक्रिया में 20 से 30 मिनट का टाइम लगता है। इसमें पहले पंजीकरण, फिर स्वास्थ्य जांच जैसे कि ब्लड प्रेशर, वजन, हीमोग्लोबिन और ब्लड ग्रुप शामिल है। केवल ब्लड निकालने में केवल 8 से 10 मिनट लगते हैं। पूरी प्रक्रिया के बाद 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट की आवश्यकता होती है। उसके बाद एनर्जी ड्रिंक दिया जाता है।
0: तो फिर रक्तदान से पहले और बाद में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए हमें?
1: श्रोताओं, रक्तदान के पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे रात को ठीक से पूरी नींद लें, रक्तदान से पहले पर्याप्त मात्रा में पानी या लिक्विड चीजें लेते रहें, खाली पेट ब्लड डोनेट ना करें, हल्का और पौष्टिक भोजन करने के बाद ही ब्लड डोनेट करने जाएं और ब्लड डोनेट

0: से पहले और बाद में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए हमें?
1: श्रोताओं, रक्तदान के पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे रात को ठीक से पूरी नींद लें, रक्तदान से पहले पर्याप्त मात्रा में पानी या लिक्विड चीजें लेते रहें, खाली पेट ब्लड डोनेट ना करें, हल्का और पौष्टिक भोजन करने के बाद ही ब्लड डोनेट करने जाएं, और ब्लड डोनेशन के बाद 10 से 15 मिनट आराम करना चाहिए। अत्यधिक शारीरिक श्रम से बचें। यदि किसी को ब्लड डोनेशन के बाद चक्कर आए तो बैठ या लेट जाएं और नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में दिखा दें।
0: ये तो बात हुई कि रक्तदान करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अब किन परिस्थितियों में या फिर ऐसे कौन से व्यक्ति रक्तदान नहीं कर सकते?
1: हर व्यक्ति रक्तदान नहीं कर सकता। यदि किसी व्यक्ति को बुखार, किसी प्रकार का गंभीर संक्रमण, हाई ब्लड प्रेशर, गंभीर हृदय रोग, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV जैसी संक्रामक बीमारियां हो तो ऐसे व्यक्ति को ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हाल ही में बड़ी सर्जरी हुई हो, प्रेगनेंसी हो या हीमोग्लोबिन कम हो, तब भी रक्तदान से बचें।
0: प्रतीति जी, हमारी आज की युवा पीढ़ी भी बहुत जागरूक है, तो युवाओं को नियमित रक्तदान के लिए कैसे प्रेरित किया जा सकता है?
1: युवाओं को मैं यह बताना जरूर चाहती हूँ कि रक्तदान एक सुरक्षित और सरल प्रक्रिया है, जिससे किसी जरूरतमंद व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। जब उन्हें यह एहसास होगा कि उनके कुछ मिनट से किसी व्यक्ति को नया जीवन दान मिल सकता है, तो वे ब्लड डोनेट करने के लिए जरूर मोटिवेट होंगे। कॉलेजों, सोशल मीडिया और ब्लड डोनेशन कैंप के माध्यम से भी युवाओं में जागरूकता बढ़ाई जा सकती है। मेरा मानना है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति है। यदि हर योग्य युवा रेगुलरली रक्तदान करे तो एनीमिया की समस्या से काफी हद तक हम दूर हो सकते हैं।
0: ऐसा कहते हैं रक्तदान महादान है, ऐसा क्यों कहा जाता है?
1: हाँ मीनू जी, रक्तदान को महादान इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह एक ऐसा दान है जो किसी व्यक्ति को जीवन दान दे सकता है। ब्लड का कोई और ऑप्शन नहीं है और इसे किसी फैक्ट्री में भी नहीं बना सकते। एक्सीडेंट, ऑपरेशन, डिलीवरी, कैंसर जैसे कई बीमारी में अचानक रक्त की कमी हो जाती है। यदि ब्लड बैंक में रक्त अवेलेबल होगा तो आसानी से ब्लड मिल जाएगा और उस व्यक्ति की जान को बचा सकते हैं।
0: अच्छा डॉक्टर, अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप रेयर हो तो उसका रक्तदान कितना महत्वपूर्ण हो जाता है?
1: अगर व्यक्ति का ब्लड ग्रुप रेयर है तो उसके लिए जरूरत पड़ने पर सही ब्लड ग्रुप वाला ब्लड मिलना कठिन हो जाता है। इसीलिए जिन व्यक्तियों का ब्लड ग्रुप रेयर है उन्हें ब्लड डोनेट करते रहना चाहिए और इसका एक रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना चाहिए, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनका ब्लड ग्रुप वाला ब्लड आसानी से प्राप्त हो जाए।
0: अच्छा डॉक्टर, महिलाओं के लिए रक्तदान से जुड़े क्या निर्देश हैं?
1: महिलाएं भी पुरुषों की तरह सुरक्षित रूप से रक्तदान कर सकती हैं। केवल प्रेगनेंसी और डिलीवरी के कुछ समय बाद रक्तदान नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बाद खून की कमी यूजुअली देखी जाती है। हाँ, अगर किसी महिला को खून की कमी हो तो पहले वह स्वयं अपना उपचार करे, उसके बाद ब्लड डोनेट करे। सखियों, याद रखें, ब्लड डोनेशन एक सिंपल और इजी प्रोसेस है। आप इससे डरे ना और रेगुलरली ब्लड डोनेट करें।
0: अच्छा डॉक्टर, क्या लड़कियां और महिलाएं पीरियड्स के समय ब्लड डोनेट कर सकती हैं?
1: हाँ मीनू जी, लड़कियां और महिलाएं पीरियड्स के समय ब्लड डोनेट कर सकती हैं। परंतु यदि किसी महिला को अत्यधिक पेट दर्द, ज्यादा ब्लीडिंग हो रही हो तो ब्लड डोनेशन से बचे। पहले वे स्वयं अपना हीमोग्लोबिन नॉर्मल करें, फिर ब्लड डोनेट करें। परंतु अगर बहुत इमरजेंसी में आपके किसी परिवार के सदस्य या मित्र की जान बचाने के लिए ब्लड की आवश्यकता है तो आप पीरियड्स में ब्लड डोनेट करें, उसे घबराए ना।
0: अंत में आप हमारी सखियों को रक्तदान के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी?
1: अंत में मैं अपनी सभी श्रोताओं को यह कहना चाहूंगी कि रक्तदान एक सरल, सुरक्षित और

श्रोताओ, आपने सुना नारी जगत कार्यक्रम एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी खंडवा से बोल रहे हैं। आइए अब सुने विविध भारती सेवा के कार्यक्रम।

0: रंग तरंग
1: रंग तरंग कार्यक्रम में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूं। मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं ताजमहल फिल्म की इस कव्वाली से। मोहम्मद रफी, आशा भोसले, मन्ना डे और साथियों की आवाजें हैं। साहिल के बोल, रोशन का संगीत।

0: पंकज उदास की आवाज में ये गजल अभी आपने सुनी, कलाम था कैसर उल जाफरी का।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न...

0: भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: थी धन्य वो उनकी जवानी जो

0: मिताली मुखर्जी के स्वर में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।
1: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ, आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर। हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।
2: शस्य श्यामलां मातरं वंदे मातरं।
1: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम, एक जय घोष। वंदे मातरम, एक जय घोष। प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम, एक जय घोष।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग। आइए अब सुनते हैं एक फिल्मी गीत जगजीत कौर की आवाज में। साहिल लुधियानवी के बोल हैं, खयाम का संगीत, फिल्म शगुन।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

लता मंगेशकर और जगजीत सिंह की आवाजों में आप सुन रहे थे सजदा एल्बम से ये गजल। ये है मीनू पुरुषोत्तम की आवाज, कलाम सरदार अंजुम का।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
2: सखी सहेली।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, चिकित्सा, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और सुशासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व आधारित विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। गृहमंत्री अमित शाह नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के महानिदेशक उपस्थित हैं। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को सम्पन्न होगी। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज तथा उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गृहमंत्री अमित शाह, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियू रियो की उपस्थिति में सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि इस समझौते से हमारी विदेशों पर निर्भरता कम होगी।
1: आज सिर्फ एक एमओयू से ही 1000 से 1500 बैरल प्रतिदिन जो दोहन की हमारी क्षमता है उसको 10 गुना से ज्यादा हम बढ़ा पाएंगे और एक ही फील्ड में 15,000 करोड़ से ज्यादा रिकवरी के संभावनाएं हैं। परंतु पूरे नागालैंड के अंदर ऑयल और गैस जितना भी पड़ा है इसका उत्खनन होगा तो मुझे लगता है कि हमारी जो कमी है इस क्षेत्र में हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, वो निर्भरता काफी हद तक हम पूरी कर पाएंगे।
0: सरकार ने संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों को खुदरा विक्रेताओं से मोटर ईंधन और हाई स्पीड डीजल खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि वे अपनी जरूरतें घरेलू पेट्रोल पंप से पूरी करें। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जारी संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और निर्बाध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों तथा अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुलतारंता वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का असर प्रभावित क्षेत्रों के साथ अन्य क्षेत्रों में भी होता है। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रखे है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा और कुशलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने ओमान के तट पर पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें 3 भारतीय नागरिक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर चिंतित हैं। वहीं आईएमओ के महासचिव ने कहा है कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का कल रात निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। बैडमिंटन में भारत की पीवी सिंधु ने सिडनी में ऑस्ट्रेलिया ओपन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सिंधु का अगला मुकाबला सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से होगा। घरेलू शेयर बाजार में आज सेंसेक्स 854 अंक बढ़कर 74,687 पर और निफ्टी 221 अंक की वृद्धि से 23,382 पर कारोबार कर रहे थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम यादों की महफिल। इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं सदमा फिल्म के गाने से। सुरेश वाटकर की आवाज है, गुलजार के बोल, इलैया राजा का संगीत है।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद।

शंकर एहसान लॉय का संगीत था। नमकीन फिल्म का गाना किशोर कुमार की आवाज, गुलजार के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

ফরহান, হীর রাঞ্ঝা।

मोहब्बत की आग में जल मरने वालों के, मगर अफसोस आज की दुनिया में मजनू फरहा रांझा तो है मगर लैला नहीं, शीरी नहीं, हीर नहीं। लेकिन दोस्तों आशिक फिर भी आशिक है, और वो आज की बेवफा लैला जो उसकी नजरों के सामने

पंत भत्ते टटक बैगुन परा हो।

जमाने को दिखाना है। इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे राहुल देव बर्मन की आवाज में, संगीत भी राहुल देव बर्मन का था और रचना थी मजरूह सुल्तानपुरी की। नमकीन फिल्म का गाना सुनिए आशा भोसले और साथियों की आवाजों में, गुलजार के बोल हैं।

0: अम्मा सर पे टोकरी लिए सारा दिन गांव में घूमा करती है, गोबर जमा करती है, उपले थापती है, सुखाती है और जाके गांव में बेच आया करती है। बदलते हुए वक्तों से बड़ी शिकायत है उसे, गांव से तो क्या, गईयों से भी शिकायत करती है।
1: इस गीत के साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, सुरीला सफर। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

दोस्तों, मैं हूं आपके रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम सुरीला सफर। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, ना हो पड़ोसियों और घर वालों को एतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। दोस्तों, हर रोज हम एक इबारत या टेक्स्ट फेसबुक पर पोस्ट करते हैं इस कार्यक्रम के लिए। इस एक पैराग्राफ में वो शब्द समाये होते हैं जिन पर आधारित गाने इस कार्यक्रम में शामिल किए जाते हैं। आपको पढ़कर अंदाजा लगाना है कि आज के कार्यक्रम में कौन कौन से शब्दों पर गाने शामिल हो सकते हैं। इस कार्यक्रम का मजा है इस बात में है कि गानों की आपकी और हमारी लिस्ट मैच कर जाए। मान लीजिए आपके गाने अलग भी हैं तो फेसबुक पोस्ट पर आप बता सकते हैं, क्या पता वो गाने आज के कार्यक्रम में शामिल कर लिए जाए। और हाँ, अगर हमने गाने चुने हैं और आपने, कई श्रोताओं ने वही वही गाना लिखा है, तो हम अपने गाने बदलकर आपके वाले गाने भी बजा सकते हैं। तो आज का कार्यक्रम आप सुनेंगे ही, और ध्यान से जरा आज की इबारत पढ़ लीजिए, हम सुना देते हैं, सुन लीजिए। कुछ बातें दिल नहीं मानता, कुछ घटनाएं कभी नहीं भूलती, किसी से मुलाकात कोई कहानी बन जाती है, तमन्नाओं और ख्वाबों का जहां आबाद हो जाता है। फिर एक सवाल उठता है, दिल ने तुम्हें चाहा, क्या यही खता है? हुई जो मोहब्बत तो दिल ने कहा, फिर कब मिलोगे, इस बात का वादा करो। एक बार जो सनम से दिल लगा, तो दिल दीवाना गाने लगा, लागी छूटे ना, उसकी अदाएं मन मोहने लगीं, दिल को संभालना मुश्किल हो गया। लेकिन फिर वक्त ने करवट ली, दिल दर्द भरे गीत गुनगुनाने लगा कि कहीं मुलाकात अधूरी न रह जाए, गले से लग जा, जिंदगी में शायद साथ इतना ही था। और फिर दिल शायर बन गया गम नगमा। मोहब्बत का दस्तूर भी कितना अजीब है। वैसे बहुत सारे श्रोताओं की ओर से गाने सुझाए गए हैं, लेकिन हम कुछ ख़ास शब्दों से पूछ रहे हैं कि कौन से गाने आपके जहन में आ रहे हैं। दिल शायर बन गया, इसका गाना बताइए, और बताइए कि दर्द भरे गीत गुनगुनाने लगा, और बताइए कि संभालने वाली जो बात है, यहाँ पर कहीं संभालने की बात आई है, उस पर कोई गाना बताइए। क्योंकि इन शब्दों पर कुछ गाने कम हैं, इसलिए मैंने यहाँ जानबूझ कर रखा है कि देखें आपको याद आता है कि नहीं। जैसे कि एक बार जो सनम से दिल लगा, यहाँ पर कौन सा गाना याद आया है। अब चलिए गीतों के माध्यम से एक कहानी भी सुनवा देते हैं। उस कहानी से जुड़ी हुई कौन सी कहानी आपको याद आती है, ज़रा बताइए। बचपन में बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी आपने। सुनिए ये गाना और याद कीजिए कोई कहानी, या फिर कोई गाना, या फिर कोई अपनी ज़िंदगी की कोई घटना, जो यहाँ विविध भारती के फेसबुक पेज पर लिख सकते हैं। तो बताइए कहानी, और आप भी कोई इबारत लिखकर भेज सकते हैं

हाँ, एक भी कहानी याद नहीं आई किसी को, न कोई फसाना याद आया और न ही कोई ख्वाब याद आया पुराना। हमने आपसे कहा कि कोई पुराना ख्वाब याद आया, लिखिए फटाफट। आपने किसी ने नहीं लिखा और ना ही किसी ने ये लिखा कि हमने ये बचपन में ये कहानी सुनी थी या बड़े होकर कहानी अपने बच्चे को सुनाई। अरे, एक लाइन में बता तो सकते थे कि फलाने लेखक की कहानी सुनाई थी, प्रेमचंद की, निराला की कविता सुनाई थी, कुछ तो लिख देते। नहीं लिखा, कोई बात नहीं, आगे लिखिए। अब गानों से जुड़ी हुई बातें भी लिखते चलिए, सिर्फ अपनी टिप्पणी साझा करके बैठिए मत। आपकी टिप्पणी फेसबुक पेज पर सुरक्षित है, अगर हम पढ़कर नहीं भी सुनाते हैं तो आप वहां पर देख सकते हैं। हम सबकी टिप्पणी पढ़ रहे हैं और लाइक भी कर रहे हैं। ज्यादातर लोगों की टिप्पणियां हमारी आंखों से गुजर रही हैं और हम लाइक करते जा रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि दिल की खूबसूरती ये नहीं कि उसमें कितनी बातें हैं, बल्कि ये है कि उसमें कितने लोग बसे हैं। कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं, सीधे दिल से जुड़ते हैं और वही रिश्ते जीवन को खूबसूरत बना देते हैं। अगर दिल साफ हो तो छोटी छोटी खुशियां भी बड़ी लगती हैं। क्या बात है। एक श्रोता कहते हैं कि मेरी सनम मेरी धर्मपत्नी है, जो मेरे लिए भगवान का आशीर्वाद है। मेरा तो दिल सिर्फ यही मानता है कि उसके अलावा कहीं और दिल नहीं लगाना है, और एक बार जो जन्म से दिल लगा लिया है तो मैंने समझ लिया कि दिल उसी का दीवाना हो गया। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। एक श्रोता लिख रहे हैं कि प्रेम कहानी में एक लड़का होता है और बहुत सारे गाने, और एक श्रोता ने दीवाना लेके आया दिल तराना, दीवाने का नाम तो पूछो प्यार से। एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीली धड़कन के सुरीला सफ़र कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गद्य मई इबारत की इबादत से निकले शब्दों में दिल मानता नहीं, घटनाएं भूलती नहीं, किसी से मुलाकात वगैरह वगैरह। एक श्रोता ने लिखा है कोई हसीना जब रूठ जाती है। एक ने लिखा है किसी से तुम प्यार करो तो इजहार करो। एक श्रोता ने लिखा है कभी कभी दिल से दिल किसी का शुक्रिया अदा करना भी कितना अच्छा होता है ना। बिल्कुल, हम आपका शुक्रिया तो अदा करते हैं रोज़ाना। एक श्रोता ने लिखा है मेरी तमन्नाओं की तकदीर तुम संवार दो। एक श्रोता ने लिखा है विविध भारती के नाम से कई सारी साइट है, नए लोगों को बहुत परेशान करती है। तो देखिए यहाँ पर जो विविध भारती राष्ट्रीय सेवा लिखा है और ब्लू टिक है विविध भारती की जो असली प्रोफाइल है, तो वहाँ जाके देख सकते हैं। और इस समय जहाँ से आपको ये सुनने को मिल रही है ये बात, जहाँ से टिप्पणियाँ मिल रही हैं, वहाँ पर आप आइए। और विविध भारती की लिंक भी है जो जिसे आप देखकर वहाँ पर पहुँच सकते हैं। बाकी जो प्रोफाइल है वो नकली प्रोफाइल है, याद रखिएगा। एक श्रोता ने लिखा है कि एक छोटी सी प्यारी बात, दिल वो जगह है जहाँ यादें महफूज रहती हैं, रिश्ते खिलते हैं और दुआएँ जन्म लेती हैं। सांसों से नहीं, कदमों से नहीं, मोहब्बत से चलती है दुनिया, एक श्रोता ने लिखा है। वही वाह, गानों की तो लंबी फहरिस्त है। हमें लगता है अगर गानों के बोल हम बोलने लगेंगे तो ये आज का सुरीला सफ़र इतना लंबा हो जाएगा कि कभी ख़त्म ही नहीं होगा। एक टिप्पणी और पढ़ देते हैं फिर गाने की ओर चलते हैं। लेकिन भाई, हमने आपसे कहानी पूछी थी, ज़रा याद करके उस कहानी की एक लाइन तो लिख दीजिए और वो फसाना भी लिख दीजिए जो फसाना बन गया, जो कहानी बन गई, और वो ख्वाब जो इस गाने में आपने सुना, फिर तेरी कहानी याद आई, फिर तेरा फसाना याद आया, पुराना ख्वाब। बहरहाल, एक श्रोता ने लिखा है प्रेम प्रसंगों के पर्याय बनी इबारतों की श्रृंखला में आज की कड़ी प्रमाणित कर रही है कि जीवन के सफ़र में सिर्फ मोहब्बत ही एकमात्र विकल्प है जो रिश्तों को आबाद करने में सक्षम है, चाहे वो प्रेमी दिलों की हो या आपसे रिश्तों की, प्रेम ही शाश्वत है। बहुत पते की बात आपने लिखी है कि अगर इस दुनिया से प्रेम हटा दिया जाए तो दुनिया कैसे

सी हो जाएगी, एकदम बेरंग, सुनी, उदास। प्रेम के सहारे ही तो रिश्ते बनते हैं, प्रेम के सहारे ही तो परिवार बनता है, समाज बनता है। ये सृष्टि की रचना ही प्रेम से हुई है। चलिए अब छोटी सी मुलाकात, ये फिल्म का नाम है, सुनिए गाना और बताइए गीतकार का नाम।

एनसीसी कैंप गया था। रोज़ाना ही जूनियर से कुछ ना कुछ अफसर लोग हमसे पूछते रहते थे। लेकिन एक दिन कहानी किस्सों की बात हो रही थी तो सर ने पूछा, कल्चरल प्रोग्राम का कार्यक्रम रखा गया था जिसमें सुबह परेड पर 4 बजे आना है ग्राउंड पर, लेकिन मेरी नींद लग गई। बार बार सीटी बजाने के बाद भी नहीं उठ पाया तो जो हमारे सीनियर थे उसने हमारे टेंट में आकर खूब पिटाई हुई, और उसके डर से 2 दिन तक बीमार होने का मैं नाटक करता रहा। भाई नाटक क्यों किया, पिटाई भी ठीक नहीं थी लेकिन ना कुछ ना कुछ तो सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि एक अनुशासन तो होना चाहिए छात्र जीवन में। एक श्रोता ने जानकारी दी है, एक छोटी सी मुलाकात 1967, आवाज मोहम्मद रफी, सुमन कल्याणपुर, और तुझे चाहा तुझे पूजा, ये तो गाने के बोल हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि कोई माने या न माने, जो कल तक थे मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी। बहुत सारे गानों की इबारत हमारे श्रोता लिख रहे हैं। हम तो ये कहते हैं कि आप इन्हीं इबारतों से आप कोई और पंक्ति रच सकते हैं, कोई कविता रच सकते हैं। हो सकता है आपकी रची कविता एक दिन आपको कवि बना दे, कहानीकार बना दे। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन की कहानी, एक चिड़िया की कहानी जो अपने दाल की चोरी होने पर सभी से गुहार लगाती है और अंत में वो जीत जाती है। ये कहानी बाबूजी हम लोगों को सुनाया करते थे और मैं भी अपने बच्चों को सुनाती हूँ। क्या बात है भाई, गानों से देखिए कितनी सारी बातें याद आ गई। इसलिए गाने जब हम सुनते हैं तो गानों को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, बहुत सारे शब्द हमें यादों में ले जाते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि फिर कब मिलोगे, ये गाना हमें बहुत पसंद है। और बहुत सारे श्रोताओं की ओर से फरमाइश आई है भरोसा फिल्म के गाने की, वो दिल कहाँ से लाऊं। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि जो इबारत है उनमें वो शब्द होने चाहिए। तो देखा कि उनमें ये शब्द है तो चलिए वो गाना हम सुनवाते हैं। फिल्म है भरोसा। कलाकारों के नाम ज़रा बताइए कि पर्दे पर कौन गा रही हैं, कौन अभिनेत्री गा रही हैं ये गाना। वैसे पार्श्व गायिका हैं लता मंगेशकर। गीतकार संगीतकार का नाम आप बता सकते हैं अगर आप ये नहीं बता सकते कि कौन है अभिनेत्री। हीरो का नाम भी बताइए आप ही। जरा जल्दी टाइप कीजिएगा विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर।

भरोसा फिल्म का गाना था लता मंगेशकर की आवाज़, राजेंद्र कृष्ण के बोल थे रवि का संगीत था, और हमने पूछा था पर्दे पर कौन अभिनेत्री गा रही हैं ये गाना। अभी तक श्रोताओं की ओर से जवाब नहीं मिला। आशा पारेख और गुरुदत्त हैं इस फिल्म में हीरो। देखिए साथ साथ पहेलियों के जवाब भी देते चलिए, क्योंकि इबारत के साथ साथ पहेलियाँ भी शामिल हैं कि हम आपसे पूछते हैं जो सवाल, आपके जवाब का रहता है हमें इंतज़ार, और हम बाकायदा कमेंट को न्यूएस्ट कर देखते हैं कि नए कमेंट कौन आ रहे हैं। बस टिप्पणी साझा करके आप बैठ गए रेडियो सुनने, नहीं जी, हम आपको बिल्कुल साथ में लगा के रखते हैं, संलग्न रहें आप, ये हमें अच्छा लगता है जानकर। बहरहाल एक श्रोता की टिप्पणी पढ़ते हैं। कुछ मुलाकातें दिल में ऐसे ठहर जाती हैं जैसे माथे पर गिरी बारिश की पहली बूंद। हम उस पल को कभी भूल नहीं पाते, गाकर लिखकर रोकर हम उन लम्हों को फिर मिलने की चाह में याद करते रहते हैं। प्रेम की सारी मुलाकातें, सारी दूरियां, सारी शिकायतें उसे एक लम्हे की याद में एक रुदन बन जाता है कि किसी को चाहना क्या एक सज़ा है। ज़िंदगी में चाहे कुछ लम्हों का साथ ही क्यों न हो, जाने वाले कभी नहीं जाते, वे रह जाते हैं कुछ अधूरी बातों में, मुलाकातों में और उन जगहों में जहां से कभी हम साथ गुजरे थे। और आपके दिल में, दिल वो जगह है जहां से कभी कोई जाता नहीं, हमेशा टिका रह जाता है। आप चाहें भी कि फला व्यक्ति दिल से चला जाए, लेकिन नहीं, मुमकिन नहीं होता है। तो अब चलिए यादों के गलियारों में चलते हैं। कौन सी यादें आपके जहर में दस्तक देती हैं ये बताइएगा आप विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर www.facebook.com/vbsmumbai ये टाइप करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे विविध भारती के फेसबुक पेज पर। अब आ रहा है गाना उमर कैद फिल्म का। आपको पूछना है गीतकार और संगीतकार का नाम, देखते हैं इस बार सही कौन जवाब देता है। और यादों के गलियारों में जाकर कौन सी याद आई है एक लाइन में बताइए।

0: यादों के नाम बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणियां आई हैं और कुछ कुछ श्रोताओं ने लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि जब हम यहाँ नई जगह रहने आए तो एक प्यारी सखी मुझे मिली और हमने बहुत अच्छा समय बिताया, लेकिन हमारा साथ बहुत कम समय के लिए था, कोरोना ने उन्हें हमसे छीन लिया। एक श्रोता ने लिखा है कि हम साथ हैं आपके, काम बाद में करेंगे। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। और एक श्रोता ने लिखा है कि वो दिल कहाँ से लाऊं, बहुत मार्मिक है गाना। और एक श्रोता ने लिखा है कि आशा पारिक थी उस फिल्म में जिसका आपने पूछा था, भरोसा के लिए लिखा है। और एक श्रोता ने, क्या कई श्रोताओं ने लिखा है, दिल आशायर गम आज नगमा। हो सकता है इस पूरे प्रोग्राम में आपको ये गाना मिल जाए। बस ये बताइएगा कि आपको अगला गाना कौन सा आ सकता है, ज़रा ये भी तो अंदाज़ा लगाइए। देखते हैं कि आप, वैसे गाने तो आपने बहुत सारे लिखे हैं जो हमारे पास हैं, जो मतलब हमारी और आपकी पसंद आज बहुत सारी मिल रही है। और ये जो वो दिल कहाँ से लाऊं, ये तो हमने आपकी पसंद पर ही सुनवाया। एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत ही गंभीर गाना है वो दिल कहाँ से लाऊं, सुपर हिट सॉन्ग है। और एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्म भरोसा के नायक और नायिका हैं गुरुदत्त, आशा पारिख। और भरोसा के गाने के लिए बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणियाँ आई है। एक श्रोता ने लिखा है 1970 में खुले ग्राउंड पर शाम को हम अपने मामा मामी के साथ ये फिल्म देखी थी। और एक श्रोता ने जानकारी दी है आशा पारिक, गीतकार राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार रवि, फिल्म भरोसा। अब ज़रा कुछ और टिप्पणियाँ भी पढ़ दी जाए। एक श्रोता ने लिखा है कि मेहनत का फल मीठा होता है, पिताजी प्यासे कौवे की कहानी सुनाते थे, बाद में ये किताब में पढ़ा मैंने, मेहनत बेकार नहीं जाती, कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, प्यासा कौवा वाली कहानी। और आप में से किस किस लोगों ने सुनी थी, किन किन लोगों ने, ज़रा बताइएगा। और जब प्यासा कौवा की कहानी सुनते थे तो आँखों के सामने क्या चित्र बनता था, वो भी बता सकते हैं। अब तो सामने आपके टेलीविज़न पर देख लेते हैं, कंप्यूटर के स्क्रीन पर देख लेते हैं, लेकिन तब वो काल्पनिक चित्र बना करता था, और अब किताबों में चित्र बने बनाए आते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि ये गीत मैंने अपने डायरी में लिखा था और गाती भी थी, ये 1990 की बात है। एक श्रोता की टिप्पणी है, हमारे साथी की बात याद आई, अरे फिक्र क्यों करती है, मैं हूँ ना, पर अफसोस वो अब नहीं है, ओफ। एक श्रोता ने लिखा है कि कहते हैं वादा करना जितना आसान है उसे निभाना उतना ही मुश्किल, जब कोई वादा टूटता है तो सिर्फ एक बात अधूरी नहीं रहती बल्कि किसी का अटूट विश्वास कांच की तरह बिखर जाता है। वादे अगर कांच के हों तो टूट जाते हैं और अगर कच्चे धागे के हों तो छूट जाते हैं। क्या बात है भाई, ये वादे वाली बात आपने बेहतरीन लिखी है। अब कन्यादान फिल्म का ये गाना,
1: चेहरे से हटा सकता नहीं।
0: हीरो हीरोइन का नाम आपको बताना है।
1: दिल की बेताबी किसी सूरत छुपा सकता नहीं, कितनी दिलकश

0: कन्यादान फिल्म का गाना था, मोहम्मद रफी की आवाज, हसरत जयपुरी की बोल थे, शंकर जयकिशन का संगीत था और हमने आपसे हीरो हीरोइन का नाम पूछा था। श्रोताओं की ओर से जवाब सही आया है आशा पारिख और शशि कपूर। जरा उन श्रोताओं के लिए जो विविध भारती के फेसबुक पेज पर इस वक्त उपलब्ध नहीं है लेकिन रेडियो सुन रहे हैं, उनके लिए हम इबारत दोहरा देते हैं। कुछ बातें दिल नहीं मानता, कुछ घटनाएं कभी नहीं भूलती, किसी से मुलाकात कोई कहानी बन जाती है, तमन्नाओं और ख्वाबों का जहां आबाद हो जाता है। फिर एक सवाल उठता है, दिल ने तुम्हें चाहा क्या ये खता है, हुई जो मोहब्बत तो दिल ने कहा फिर कब मिलोगे इस बात का वादा करो। एक बार जो सनम से दिल लगा तो दिल दीवाना गाने लगा, लागी छूटे ना उसकी अदाएं मन मोहने लगी, दिल को संभालना मुश्किल हो गया, लेकिन फिर वक्त ने करवट ली, दिल दर्द भरे गीत गुनगुनाने लगा कि कहीं मुलाकात अधूरी ना रह जाए, गले से लग जा, जिंदगी में शायद साथ इतना ही था और फिर दिल शायर बन गया गम नगमा। मोहब्बत का दस्तूर भी कितना अजीब है। बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणियाँ आ रही हैं, इस इबारत के साथ आप भी कोई इबारत लिख सकते हैं, हो सकता है आपके भीतर छुपी प्रतिभा परवान चढ़े और एक कवि हो जाएं आप, एक कहानीकार हो जाएं। बहरहाल ये जो दिल शायर बन गया इसको लेकर बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणियाँ आई हैं और एक गाना चुना है हमारे श्रोताओं ने गैम्बलर फिल्म का, दिल आज शायर है गम आज नगमा। तो चलिए यही गाना हम आपको सुनवाते हैं, लेकिन ज़रा बताइए कौन है हीरो, हीरो का नाम बूझना है आपको।
1: गम आज नगमा है शब ये गजल है सनम।
0: गीतकार और संगीतकार का नाम भी बताइए।

गैम्बलर फिल्म का गाना, किशोर कुमार की आवाज़, नीरज की रचना, सचिन देव बर्मन का संगीत। हमारे सभी श्रोताओं ने जवाब सही दिया देव आनंद, और गीतकार संगीतकार का नाम कुछ श्रोताओं ने गलत भी दिया है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि बचपन में सबसे पहले कहानी सुनी थी चिड़िया और कौवे की। चिड़िया मोम से घर बनाती है, कौवा गोबर से घर बनाता है। बरसात में कौवा का गोबर का घर बह जाता है और भीगा कौवा चिड़िया के मोम के घर का दरवाज़ा खटखटाता है, लेकिन घर छोटा होता है और चिड़िया अपने छोटे चूजे को खाना खिलाने में व्यस्त होती है, इसलिए वो कौवा को अंदर आने नहीं देती। इस तरह की कहानियाँ बहुत प्रचलित है और हम सब ने अपने अपने बचपन में सुनी हैं। दरअसल वो जो कहानी वाला बचपन था कहीं गुम हो रहा है। अब कहानियों के बजाय मोबाइल वाला बचपन है। अब बहुत सारे मम्मी पापा को कहानियाँ याद ही नहीं होती हैं। बहुत सारे लोग आकर पूछते हैं कि कोई कहानी वाली किताब बताओ ना जो हम पढ़कर सुना दें, या कोई वो बताओ, लिंक बताओ जहाँ हम उसे लगा दें तो सुनते सुनते सो जाए। भाई वो लिंक वाली कहानी का वो सुख नहीं है जो माँ अपनी ज़बान से मॉड्यूलेट करके स्वरों के उतार चढ़ाव के साथ सुनाती है। बहरहाल एक श्रोता ने लिखा है कि लिखना तो बहुत कुछ चाहते हैं पर ये वक्त बहुत जालिम है, मिलता ही नहीं। वक्त को मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश कीजिए और लिख डालिए। एक श्रोता ने लिखा है कि अपने माता पिता द्वारा स्थापित रिश्ता है विवाह। अपने जीवन साथी से प्यार करना, रिश्ते को पवित्र रखना है और बचपन की यादें जिन्हें हम प्रेम कर कहते थे पर विराम लगाता है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि आप अपनी बहुत अच्छी दोस्त याद आ गई इस प्रोग्राम के साथ, और अपना प्यारा पुराना घर याद आ गया जहां मेरी दादी और दादा रहते थे। एक श्रोता ने लिखा है कि आपकी इबारत के साथ मैंने भी कुछ लिखा है कि उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। मशहूर शायर साहिल लुधियानवी की पंक्तियाँ प्रेमियों के दिलों की हालात बयां करती हैं कि हर प्रेम कहानी मुकम्मल नहीं होती, प्रेम कहानी करवट लेती और उसमें विरह उत्पन्न हो जाता है। वो प्रेम जीवन भर नदी के दूसरे छोर की तरह साथ साथ चलता है, महसूस भी होता है किंतु ताउम्र पहले छोर से मिल नहीं पाता। भाई प्रेम के साथ दर्द तो जुड़ ही जाता है, तो अगर ऐसा नहीं होता तो मीरा बाई क्यों कहती कि जो मैं ऐसा जानती नगर ढिंढोरा पीटती, प्रेम किए दुख होए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला गाना सुनते हैं। जरा बूझिए आप गीतकार का नाम और स्वर किसकी आवाज में ये गाना है। फिल्म बड़ा आदमी, और कोई नहीं बूझ पाया ये गाना। बहुत सारे श्रोताओं ने अलग अलग गाने लिखे लेकिन ये गाना किसी ने नहीं लिखा। जरा सुनिए तो।

0: और जरा संभालिए अपने दिल को और नोट कर लीजिएगा डायरी में ये गाना भी, जो लोग नियमित रूप से नोट करते हैं गाना।
1: संभालिए अदाएं आपकी के मेरे हाथ से दिल मेरा जाने लगा, जरा संभाल।

बड़ा आदमी फिल्म का गाना हमने आपको सुनवाया और आपसे पूछा था गीतकार का नाम और किसकी आवाज में गाना है। सभी श्रोताओं ने सही बताया, महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की आवाजें, लेकिन गीतकार का नाम बहुत सारे लोगों ने गलत बताया, प्रेम धवन की रचना थी ये।

एक श्रोता की टिप्पणी है, इन्होंने लिखा है कि मोहब्बत का फलसफा अजीब है। जब प्रेम अपने रंग में होता है तो साधारण से दिन भी उत्सव लगने लगते हैं। हर आहट में संगीत सुनाई देता है और हर ख्वाब में उम्मीदों के फूल खिल उठते हैं। लेकिन यही मोहब्बत जब अधूरी रह जाती है या बिछड़ने की दास्तान बनती है, तब वही फूल यादों की चुभन और अश्कों की नमी में बदल जाते हैं। मोहब्बत इबादत भी है और इकरार भी है, मुकद्दर के इम्तिहान की तरह कठिन भी। शायद इसीलिए मोहब्बत का फलसफा अजीब होते हुए भी बेहद खूबसूरत है, क्योंकि ये इंसान को जीना, मुस्कुराना, इंतज़ार करना और कभी कभी टूटकर फिर से संभलना भी सिखा देता है और बहुत सहनशीलता भी सिखाता है। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे चाचा जी बाहर गांव सर्विस करते थे, तो उन्होंने एक रेडियो लाया था। वो वापस सर्विस पे जाते थे तो रेडियो पूरे दिन मेरे पास रहता था। तो आज की इबारत बहुत सुंदर लग रही है और मैं वो दिन याद कर रहा हूँ। शुक्रिया इस बात के लिए। अब बहुत सारे श्रोताओं की ओर से इस गाने की फरमाइश आई है, फिल्म ये रात फिर ना आएगी, और जो इबारत है, इबारत में जो शब्द है, फिर मिलोगी कभी इस बात का वादा कर लो, तो इसमें कई शब्द आ जाते हैं। प्यार वाले शब्द भी आते हैं, इकरार वाले भाव

अभी आते हैं तो सुनिए जरा ये गाना और हमें बताइए कि किस पर फिल्माया गया है ये गीत और गीतकार का नाम। और आपको अपनी मुलाकात याद आती है किसी से तो वो भी आप साझा कर सकते हैं। यादों के गलियारों में आप टहल रहे हैं इन गानों के माध्यम से, तो अपनी यादें साझा करते चलिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। कभी किसी से आपने ये बात कही थी जो गाने में है? कभी किसी से पूछा फिर कब मिलोगी?

गीतकार एसएच बिहारी, आशा भोसले, मोहम्मद रफी की आवाजें फिल्म ये रात फिर ना आएगी। और श्रोताओं की ओर से जानकारी आई है, शर्मिला टैगोर, एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी पत्नी से मेरी पहली मुलाकात मेरे जीवन का एक यादगार पल है। इस गाने

श्रोता ने लिखा है कि मेरी पत्नी से मेरी पहली मुलाकात मेरे जीवन का एक यादगार पल है, इस गाने के साथ जुड़ा हुआ है। पहली बार उन्हें देखकर मन में अपनापन और सम्मान का भाव जागा। उनकी सादगी, मुस्कान और सहज स्वभाव ने मुझे बहुत प्रभावित किया। वो मुलाकात भले ही छोटी थी, लेकिन उसी ने हमारे रिश्ते की खूबसूरती की शुरुआत की। क्या बात है भाई। एक श्रोता ने लिखा है कि आजकल पार्क में गर्मी बहुत हो रही है, कभी कभी कोई नहीं आती है। जब चलने का समय होता है तब पूछती हैं, कल आओगी ना, मिलोगी ना। भाई ये तो सहज सा सवाल है और ये इस गाने में ज़रूर है। और हमने पूछा था कि आपने कब किसको कहा था, पूछा था ये सवाल, तो बता सकते हैं आप विविध भारती के फेसबुक पेज पर। एक श्रोता की टिप्पणी है कि लिखा है कि अपने माता पिता द्वारा स्थापित रिश्ता है विवाह। अपने जीवन साथी से प्यार करना रिश्ते को पवित्र रखता है। बचपन की यादें जिन्हें हम प्रेम कहते थे पर विराम लगाता है। एक श्रोता ने लिखा है कि प्यासा कौवा वाली कहानी अपनी पोती को सुना रही थी, जैसे कि मैं हिंदी में सुना रही थी। पूरी कहानी सुनाने के बाद बोलता है, दादी ये प्यासा कौवा नहीं था, ये तो थ्रस्टी क्रो था। तब मैंने उसे बताया कि तुम्हें प्यास लगती है तो बोलते हो ना कि मम्मी मुझे प्यास लगी है, तो हिंदी में प्यासा ही बोलते हैं। क्या बात है भाई। तो ठीक है, अगर वो थ्रस्टी क्रो के नाम से सुनता है तो भी उन्हें सुनाइए, धीरे धीरे वो प्यासा कौवा समझ जाएगा। और एक श्रोता ने लिखा है कि ज़रा संभालिए अदाएं आपकी, ये गाना साल 1961 का है, बड़ा आदमी फिल्म का, बड़ा ही खूबसूरत और सदाबहार रोमांटिक युगल गीत है। इस गाने को सुर कोकिला लता मंगेशकर और दिग्गज गायक महेंद्र कपूर ने अपनी सुरीली आवाज़ से सजाया था। और अभी अभी एक टिप्पणी आई है, लिखा है हमारे श्रोता ने कि अनेकों प्रेरणादायक कहानियाँ बच्चों को बचपन से आज तक धर्म पत्नी सुनाती रहती हैं और साथ में मैं भी सुन लेता हूँ, मैं स्वयं व्यस्तता के कारण सुना नहीं पाता हूँ। चलिए अच्छी बात है, ये सुनते और सुनाते रहिए। अब फिल्म दिल ने पुकारा, बताइए पर्दे पर कौन गा रहे हैं ये गाना। मुकेश की आवाज़ है, गीतकार और संगीतकार का नाम भी बताइए।

और अब हम गाने के साथ थोड़ी सी बेवफाई करके ये गाना पूरा नहीं सुना रहे हैं, क्योंकि एक गाना जो ज़रूरी है इबारत से जुड़ा हुआ और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है, दिल ने पुकारा फिल्म का ये गीत था, उसके बाद छोटी सी मुलाकात ये वाला गाना सुनवाना है। लेकिन कुछ टिप्पणियां भी आप तक पहुंचा दें। एक श्रोता ने लिखा है कि कुछ मुलाकातें टीस देती हैं, बात अधूरी रह गई, साथ छूट गया। कुछ एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे पतिदेव मुझसे भोपाल मिलने आया करते थे, वो बात याद आ गई। एक श्रोता ने लिखा है कि सुबह से 10:30 बजे तक विविध भारती हम सुनते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज के कार्यक्रम के साथ हमारी दोस्त याद आ गई, दादी और दादा याद आ गए। एक श्रोता ने लिखा है कि एक लाइन में कहानी वाली बात, बहुत मज़ा आया पढ़कर। अब ये प्रोग्राम का आखिरी गाना।

0: छोटी सी मुलाकात, बस आज की मुलाकात तो बस इतनी ही हो सकती है, यही फिल्म का नाम था। मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ें थी, हसरत जयपुरी के बोल थे। आज के प्रोग्राम का सफ़र बस इतना ही। सुरीला सफ़र का ये सफ़र आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रिकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए श्रृंखला की 32वीं कड़ी।

0: बारिसाल अधिवेशन को पहले ही दिन मिले इस उत्स्फूर्त प्रतिसाद से बौखलाए हुए अंग्रेज अधिकारी जमा हुए युवाओं और नेताओं पर निर्मम लाठीचार्ज करके भी नहीं रुके। अधिवेशन के लिए आए सभी लोगों के नेता और आदरणीय स्थान रखने वाले सुरेंद्रनाथ बैनर्जी को ब्रिटिश अधिकारी कैंप ने गिरफ्तार कर लिया। उस दिन अदालत की छुट्टी होने के कारण उन्हें मजिस्ट्रेट के घर ले जाया गया। वहां सुरेंद्रनाथ ने सरकार की तानाशाही की कड़े शब्दों में निंदा की। इससे चिढ़कर मजिस्ट्रेट इमर्सन ने अदालत की अवमानना के लिए उन पर 200 रुपये का जुर्माना लगाया। साथ ही जुलूस में भाग लेने के लिए 200 रुपये का जुर्माना और अलग से लगाया। वकील और सबूत पेश करने का अनुरोध भी इमर्सन ने ठुकरा दिया। सुरेंद्रनाथ ने तुरंत यह जुर्माना भरा और सम्मेलन में उपस्थित होने के लिए अधिवेशन स्थल की ओर दौड़ पड़े।
1: वंदे मातरम शब्द पर प्रतिबंध लगाना, सुरेंद्रनाथ की गिरफ्तारी, उन्हें हुआ जुर्माना, लाठीचार्ज, ये सब गैर कानूनी था। उस परिस्थिति में भी वंदे मातरम की विराट गूंज के साथ अधिवेशन की शुरुआत हुई। वंदे मातरम गायन से सभा शुरू हुई। अश्विनी कुमार दत्त और सुरेंद्रनाथ बनर्जी अभी सभा स्थल पर नहीं पहुंचे थे, इसलिए निवारण चंद्र दास गुप्त ने भाषण दिया। अध्यक्ष अब्दुल रसूल ने कहा,
2: हिंदू हो मुसलमान हो, हम सबको मिलकर ये आजादी की लड़ाई लड़नी है। हम सबको इसमें शामिल होना चाहिए। देश की भलाई के लिए हम में से हर एक को ये काम करना ही चाहिए।
1: ये भाषण चल ही रहे थे कि सभा मंडप के बाहर वंदे मातरम के नारे और शोरगुल सुनाई देने लगा।

0: सुरेंद्रनाथ बनर्जी का सभा मंडप में आगमन हुआ। उनके आने से सभा स्थल पर जुटे युवाओं में और भी उत्साह भर गया। लाठीचार्ज के घामों से लहूलुहान हुए शरीर का ख्याल भी कार्यकर्ताओं को उस उत्साह के जोश में नहीं रहा। स्वयं सुरेंद्रनाथ भी इस प्रतिसाद से भाव विभोर हो गए। मंच पर पहुंचने के बाद सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने अत्यंत संयमित स्वर में मजिस्ट्रेट के बंगले पर घटी घटना सुनाई। उसके बाद बिपिन चंद्र पाल का भी भाषण हुआ।
1: बारिसाल का युवा नेता चित्तरंजन गुहा बुरी तरह से घायल हो गया था। एक दिन पहले ही निकले जुलूस में आगे रहने वाला यह युवक वंदे मातरम के नारे लगा रहा था और बाकी युवाओं से मिले प्रतिसाद से चिढ़े अंग्रेज अधिकारी ने इस युवक की बेरहमी से पिटाई की। उस खून से लथपथ हालत में भी वो वंदे मातरम के नारे लगाता ही रहा, इसलिए सिपाहियों ने उसे सामने के तालाब में फेंक दिया। साथियों के कारण उसकी जान बची। उसका अपराध सिर्फ इतना था कि दिन दहाड़े सड़क पर वो भारत माता की जय जयकार कर रहा था। उस हालत में भी उसके पिता मनोरंजन गुहा उसे मंच पर लेकर आए। उनका भी भाषण हुआ।
0: दूसरे दिन 15 अप्रैल को सुबह फिर अधिवेशन शुरू हुआ। बिपिन चंद्र पाल युवाओं को मार्गदर्शन देने लगे। तभी बंग भंग विरोधी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संध्या के संपादक ब्रह्म बांधव उपाध्याय सभा स्थल पर आए। उन्हें देखकर तो प्रतिनिधियों ने फिर से वंदे मातरम के नारे लगाने शुरू कर दिए। वंदे मातरम पूरे गीत का और मागो जाए जौन जीवन चले गीत का भी गायन हुआ।

0: अश्विनी कुमार दत्त ने सभा के सामने प्रस्ताव रखा,
1: जिस स्थान पर पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू किया, हमारे सुरेंद्रनाथ बनर्जी को गिरफ्तार किया, उस स्थान पर इस घटना की याद में एक स्तंभ बनाया जाए।
0: इस प्रस्ताव पर वहीं के वहीं अपने हाथों की अंगूठियां और पैसे देकर सदस्यों ने उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिया।
2: उसी समय कैंप

0: ने निषेधाज्ञा का आदेश दिखाकर सबसे वचन मांगा कि कोई भी प्रतिनिधि सभा समाप्त होने पर वंदे मातरम का घोष नहीं करेगा। बीते कल निर्ममता से लाठीचार्ज करने वाले कैंप को सभा स्थल पर देखकर उपस्थित जन समुदाय और भी क्रुद्ध हो गया। कैंप सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के पास गया और बोला,
1: लिसन, आई विल बी सेफ हियर विथ यू। Being a government officer, I have to obey the government orders.
0: सरकारी अफसर होने के नाते मुझे सरकारी हुक्म मानना पड़ता है। सभा समाप्त होने पर यहाँ जुटे लोग वंदे मातरम के नारे नहीं लगाएंगे, ऐसा आश्वासन आप दें, तभी मैं ये सभा आगे चलने दूंगा, अन्यथा अभी ही इसी समय सभा बंद करनी पड़ेगी।
2: सुरेंद्रनाथ बनर्जी सहित सभी नेताओं ने ऐसी सहमति देने में असमर्थता जताई। कैंप ने सभाबंदी का आदेश दिया। उपस्थित जनसमुदाय सभाबंदी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, परंतु सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने लोगों को समझाया,
3: कल बहुत बड़ा रक्तपात हुआ है, आज फिर उसकी पुनरावृत्ति किस लिए? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अधिवेशन का हमारा उद्देश्य सफल हो गया है।
2: अध्यक्ष ने परिस्थिति पर विचार किया। अधिक विरोध से स्थिति बिगाड़ने की बजाय ये अधिवेशन सर्वसम्मति से बर्खास्त कर दिया, परंतु वंदे मातरम के संबंध में कोई भी वचन देने से उन्होंने इनकार कर दिया। क्रोधित कार्यकर्ता सड़क पर आ गए और भी जोर से वंदे मातरम का घोष करते रहे। खाली मंडप में रह गए केवल सशस्त्र सैनिक। अधिवेशन समाप्त होने पर बाहर निकल रहे लोगों से बिपिन चंद्र पाल ने कहा,
3: आज भले ही निषेधाज्ञा लागू की गई हो, फिर भी क्रांति की आग यहाँ भड़क चुकी है। आप सब अपने अपने गांव जाकर सभाओं का आयोजन करें और क्रांति की आग सब और फैला दें। आज का दिन शोक संतप्त होने का नहीं, बल्कि अत्यंत आनंद का दिन है।
0: अधिवेशन समाप्त कर घर जाने वाले प्रतिनिधियों का हर स्टेशन पर वंदे मातरम की घोषणाओं के साथ जोरदार स्वागत हो रहा था। बरिसाल से लौटते समय रेल में सुरेंद्रनाथ बैनर्जी से भगिनी निवेदिता ने कहा,
4: आपको जेल में बंद करने का सरकार का षड्यंत्र आपने विफल कर दिया है। अपने ही बुने जाल में ब्रिटिश सरकार फंस गई है। नैतिक विजय तो हमारी ही हुई है।
0: भगिनी निवेदिता की यह बात आगे सच साबित हुई।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, हेल्थ केयर, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और गवर्नेंस तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है और ये अलग अलग क्षेत्रों में साफ तौर पर दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि सरकार स्वयं सहायता समूहों को सक्रिय रूप से मदद कर रही है, ये महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं।
1: आज भारत विमेन लेड डेवलपमेंट की राह पर चल पड़ा है।
2: हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए सारे रास्ते खोल दिए।
1: हमने करोड़ों महिलाओं के लिए शौचालय बनवाकर उनका सम्मान बढ़ाया। हमने उज्ज्वला सिलेंडर देकर उन्हें धुएं जैसी तकलीफों से भी बचाया।
2: 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दी।

0: जो संकल्प किया था वो पूरा हो चुका है।
1: सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन, रेडियो और संचार सेवाओं से संबंधित दूर संचार नियम 2026 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है। नए प्रावधान में सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा निजी प्रसारकों के बीच होने वाले ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। इससे पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी। इन मसौदा नियमों को मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया गया है। जनता इन पर अपने विचार, टिप्पणियां और सुझाव 27 मई तक सरकार को भेज सकती हैं। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक कर दिया है। संशोधित परीक्षा अवधि में अनिवार्य परीक्षा औपचारिकताओं के लिए आवश्यक समय शामिल है। एजेंसी ने कहा है कि सुधार पिछले कई वर्षों में उम्मीदवारों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर किए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा आयोजित हायर सेकेंडरी द्वितीय वर्ष 2026 का परीक्षा परिणाम आज शाम 4 बजे जारी किया जाएगा। परीक्षार्थी अपना परीक्षा परिणाम मंडल की आधिकारिक वेबसाइट mpbse.mponline.gov.in पर जाकर देख सकेंगे। आज बाल श्रम के विरुद्ध विश्व दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस हर बच्चे की शिक्षा, सुरक्षा और सम्मानजनक बचपन के अधिकार की याद दिलाता है। भारत में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से काम कराना कानूनन प्रतिबंधित है। विशेषज्ञों का मानना है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सामाजिक जागरूकता ही बाल श्रम उन्मूलन का सबसे कारगर रास्ता है। उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रहलाद जोशी ने आज खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधिकारियों के साथ प्याज की खरीद को बढ़ाने और किसानों को बेहतर लाभ सुनिश्चित करने के लिए एक बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि खरीद मूल्य को संशोधित करके 1,650 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश से कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उनके नामांकन पत्र रद्द किए जाने को चुनौती दी गई थी। प्रदेश में मॉनसून 17 से 18 जून के बीच राज्य के दक्षिणी जिलों में दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग के अनुसार मौसम की परिस्थितियां अनुकूल रहीं तो अगले 10 से 15 दिनों में मॉनसून पूरे राज्य को कवर कर लेगा। प्रदेश में प्री मॉनसून गतिविधियां लगातार बनी हुई हैं। आज मुरैना, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर जिलों में ओलावृष्टि की संभावना है। इसके अलावा भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, शहडोल और सागर संभागों के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने के आसार हैं। पन्ना जिले में नेशनल हाईवे 39 पर बीती रात एक सड़क हादसे में अजयगढ़ थाने में तैनात 26 वर्षीय पुलिस कांस्टेबल की दर्दनाक मौत हो गई। शिवपुरी के कोलारस में कृषि और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा वेयर हाउस परिसर में कार्रवाई करते हुए एक ट्रक से बड़ी मात्रा में उर्वरक जब्त कर FIR दर्ज की गई है। भोपाल में आधी रात पटाखा दुकान में भड़की भीषण आग पर दमकलों ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। इस घटना में लाखों का माल जलकर राख हो गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: ये आकाश।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से उद्योगों के ईंधन खरीदने पर रोक लगाई। संयुक्त राष्ट्र ने ओमान तट के पास भारतीय नाविकों को ले जा रहे तेल टैंकरों पर हुए हमलों की निंदा की। दिग्गज निशानेबाज और प्रशिक्षक जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन। और टोरंटो में फीफा विश्व कप में ग्रुप बी के मुकाबले में कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना होंगे आमने सामने। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि

0: वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, हेल्थ केयर, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और गवर्नेंस तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं और पूरे देश में विकास परिदृश्य बदल रहा है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य किया है, जिसके सकारात्मक परिणाम विभिन्न क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह को सक्रिय सहयोग देकर महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की नीतियां सम्मान, अवसर और सशक्तिकरण के सिद्धांतों पर आधारित है। इन प्रयासों से अब महिलाएं अपनी क्षमताओं को पहचानते हुए राष्ट्र निर्माण में अधिक प्रभावी भूमिका निभा रही है। श्री मोदी ने विज्ञान, अंतरिक्ष और नवाचार जैसे क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की बढ़ती उपलब्धियों की सराहना की। एक संस्कृत श्लोक का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नारी शक्ति राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि देश की माताएं, बहनें और बेटियां हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर भारत का गौरव बढ़ा रही है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने राज्य के पुनर्निर्माण और इसे विकसित राज्य बनाने का संकल्प लिया है। श्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य में अब डबल इंजन सरकार है, अब पश्चिम बंगाल को भी अन्य राज्यों की तरह केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के महानिदेशक उपस्थित थे। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन के दौरे पर देहरादून पहुंची। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति आज देहरादून स्थित राष्ट्रपति निकेतन का दौरा करेंगी और 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जून से फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर रहेंगे। 2014 के बाद से ये प्रधानमंत्री का फ्रांस का 7वां आधिकारिक दौरा है। फ्रांस के नीस शहर में प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। ये भारत का प्रमुख नवाचार सम्मेलन है जो भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंगला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इसका उद्देश्य भारत की डीप टेक प्रतिभाओं को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करना है।
2: काफ़ी अरसे से जो द्विपक्षीय संबंधों में एक फोकस रहा है हमारा, किस तरह से हम इनोवेशन की तरफ ज़्यादा फोकस बढ़ाएं, और दोनों देश एक तरह से नॉलेज इकोनॉमीज हैं, दोनों देश सोच रहे हैं कि किस तरह हमारे संबंध हैं इनको और प्रगाढ़ करें हम, और इसी की वजह से हम भारत इनोवेट्स यहाँ उसका आयोजन कर रहे हैं, जो कि पहली बार है कि हमने इतने बड़े पैमाने पर भारत से डीप टेक स्टार्टअप्स बाहर ला के हम एक मंच पर हम रख रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी नीस से स्लोवाकिया जाएंगे और उसके बाद G7 समिट के लिए फ्रांस के एवियन लौटेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में आज से 2 दिन का ब्रिक्स कृषि मंत्रियों का सम्मेलन शुरू हो गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी प्रतिनिधियों का स्वागत किया। श्री चौहान ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना को आगे बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का दृष्टिकोण शांति और सहयोग पर आधारित है। सम्मेलन का विषय है लघु किसानों,

0: महिलाओं और युवाओं के माध्यम से भविष्य के लिए खाद्य सुरक्षा। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और महिला किसानों की भूमिका जैसे विषयों पर व्यापक चर्चा हो रही है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधिकारियों के साथ प्याज की खरीद को बढ़ाने और किसानों को बेहतर लाभ सुनिश्चित करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि खरीद मूल्य को संशोधित करके 1,650 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन, रेडियो और संचार सेवाओं से संबंधित दूरसंचार नियम 2026 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है। ये मसौदा पहले के टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अंतर्गत टेलीविजन और रेडियो सेवाओं के लिए जारी विभिन्न दिशा निर्देशों को नए दूरसंचार अधिनियम 2023 के दायरे में शामिल करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। नए प्रावधान में सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा निजी प्रसारकों के बीच होने वाले ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। इससे ये पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका को खारिज कर दिया है। ये याचिका उन्होंने मध्य प्रदेश से अपनी राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के खिलाफ दायर की थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वे चुनाव अधिकारी द्वारा नामांकन रद्द किए जाने के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। चुनाव अधिकारी ने तेलंगाना में एक आपराधिक मामले की कथित जानकारी छिपाने के आरोप में मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त कर दिया था। ओडिशा में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने आज 2 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर भुवनेश्वर में एक संवाददाता सम्मेलन में श्री मांझी ने कहा कि मुख्यमंत्री का पद जनता की सेवा करने का एक पवित्र अवसर है। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पिछले 2 वर्षों में 121 योजनाएं लागू की गई हैं। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही हैं। ये सम्मेलन स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित किया जा रहा है। राज्य मंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सभी के लिए सम्मानजनक काम, सामाजिक सुरक्षा और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने मध्य एशिया और शंघाई सहयोग संगठन के साथ भारत की दीर्घकालिक साझेदारी के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई है। ताजिकिस्तान के दुशांबे में आयोजित SCO सम्मेलन का विषय है मध्य एशिया, SCO का केंद्र, शांति और संयुक्त विकास का क्षेत्र। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रखे है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा और कुशलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO के महासचिव आर्सेनियो डोमिंगवेज ने ओमान के तट पर पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि अंतोनियो गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर बहुत चिंतित हैं। वहीं IMO के महासचिव ने कहा है कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। सरकार ने ऑनलाइन प्रसारित हो रहे एक फर्जी वीडियो का खंडन किया है जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन को एक निवेश प्लेटफॉर्म का प्रचार करते हुए दिखाया गया है। वीडियो में 22,000 रुपये के निवेश पर प्रतिदिन 80,000 रुपये और प्रतिमाह 24 लाख रुपये तक के रिटर्न का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जाँच इकाई ने बताया कि ये वीडियो पूरी तरह फर्जी है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA ने 21 जून को होने वाली NEET UG पुनर्परीक्षा की परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दिया है। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी। एजेंसी ने कहा कि NTA ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि NEET UG परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित और उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित की जाए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: संशोधित परीक्षा अवधि में अनिवार्य परीक्षा औपचारिकताओं के लिए आवश्यक समय शामिल है। एजेंसी ने कहा है कि ये सुधार पिछले कई वर्षों में उम्मीदवारों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर किए गए हैं। इसके अलावा एजेंसी ने प्रश्न पत्र पुस्तिका के साथ दिए जाने वाली रफ शीट को 2 प्रश्न से बढ़ाकर 4 कर दिया।

0: पुराने लेआउट के असुविधाजनक होने की प्रतिक्रिया के बाद कुछ छात्रों विशेषकर बाएं हाथ से लिखने वाले छात्रों के लिए यह सुधार किया गया है। एनटीए ने कहा कि परीक्षा डिजाइन में छोटे छोटे सुधार भी एक महत्वपूर्ण परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों के अनुभव पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं, इसलिए निष्पक्षता और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और उम्मीदवार अनुकूल बनाने के उद्देश्य से ये उपाय लागू किए गए हैं। इसके साथ ही उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़े और परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए परीक्षा कर्मचारियों के साथ सहयोग करें। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दिग्गज निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का कल रात निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। जसपाल राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि जसपाल राणा ने एक चैंपियन एथलीट और असाधारण मार्गदर्शक के रूप में राष्ट्र के लिए जो योगदान दिया वो प्रेरणादायक है। और अब खेल खबरों के साथ हैं जया भारती।
2: फीफा वर्ल्ड कप में दक्षिण कोरिया ने चेक गणराज्य को 2-1 से हरा दिया है। मैक्सिको के जापोपान में खेले गए रोमांचक ग्रुप ए मुकाबले में दक्षिण कोरिया ने इस जीत के साथ महत्वपूर्ण 3 अंक हासिल किए। दक्षिण कोरिया का अगला मुकाबला सह मेजबान मैक्सिको से होगा, जबकि चेक गणराज्य ग्रुप ए के दूसरे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका का सामना करेगा। इससे पहले मैक्सिको सिटी में खेले गए उद्घाटन मैच में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया था। आज ग्रुप बी के मैच में सह मेजबान कनाडा का सामना बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 12:30 शुरू होगा। दोनों देश विश्व कप में पहली बार आमने सामने होंगे। इसके बाद ग्रुप चरण के मुकाबले में कनाडा का सामना कतर और स्विट्जरलैंड से होगा। एक महीने तक चलने वाले फीफा विश्व कप 2026 का भव्य उद्घाटन कल रात मैक्सिको सिटी में हुआ। रंगारंग उद्घाटन समारोह में शकीरा और बर्ना बॉय ने टूर्नामेंट के आधिकारिक गीत दाई दाई से समा बांधा। उधर पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। तीसरी वरीयता प्राप्त सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया। सिंधु का अगला मुकाबला सेमीफाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त जापान की अकाने यामागुची से होगा। यामागुची ने क्वार्टर फाइनल में आज भारत की तन्वी शर्मा को 21-14, 21-14 से शिकस्त दी।
1: और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से उद्योगों के ईंधन खरीदने पर रोक लगाई। संयुक्त राष्ट्र ने ओमान तट के पास भारतीय नाविकों को ले जा रहे तेल टैंकरों पर हुए हमलों की निंदा की। दिग्गज निशानेबाज और प्रशिक्षक जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं, आपकी रेडियो सखी ममता सिंह।

जिद्दी फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। हसरत जयपुरी के बोल थे, सचिन देव बर्मन का संगीत था। आइए अब सुनते हैं अनपढ़ फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। राजा मेहदी अली खां के बोल, मदन मोहन का संगीत है।

0: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
1: तीसरी कसम फिल्म का गाना आप सुन रहे हैं मुकेश की आवाज में।

मुकेश की आवाज में ये था तीसरी कसम फिल्म का गाना। रचना थी शैलेंद्र की, संगीतकार थे शंकर जयकिशन। आइए अब सुने रोशन की बनाई तर्ज पर लता मंगेशकर का गाया गाना। रचना है साहिल लुधियानवी की फिल्म बहू बेगम।

0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
1: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
1: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
1: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
1: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। दिल दिया दर्द लिया।

दिल दिया दर्द लिया, इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। लिखा था इसे शकील बदायूनी ने, धुन बनाई थी नौशाद ने। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

आप सुन रहे थे ये गाना लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में। राजा मेहदी अली खां के बोलते फिल्म थी वो कौन थी। इसी के साथ आज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम खत्म होता है। प्रोग्राम का सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान।

0: दोस्तों, प्रकृति नियमबद्ध है, जैसे सूर्योदय होना, फिर शाम हो जाना, रात को चांद की चांदनी बिखेरना और भोर की पहली किरण के पहले चुपके से ओझल हो जाना। इसी तरह मौसम का भी चक्र है, जैसे गर्मी की तपिश के बाद रिमझिम बरसात, फिर गुलाबी ठंड और बाद में बसंत की बहार। इसी तरह जीवन के भी अपने चक्र हैं। इन्हीं में से बेहद मासूम और खूबसूरत नियम है छुट्टियों के बाद बच्चों का फिर से स्कूल लौटना। अब कई घरों में खेलकूद की जगह धीरे धीरे स्कूल जाने की तैयारियां अपनी जगह बना रही है। तो बस आज अपनी सहेलियों से इन्हीं बातों को, इन्हीं यादों को याद करने के लिए विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हूँ मैं, आपकी दोस्त सहेली दीपा महेश्वरी। पहली कॉल की आशा लिए हम बैठे हैं और ये हुआ हमारा इंतजार खत्म। बज उठी फोन की घंटी, देखते हैं किस सखी का है ये पहला कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्कार दीदी।
0: नमस्ते, किससे बात हो रही है हमारी?
1: जी, सरिता कुमारी।
0: सरिता जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप?
1: दीदी, अयोध्या रसूलाबाद।
0: अरे वाह, अयोध्या से, अयोध्या नगरी से आप बात कर रही हैं। तो बताइए, क्या चल रहा है जीवन में, क्या करती हैं आप?
1: क्या दीदी, बस ये घर में रहती हूँ, घर के काम करती हूँ। आप बताइए, आप ठीक हो?
0: बिल्कुल, हम सब अच्छे हैं और हम तो हमेशा ही उम्मीद करते हैं कि हमारे सारे सुनने वाली जितनी हमारी सखियां हैं सब हमेशा स्वस्थ रहे, खुश रहे।
1: इतना आज बहुत खुश हूँ, इतना दिन के बाद कॉल लगा, इतना दिन से ट्राई कर रही थी।
0: जी, हमें पता है सरिता जी, बहुत कोशिश करने के बाद फिर जब फोन लगता है तो उसकी खुशी और उसका आनंद क्या होता है। हमें भी बहुत खुशी हो रही है कि आपसे हमारी बात हो रही है। तो बताइए, आप क्या सुनना चाहेंगी, कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
1: दीदी, प्रेम रतन धन पायो।
0: प्रेम रतन धन पायो फिल्म का कौन सा गीत?
1: वही प्रेम रतन धन पायो गाना
0: जी,
1: ही है।
0: जी, तो टाइटल सॉन्ग आपको सुनाते हैं। तो चलिए विविध भारती की ओर से सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है आज हमारी?
1: आज जी, मैं चांदनी जी बोल रही हूँ,
0: चांदनी जी
1: छत्तीसगढ़ बिलासपुर से। हाँ
0: चांदनी जी, छत्तीसगढ़ बिलासपुर से, क्या बात
1: जी।
0: है चांदनी जी, क्या करती हैं आप? कुछ काम करती हैं, गृहिणी हैं, क्या करती हैं, अपने बारे में कुछ बताइए।
1: जी मैं हाउस वाइफ हूँ
0: जी, क्या बात है।
1: घर को ही देखती हूँ, बस घर में ही रहती हूँ और सारा दिन रेडियो सुनती हूँ। मेरा रेडियो सुनते सुनते सारा दिन पूरा काम होता है।
0: देखिए, रेडियो से जो प्रेम है, विविध भारती से जो प्रेम है, इसी वजह से तो हम आपस में जुड़े हुए हैं, है ना चांदनी जी? अच्छा मुझे बताइए, बच्चे हैं आपके कितने हैं?
1: जी मेरे 3 बच्चे हैं मैम।
0: अच्छा,
1: तो बेटे हैं मैम, एक लड़की है।
0: अच्छा, क्या बात है
1: जी। मेरी एक जो बेटी है वो टीचर है, तो दोनों बच्चे मतलब एक पापा के साथ मतलब शॉप पे रहते हैं और एक बैंक में है बेटा।
0: अच्छा, तो बड़े बच्चे हैं। तो हम आपको यादों की गलियारे में ले जाना चाहते हैं, जहाँ जब ये छोटे हुआ करते थे आपके बच्चे, स्कूल जाने की जब तैयारियां होने लगती थी, तो घर में क्या माहौल रहता था? किताबें लाना, वो स्कूल के लिए लाइन में खड़े होना, फिर जब किताबें कॉपियां लेकर आके घर में उनके कवर चढ़ाना, आपकी क्या यादें हैं उसको लेके?
1: बच्चे जब आते थे कॉपी किताब लेके, पापा जब लेके आते थे उनसे, तो कहते थे मम्मी कवर चढ़ा के दो। तो बहुत उसको इतना तंग करते थे बच्चा, हालांकि तो हमारा ही काम बनता है, बच्चे जब छोटे रहते हैं मैम
0: जी,
1: तो उनके ऊपर कवर चढ़ाते थे। तो खाकी चावल कवर चढ़ाने के बाद जो खाकी चावल आते थे ना पहले
0: जी,
1: खाकी
0: जी,
1: कवर
0: जी,
1: उसको चढ़ाते थे। फिर उसके बाद जो चिट बोलते हैं वो चिट लगाते थे, फिर नाम लिखते थे। उसके बाद फिर वो बोलते थे मम्मी उसके ऊपर पन्नी वाला कवर लगाइए, वो लड़कों ने हमारा पन्नी कवर लगाया, मम्मी हमको भी लगा के दीजिए। तो वो भी हम करते देते थे उनको, ताकि बच्चों को लगे कि नहीं हम उनकी कॉपी सही रहे। और उनको ये भी सिखाते थे कि बच्ची अपने हर चीज को संभाल कर अच्छे से रखना है।
0: बिल्कुल, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा हमें चांदनी जी। आज बताइए आप कौन सी फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं?
1: हाँ, फिल्म का नाम है मैम रोटी कपड़ा और मकान। गाने के बोल है मैं ना भूलूंगी।
0: तो चलिए सुनते हैं आप ही के पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, ये बताइए आज इस वक्त किससे बात हो रही है हमारी?
1: हम धन्नो जायसवाल बोल रहे हैं, झांसी से।
0: झांसी से धन्नो जायसवाल। धन्नो जी, मैं पूछना चाहती हूँ, आपके कितने बच्चे हैं?
1: हमारे 3 बच्चे हैं।
0: जी, तो बड़े हो गए हैं या छोटे हैं?
1: हाँ, बड़े हो गए। एक तो बड़ा है, उसकी शादी कर दिया है, बहू भी है, और अब 2 लड़कियाँ हैं, वो दिल्ली में है, उनकी शादी कर दिया।
0: अच्छा जी, जब बच्चे छोटे थे तो स्कूल जाते थे, तो स्कूल के लिए उनकी कॉपी किताबें आती थी, उस पे कवर चढ़ाना या फिर उनके झगड़े होते थे?
1: हम ही करते थे, मैडम सब हम करते थे।
0: तो इसी तरह से आपने समझा बुझा के उनका पालन पोषण किया है, और आज आपके देखिए बच्चे तीनों खूब अच्छी जगह पर हैं। इसी बात पे मुझे बताइए, आप कौन सी फिल्म का गीत सुनना चाहती हैं?
1: हम गीत सुनना चाहते हैं मैडम, छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती है, बैठे बैठाए दिल को बेचैन हो जाती है, जब होता है, जब किसी से प्यार होता है।
0: क्या बात है, तुम बिन फिल्म का। चलिए,
1: आप ही की बिन।
0: जी, तो तुम बिन फिल्म का, आप ही की पसंद का ये गीत विविध भारती की ओर से आपके लिए।

0: कार्यक्रम हेलो सहेली में अंतराल हुआ खत्म और सुनते हैं किसकी घंटी आज फिर बजी है। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किन से बात हो रही है हमारी?
1: आपकी मधु झुंझुनवाला जयपुर से बोल रही हूँ मैं।
0: जयपुर से मधु झुंझुनवाला जी। जी बताइए मधु जी, कैसे हैं आप?
1: मैं एकदम बढ़िया हूँ।
0: जी
1: बताइए।
0: जी हम लोग भी सब बिल्कुल अच्छे हैं। और ये बताइए क्या करती हैं आप जीवन में?
1: ऐसे तो साधारण गृहिणी हूँ, पर अपने भावों को कविताओं का रूप देती हूँ, लिखती रहती हूँ। लेखन मेरा प्रिय विषय है।
0: भाई देखिए, गृहिणी होना भी कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है, वो असाधारण काम है, हम सब जानते हैं। तो मधु जी बताइए, आप क्या लिखती हैं, किस तरह का लेखन है आपका, उसके बारे में कुछ बताइए।
1: मैं वास्तव में तो भावों को ही, अपने भावों को ही शब्द रूप देती हूँ।
0: जी, तो आपकी कोई रचना आप हमें सुनाएंगी अपनी सभी सखियों के लिए?
1: हाँ
0: जी, सुनाइए।
1: अपनी रचना सुनाती हूँ
0: जी।
1: नमनाक हो चली थी पुरवाई, नमनाक हो चली थी पुरवाई, पतवार जिंदगी की जंग खाई, कर दिया तेरे हवाले खुदा को, देखी जब पारावार की गहराई। जब से तुमको ना खुदा माना है, खुद से हुआ ये दिल बेगाना है, बैठे हैं सफीने पर तेरे यकीन से, बैठे हैं सफीने पर तेरे यकीन से, तूफान में ढूंढती नहीं ठिकाना है। ये भैया दुकान कविता है।
0: बहुत सुंदर कविता। आप कहती है साधारण महिला है, कहाँ इतने असाधारण आप अपनी कला को लिए हैं और शब्दों में अपने भावों को उतार पा रही हैं, तो ये भी तो अपने आप में अद्वितीय एक गुण है ना। बताइए आज कौन सा गीत सुनवाएं आपको?
1: सरस्वती चंद्र का छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए।
0: जी बेहद सुंदर गीत है। तो विविध भारती की ओर से आपको सुनाते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली मैम, मैं वैजयंती कैला सुतार बात कर रही हूँ, बीड जिले से।
0: बीड जिले से वैजयंती सुतार। वैजयंती जी, कैसा चल रहा है जीवन, क्या चल रहा है इन दिनों में, बताइए।
1: अच्छा चल रहा है।
0: क्या करती हैं आप?
1: मैं कुछ नहीं, मैं घर में हूँ, वैसे क्यों हूँ, और इस समय मेरे मिस्टर की दुकान पे बैठी हूँ, टाटी चौक में
0: जी।
1: हाँ, उनकी रसवंती चौक है, रसवंती
0: जी,
1: गन्ने की रस जूस सेंटर। हाँ
0: अच्छा, गन्ने का जूस सेंटर। तो इन दिनों तो बहुत आप लोग एकदम व्यस्त रहते होंगे, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है और
1: बहुत बहुत व्यस्त रहते हैं और काम भी बहुत बढ़ जाता है ना मैम।
0: जी बिल्कुल। तो आप अपने पति का हाथ बटा रही हैं इन दिनों।
1: हाँ, उनका हाल तो क्या बताने का, वो हैंडीकैप्ट होके भी बहुत काम करते हैं, स्ट्रगल 7 बजे से शाम 8 बजे तक तो स्ट्रगल चालू ही रहता है मैम।
0: हम उसे स्ट्रगल तो नहीं कहेंगे, ये जीवन यापन का साधन है ना, मेहनत तो सभी लोग करते हैं, सभी का एक अपना अपना अलग अलग व्यापार है, काम का तरीका है, मेहनत करते हैं तो उसका रंग भी तो बहुत खूबसूरत निकल के आता है ना।
1: बहुत बहुत बहुत। हाँ
0: जी। तो घर में आपके बच्चे भी हैं?
1: हाँ, मेरे को 2 बेटियां हैं, उनकी शादी हो गई है, 2 बेटे हैं, वो भी पढ़ते हैं, सेकंड ईयर थर्ड ईयर है, और मिस्टर जो है वो काम भी कर रहे थे यहाँ पे।
0: जी जी। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, जब बच्चे आपके छोटे थे तो गर्मी की छुट्टी के बाद वापस स्कूल शुरू होते हैं है ना, तो उन दिनों में बच्चों की कॉपी किताबें लेकर आना, फिर उस पे कवर चढ़ाना, तो ये सब, ये जो बातें हैं, ये सब इसके बारे में कुछ बताएंगे, कैसे हुआ करता था आपके घर में?
1: बहुत बहुत अच्छा स्ट्रगल, और छुट्टों में भी कैसा करते थे, पढ़ाई में ध्यान रहते थे उनके। फिर अब स्कूल शुरू होने ही वाला है, तो फिर ये बुक लो, पेंसिल लो, कुछ कुछ बॉक्सेस लो, पेंसिल लो, राइटिंग के, ड्राइंग के, इसमें व्यस्त रहते थे। जब स्कूल होती थी शुरू, तो फिर कवर लगाने का, नए बुक लेते तो मैं कवर लगा के देती थी उनको, भी वैसे कॉपी करते थे।
0: जी बिल्कुल। और वो होता है ना कि नई नई किताबों की खुशबू बहुत अच्छी लगती है, आपके बच्चे भी ऐसे करते थे?
1: हाँ, ये शाम भी करते थे ना, वो उधर की पत्ता इधर इधर का उधर हम उसको खेल बनाते थे।
0: हाँ ये बात तो है। तो देखिए ना, बच्चों के साथ साथ आपको अपना भी जो वक्त है वो भी याद आ गया है ना।
1: बहुत बहुत मैम
0: जी, आपसे बात करके बहुत हमें बहुत अच्छा लगा। वैजयंती जी, आज बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, उनको पसंद है।
0: अच्छा, तो आपके पति को पसंद है इसलिए आप सुनना चाहती हैं?
1: बहुत पसंद है।
0: तो चलिए सुनते हैं आप दोनों की पसंद का ये गीत।

0: अंतराल के बाद देखते हैं आज किस सखी से हमारी बातचीत होगी। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी? आपका नाम बताइए।
1: मेरा नाम अनीता विजयवर्गिया है।
0: कहाँ से बात कर रही हैं अनीता जी आप?
1: जी मैं जयपुर में रहती हूँ।
0: जी क्या बात है, जयपुर शहर यानी गुलाबी शहर हमारे देश का है ना?
1: जी बिल्कुल
0: जी। तो अनीता जी क्या करती हैं आप?
1: जी मैं बेसिकली गृहिणी हूँ और मुझे लिखने का शौक है।
0: क्या बात है।
1: कविताएं लिखना पसंद करती हूँ, तो मैं जीवन पे और सभी मनोभावों पे मेरी कविताएं होती हैं।
0: ये तो बहुत ही सुंदर बात है। घर के सब कामों के बीच में इन सब के लिए वक्त निकाल पाती हैं आप? और ये भी बताइएगा कि बचपन से शौक था, किस तरह से आपने इसके लिए अपने आप को कुछ शिक्षित किया या मन में कुछ भाव आते थे, कुछ शब्द आते थे और फिर आपने उनको पन्नों पे उकेरा?
1: जी मुझे लगता है कि कोई भी लेखक एक जन्म से ही वो लेखक होता है। बाद में उसको किस समय ये उजागर होता है कि वो एक लेखक है, वो कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब वो कुछ अपनी गहरे मनोभाव, उसकी संवेदनाएं कभी ऐसे जब इतने ज्यादा हो जाते हैं कि वो लगता है कि अब इन्हें पन्नों पर उतारना चाहिए, तभी वो एक लेखक बन जाता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि मैं बचपन से ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग लेटर्स लिखती थी
0: जी।
1: तो सभी को बहुत पसंद आते थे। बेसिकली वैसे लिखा नहीं कुछ, फिर बाद में धीरे धीरे जाके मेरी बेटी के स्कूल प्रोजेक्ट के लिए एक कविता लिखनी थी, तब पहली बार मैंने कविता लिखी और उसके बाद मैं लिखती चली गई।
0: जी हम आपसे कविता तो सुनेंगे ही, ये भी बताइए कि आप सिर्फ अपने तक ही है ये कविता या आप कहीं पर मंचन करती हैं, कहीं जाती हैं?
1: जी मैं मंचन भी करती हूँ, मैं कई काव्य मंचों से जुड़ी रहती हूँ और उनके प्रोग्राम्स में जाती रहती हूँ।
0: तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। अनीता जी आपकी कोई रचना हमें अगर आप सुना सके तो जरूर सुनाइए।
1: जी बिल्कुल, मुझे एक कविता बेहद पसंद है, तो मैं वो आपको सुनाना चाहूंगी।
0: जी
1: इसका शीर्षक है आशियाना।
0: आशियाना शीर्षक।
1: जी ऐ मेरे हमसफर, एक ऐसा आशियाना बनाना जैसे पूरा हो कोई ख्वाब सुहाना, तुम्हारे कांधे सी मजबूत उसकी छत हो छाया हो, मेरे इस जीवन पर बस तेरा ही साया हो, प्यार के सीमेंट में आंखों की थोड़ी नमी घोलना, ईंट दर ईंट रिश्तों की पुख्ता दीवार जोड़ना, तुम्हारे बड़े दिल की तरह हो एक बड़ा सा कमरा, हर शब हो सहर बस प्यार का ही हो पहरा, एक खुली सी बालकनी हो और हो तुम्हारी गलबैयों का झूला, महक हो रिश्तों की और सुलगता रहे रिश्तों का सांझा चूला, ऐ मेरे हम सफर एक ऐसा आशियाना बनाना, दरीचों पर हया का पर्दा रहे, सूरज की रोशनी से आंगन महका करें, मुमकिन आशाओं सी खुली छत हो, हर आसमां पर सितारों की गश्त हो, ऐ मेरे हम सफर एक ऐसा आशियाना बनाना, मन करता है हमारे आशियाने की बगिया में खो जाऊं, तेरे कांधे पर सर रखूं और सो जाऊं, चाहे जैसे भी हो हालात, हो सुकू दिल में और छूटे ना अपना साथ। धन्यवाद।
0: बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर अनीता जी। हम आशा करते हैं कि ऐसे ही आशियाना हर एक के जीवन में हो और हम आपसे और भी बहुत सारी बातें सुनना चाहते हैं, लेकिन अगली किसी बार अगली कोई कॉल में हम आपसे आपकी और कविताएं सुनेंगे। आज लेकिन बताइए आप आपके पसंद का कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: आज मैंने ये कविता आशियाना पर सुनाई, तो आप मुझे हर फिल्म का आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है वो सुना दीजिए।
0: बिल्कुल, चलिए सुंदर सा ही गीत आपके लिए प्रस्तुत है।

0: हेलो सहेली
1: हेलो मैडम,
0: जी, किनसे बात हो रही है हमारी?
1: साधना गजवे बोल रही हूँ मैडम। मैं नागपुर से।
0: नागपुर से साधना जी। साधना जी बताइए, कैसी हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ मैडम, आप लोग कैसे हैं?
0: बिल्कुल, हम सब अच्छे हैं। और इन दिनों क्या चल रहा है जीवन में अभी?
1: गर्मी के दिन है, विविध भारती है साथ में,
0: जी
1: गाने का मौज लेते हैं, दिन भर विविध भारती के साथ रहते हैं।
0: जी तो आप घर पर ही रहती हैं या कुछ काम, किसी तरह का कोई काम करती हैं?
1: काम तो मतलब मैडम, मैं ऑर्डर लेके पापड़ अचार बना देती लोगों को, और घर में रहती हूँ, गृहिणी हूँ घर की।
0: जी, मतलब आप अचार और पापड़ बनाने का भी काम
1: पापड़
0: करती हैं?
1: बनाते ऑर्डर दे, हाँ ऑर्डर पे बनाते।
0: जी, तो ऑर्डर्स कैसे मिलते हैं आपको, किस तरीके से लेती
1: किलो
0: हैं?
1: से घर के, जैसे सब लोग जॉब पे रहते हैं ना, यहाँ लता मंगेशकर हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा है, तो यहाँ सब हॉस्पिटल के लोग रहते हैं
0: अच्छा,
1: जॉब वाले, तो उन लोग ऑर्डर देते हैं, तो उनका बना देती हूँ।
0: क्या बात है। तो इस साल कितना ऑर्डर मिला और मतलब अच्छी आपकी कमाई हो गई?
1: अभी 10 किलो का बनाई थी मैंने।
0: तो बहुत अच्छी बात है। तो आप घर का भी काम करती हैं, पूरा घर संभालती हैं, उसके अलावा इतने सारे आप ऑर्डर्स लेती हैं, और अचार और पापड़ बनाना ये हर एक की बस की बात नहीं है, इसके लिए भी कला होनी चाहिए। तो बताइए साधना जी, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: देवा श्री गणेशा, ये गाना सुनना है।
0: बिल्कुल, आप ही की पसंद का सुनते हैं ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: डॉक्टर श्रुति गुप्ता।
0: डॉक्टर श्रुति गुप्ता, कहाँ से बात कर रही हैं आप डॉक्टर श्रुति?
1: कोटपुतली जयपुर राजस्थान से।
0: कोटपुतली, ये तो नाम सुना सुना सा लग रहा है, लेकिन कैसा है ये?
1: हाँ जी, ये छोटा टाउन है। जयपुर और दिल्ली का हाईवे है, वहाँ पे एक छोटा टाउन है कोटपुतली
0: जी।
1: तो मैं वहीं पे रहती हूँ।
0: अच्छा, तो आपने बताया आप डॉक्टर हैं, तो किस विधा में आपकी स्पेशलाइजेशन है, बताएंगी आप?
1: मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ।
0: आयुर्वेदा डॉक्टर, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और आप प्रैक्टिस कर रही हैं, करती हैं, कोटपुतली में करती हैं, किस तरह से है बताइए, आपके बारे में कुछ बताइए।
1: हाँ जी, मैं प्रैक्टिस करती थी पहले, बट अभी रिसेंटली लोकेट हुई हूँ, तो अभी प्रैक्टिस कर रही हूँ, बट थोड़े टाइम बाद वापस प्रैक्टिस करने लग जाऊंगी।
0: अच्छा, तो यानी आप अभी यहाँ पे, आपका ट्रांसफर हुआ है किस तरह से, मतलब आप क्या हुआ है?
1: हाँ जी, एक्चुअली रिसेंटली मेरी शादी हुई है, मेरे हस्बैंड यहाँ पे अल्ट्राटेक में जॉब करते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे रिलोकेट हुई।
0: तो अभी अभी शादी हुई है, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई डॉक्टर श्रुति। और अभी अभी आपका ये वैवाहिक जीवन शुरू हुआ है ना?
1: जी जी बिल्कुल।
0: तो कैसा लग रहा है अब आप यहाँ पर नए शहर में हैं? पहले आप कहाँ रहती थी, मतलब मायका कहाँ का है आपका?
1: मेरा मायका कोटा राजस्थान का है।
0: अच्छा, तो प्रैक्टिस अब यहाँ पर नहीं हो पा रही है, या आप अभी कर नहीं रही हैं?
1: नहीं, अभी मैं खुद ही नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट टेकिंग टाइम फॉर मैरिज, फॉर सेटलिंग इन।
0: तो ससुराल वाले अलाउ करेंगे ना आपको, मतलब काम करने के लिए, इस तरह से कोई रोक टोक तो नहीं है?
1: नहीं नहीं, मेरे ससुराल वाले दे आर वेरी फॉरवर्ड माइंडेड, तो वहाँ पे कोई परेशानी नहीं है।
0: बहुत अच्छी बात है। तो पेशेंट को किस तरह से आप, शुरुआती आपका जो उपचार है वो कैसे होता है?
1: हाँ जी, एक्चुअली शुरुआती उपचार में हम लोग आयुर्वेदा में सबसे पहले पेशेंट की पूरी हिस्ट्री लेते हैं। हम पेशेंट से पूछते हैं आपकी दिनचर्या क्या है, आप क्या खाते हैं, कैसे सोते हैं, किस समय क्या काम करते हैं उनका, और पहले की भी कोई बीमारी की अगर उनको हिस्ट्री रही हो, उनके परिवार में अगर किसी को कोई बीमारी रही हो, तो हम ये पहले ये सब कुछ जानते हैं। उसके बाद आपने सुना भी होगा कि आयुर्वेद उपचार जड़ से होता है, ऐसा सुना होगा?
0: बिल्कुल।
1: तो इसीलिए जड़ से उपचार करने के लिए हम सबसे पहले वजह पे जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, किसी को भी कोई बीमारी हुई तो आखिर वो क्यों हुई है। फिर जैसे ही हमें वो पता चलता है, धीरे धीरे सवाल से पेशेंट कुछ बताता है, तो फिर उसके बाद में हम उसके इलाज पे जाते हैं।
0: जी, तो डॉक्टर श्रुति, हमने सुना है ये उपचार में थोड़ा वक्त लगता है आयुर्वेदा में, तो क्या ये बात सही है?
1: जी नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उपचार में वक्त लगे, वो रोगी के ऊपर निर्भर करता है कि उसकी बीमारी कितनी पुरानी है। अगर बीमारी बहुत पुरानी होगी तो उसको सही करने में थोड़ा समय लगेगा, अगर वो हमारी दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करेगा तो समय लगेगा, और अगर ऐसा नहीं होता है, बीमारी भी नहीं है, वो सारी बातें भी जो भी हम निर्देश दे रहे हैं, खाना पीना ये सब वो मानते हैं, तो बहुत जल्दी भी उपचार हो जाता है।
0: जी बिल्कुल, तो आपकी ये जो नई विवाहिता जीवन है उसके लिए, और अब जब आप वापस से अपना काम शुरू करेंगे उसके लिए, दोनों के लिए हम शुभकामनाएं देते हैं।
1: बहुत धन्यवाद आपका।
0: बताइए, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहिए?

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली दीदी, नमस्ते।
0: नमस्ते, ये तो बताइए नाम क्या है आपका?
1: मेरा नाम सुनीता उइके।
0: क्या बात है सुनीता जी, तो बताइए कैसी हैं आप और कहाँ से बात कर रही हैं?
1: मैं सिकंदरा वाराणसी जिला बालाघाट से बोल रही थी दीदी।
0: जी सिकंदरा से, तो ये इसके आसपास कौन सा बड़ा शहर है?
1: ये पास में वाराणसी है।
0: अच्छा।
1: और बालाघाट है।
0: जी बालाघाट के पास में। तो क्या करती हैं आप सुनीता जी?
1: मैं गृहिणी हूँ दीदी।
0: गृहिणी है।
1: घर का काम, खेती में काम करती हूँ।
0: तो आप तो खेती में भी काम करती हैं, घर का भी काम करती हैं, यानी कि दिन भर आपका व्यस्त ही निकलता होगा।
1: हाँ दीदी। हाँ जी जी
0: जी। तो सुनीता जी हमें ये बताइए आपके परिवार में कौन कौन है?
1: देवर है दीदी, देवरानी है, मम्मी पापा है, पति है, दो बच्चे हैं
0: जी।
1: देवर के एक है, एक मेरा है। हाँ।
0: अच्छा, तो आपके बच्चे स्कूल जाते हैं या बड़े हो चुके अब?
1: नहीं नहीं छोटे दीदी, एक है अभी 9 साल का है, अभी मतलब 14 तारीख को हो जाएगा 4 साल का बर्थडे है उनका।
0: जी, तो ये भी मुझे बताइए अब तो बस कुछ ही दिनों में स्कूल शुरू होने वाले होंगे।
1: शुरू होने वाले हैं दीदी, अभी चालू नहीं हुआ है।
0: ये बताइए कि उनकी कॉपी किताबें जब आ जाएंगी तो सब कवर वगैरह चढ़ाने का काम आप ही का रहता होगा, क्योंकि बच्चे तो छोटे हैं अभी, है ना?
1: हाँ दीदी। हाँ मैं करती हूँ ना, फिर उनकी मम्मी को भी कभी मतलब ड्यूटी करते हैं।
0: अच्छा।
1: तो हाँ उनको भी कभी कभी समय मिल जाता है तो वो भी कर देते हैं, लेकिन कवर चढ़ाना यानी इसका काम मैं ही कर देती हूँ।
0: जी जी, तो घर में बस अभी कुछ ही दिनों में ये सारा माहौल होने ही वाला है ना?
1: हाँ जी।
0: जी
1: अभी तो बस

0: दो महीने से मस्ती कर दी है, बच्चे अब स्कूल चालू होने वाले हैं।
1: हाँ बिल्कुल, यही तो बातें हैं ना, यही सब जब बड़े हो जाएंगे तो हमारे लिए यादें बन जाएंगी कि किस तरह से बच्चे हाँ। गर्मी की छुट्टियों में मजे करते थे। सुनीता जी, आपसे बातें करके हमें बहुत मजा आया। आप ये बताइए, आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
0: मुझे कभी कभी फिल्म का गीत सुनना था, मेरे घर आई एक नन्ही परी।
1: जी बिल्कुल, तो चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते।
1: मैं अमीना जी मंसूरी बोल रही हूँ, पालगाना का इंदौर से मैडम
0: जी। ये
1: जी,
0: बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: एक नारी दो रूप का सुनना चाहती हूँ। गाने के बोले दिल का सुनना सा तारा ना ढूंढेगा, मोहम्मद रफी साहब की आवाज है
0: जी। तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: आज हमने कुछ सुंदर कविताएं सुनी, बच्चों के वो स्कूल की छुट्टियों के बाद स्कूल वापसी की यादें ताज़ा की और कुछ हुई मन की बातें। आप भी शेयर कर सकती हैं अपने दिल की जुबां। हेलो सहेली में आज बातों का सिलसिला बस इतना ही। हेलो सहेली में रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार सुबह 11 बजे से। कॉल करने के लिए आप नंबर नोट कर लीजिए, हिंदी में 02240024662, मुंबई का STD कोड है 022, अंग्रेजी में 02240024662, 022 मुंबई का STD कोड है। अन्य नंबर है हिंदी में 02228670288, मुंबई का STD कोड है 022, अंग्रेजी में 02228670288, 022 मुंबई का STD कोड है। हेलो सहेली कार्यक्रम में आज जिन सखियों के कॉल लगे हैं, हम उनसे अनुरोध करते हैं कि अगले 2 महीने के बाद ही कॉल करें, ताकि अन्य सखियों को कॉल करने का अवसर मिल सके। आज की हेलो सहेली में तकनीकी रूप से सहयोगी रही हमारी इंजीनियर अनुश्री गुप्ता, संपादन में सहयोग दिया नम्रता टिकोड़े ने, विविध भारती की ओर से प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आप सभी को दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

सुना रहे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज सुनिए अरगवान रबही की लिखी कहानी अंजलि। वाचन स्वर नेहा शर्मा का। दोपहर की तेज धूप से बचने के लिए अरविंद विकास नगर की मेन रोड की जगह गलियों से होकर अपनी दुकान पहुंचता था। लखनऊ के नए इलाकों की चौड़ी सड़कों में जून की गर्मी और मुश्किल महसूस होती थी, फिर भी इन मोहल्लों में बने छोटे बड़े पार्क और पार्क के किनारे लगे इक्का दुक्का पेड़ भी किसी राहत की तरह हैं। अरविंद इन्हीं इक्का दुक्का पेड़ों की वजह से गलियों वाले रास्ते से अपनी परचून की दुकान पर पहुंचता था। सुबह से लेकर 2 बजे तक उसके भाई दुकान पर बैठते थे और उसके बाद वो शाम के 5 बजे तक दुकान संभालता, फिर भाई आकर दुकान संभालते। 2 बजे से ठीक पहले वो तेज धूप से बचता बचाता सेक्टर 4 की अपनी दुकान पर पहुंचता था और इसी रास्ते वो शाम होने से ठीक पहले पहुंचता था। दोपहर में उसे पूरी गली खाली मिलती, कहीं कोई इंसान नजर ही नहीं आता। लेकिन जब वो शाम होने से पहले लौटता तो गली में हल्की चहल पहल दिखने लगती। कोई अपनी कार बाहर निकाल रहा होता, कोई दूध का पैकेट लेकर घर की ओर जा रहा होता, तो कोई अपने दफ्तर से वापस आ रहा होता। लोग इक्का दुक्का ही दिखते थे। रोज एक घर के बाहर 60 साल का एक आदमी अपना बड़ा सा गेट खोलकर पानी की बौछार लगा रहा होता। बौछार लगाकर फ्री होता तो कई बार यूं ही पाइप छोड़ देता और पानी अपनी रफ्तार से बहता रहता। एक रोज अरविंद के भाई दुकान पर देर से आए और उसकी छुट्टी 6 बजे हुई। वो दुकान से जब घर की तरफ बढ़ा तो उसे उस गली में पहले से कहीं ज्यादा चहल पहल दिखी। पानी बहाने वाले अंकल तो अपना काम ईमानदारी से कर रहे थे, लेकिन उसकी नजर 60 साल के अंकल की जगह

उनके घर के बगल वाले घर की बालकनी में खड़ी दो लड़कियों पर पड़ी। लंबे बालों में स्लीवलेस सफेद टॉप और काले शॉर्ट्स पहने लड़की अपने दाएं पांव को रेलिंग पर रखकर एक लड़की से बात कर रही थी। मेहंदी रंग का सूट पहने दूसरी लड़की की सिर्फ पीठ ही नजर आ रही थी, और हाँ, पीठ पर ठहरे उसके काले घने बाल भी। दूर से देखने पर टॉप और शॉर्ट पहनी हुई लड़की खूबसूरत लग रही थी। अरविंद ने एक नज़र उस लड़की को देखा, लेकिन उसे दोबारा देखना ठीक नहीं लगा। हालांकि आज पहली बार गली कुछ ज्यादा अच्छी जरूर लगने लगी थी।

0: का।
1: कुछ दिन बाद फिर अरविंद दुकान से लेट में छूटा और इस बार उसकी नजर दूसरी लड़की पर पड़ी। नीली पेंसिल जीन्स और छोटे छोटे फूलों के प्रिंट से सजा फ्लोरल टॉप पहने लंबे बालों वाली इस लड़की के गाल सुर्ख थे। आंखें बड़ी बड़ी, माथा चौड़ा और कद उस दूसरी लड़की के मुकाबले लंबा। अरविंद की नजर उस खूबसूरत नौजवान लड़की पर ठहरी गई थी कि उसे बगल में खड़ी दूसरी लड़की दिखाई दी। ये वही लड़की थी जिसे उसने एक और दिन देखा था। आज उसने मैली सी लाल टी शर्ट और सफेद शॉर्ट्स पहन रखे थे। उसके बाल बिखरे से थे और चेहरा सोया हुआ सा लग रहा था। अरविंद को ध्यान आया कि उसे इस तरह बहुत देर ऑब्जर्व नहीं करना चाहिए और उसने नजर रास्ते की ओर कर ली, लेकिन अगले ही पल फिर नजर उसकी बालकनी की ओर उठ गई। लेकिन इस बार उसकी नजर पकड़ी गई। दोनों लड़कियों ने उसे देख लिया और अरविंद ने झेपते हुए नजर दूसरी ओर की। लड़कियां बालकनी से गायब हो गईं। उनकी तरह तेजी से तो नहीं, लेकिन अपनी गति से शाम भी नजर से ओझल हो गई। एक नई सुबह। कमरे की खिड़कियां चमक रही थीं, लेकिन उनके किनारों पर धूल अपना घर बना रही थीं। तेज धूप खिड़की के शीशों को पार करके बेड पर पड़ रही थी। खिड़की से सटाकर रखी मेज पर लैपटॉप, हेडफोन, A4 साइज के कुछ बिखरे पन्ने, उल्टी रखी एक किताब और मोटे लेंस वाला नजर का चश्मा रखा था। किनारे पर ही दूसरी छोटी मेज पर एक सफेद कवर की डायरी में पेन नजर आ रहा था और एक छोटा सा पेन स्टैंड भी वहीं पास में रखा था, जिसमें 2-3 पेंसिलें और काले नीले डॉट पेन रखे थे। इसके अलावा एक फोटो फ्रेम किसी 35 साल की महिला के पुरानी फोटो से सजा हुआ था। बाथरूम का दरवाजा आवाज के साथ बंद करते हुए काले शॉर्ट्स पहने अंजलि बाहर आई। उसने अपने लहराते बालों को दोनों हाथों से थाम कर बाएं हाथ से बेड पर पड़े रबर बैंड उठाकर बाल बांध लिए, कपड़े को एडजस्ट किया और कमरे का दरवाजा खोला। देखा तो दरवाजे के सामने ही घरेलू सहायिका नंदा दीदी उसे नाश्ते के लिए बुलाने खड़ी हैं। अंजलि पलटकर अपना चश्मा उठाते हुए साफ सुथरी मेज की ओर बढ़ी और वहां रखी डायरी लेकर कुर्सी पर बैठ गई। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अंजलि की डायरी। 20 साल की अंजलि जाने कितने सालों से डायरी लिखती रही है, और डायरी के कई पन्ने पलटते हुए अंजलि एक सादे पन्ने पर पहुंची और चश्मा लगाकर गुनगुनाती हुई डायरी पर कलम चलाने लगी।

अचानक डायरी छोड़कर अंजलि धड़धड़ाते हुए अपने कमरे से बाहर सीधे किचन की ओर बढ़ी और किचन में नाश्ता बना रही पल्लवी से लगभग बहस करने के अंदाज में कहा, बुआ मशीन अंदर नहीं रखवाई आपने? अरे हॉल में ठीक से रखी तो है, तुम्हारे कमरे में जगह भी कम है अंजलि। बहुत जगह है मेरे कमरे में, यही हॉल में सिल लो जो सिलना है। मैं हॉल में सिलाई नहीं कर सकती, आप प्लीज अंदर रखवा दो। वैसे तुम्हें क्या जरूरत है, जहाँ रखी है वहीं रहने दो, पल्लवी ने झुंझलाते हुए कहा। मुझे मम्मा के लिए साड़ी तैयार करनी है, आपको बताया तो था मैंने। कोई जरूरत नहीं है। आप अंदर रखवाती हो या नहीं? नहीं। आपको क्या परेशानी है मेरी माँ से? तकरीबन 40 बसंत पार कर चुकी पल्लवी बुआ ने अंजलि की ओर हताशा से देखा और अपनी बात बदलते हुए कहा, तुम पहले नाश्ता करो। नहीं। अच्छा ऑफिस से आकर आज रखवा दूंगी, तुम नाश्ता तो करो। पक्का ना? हाँ पक्का। अपनी बात मान लिए जाने से खुश अंजलि नाश्ता करने बैठी और बुआ अपने कमरे में जाकर ऑफिस के लिए तैयार होने लगी। बुआ जल्दी से कपड़े बदलकर चेहरे पर हल्का सा पाउडर और थोड़ा परफ्यूम लगाकर बैग लटकाए कमरे से बाहर आई तो डाइनिंग टेबल में अंजलि नहीं बल्कि उसकी जूठी प्लेट और कप रखे मिले। बुआ ने उन्हें किचन में रखा और ऑफिस के लिए निकल गई। अंजलि ने बुआ की स्कूटी की आवाज़ सुनकर एक बार खिड़की से बाहर झांका और गेट से निकलती स्कूटी से नज़र हटाकर मेज पर सजी महिला की फ़ोटो देखने लगी, फिर उस फोटो को उठाकर मोहब्बत से चूम कर वापस रख दिया। भरी दोपहरी फन रिपब्लिक मॉल के किनारे चाय के ठेले के पास अंजलि की बुआ पल्लवी ने अपनी स्कूटी खड़ी की। नीम के पेड़ के पत्तों से छनकर धूप जमीन पर बिखर रही है। धूप से जरा सा हटकर छांव में बहुत से कर्मचारी खड़े थे और कुछ किसी चीज से टिके बैठे गप्पे लगा रहे थे। वहीं पल्लवी भी चाय का गिलास पकड़े पैंट शर्ट पहने एक आदमी के बगल में खड़ी हो गई। दोनों बातें करने लगे। तुम उसे बता क्यों नहीं देती? क्या बताऊं? यही कि उसकी माँ उसे भुला चुकी है। चाय का एक और घूंट लेकर गिलास ठेले पर रखते हुए लगभग पल्लवी की ही उम्र का प्रेम बोला। प्रेम कई बार बताने की कोशिश की है लेकिन वो ये बात सुनना ही नहीं चाहती। पर बताना तो पड़ेगा ना? पता नहीं। उसके माथे पर आती लट को कान के पीछे करता हुआ प्रेम कहता है, तुम परेशान मत हो पल्लू। प्रेम ठंडी आहें भरती हुई पल्लवी प्रेम के कंधे से सिर टिकाकर कहती है, फिर उसका हाथ थामते हुए अपना धड़कता दिल संभालते हुए रुककर अगले ही पल कहती है, देखो वो छोड़ो, तुम किसी अच्छी लड़की से शादी कर लो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो शादी भी तुमसे ही करूंगा। तुम जानते हो मेरी हालत, तुम मेरी बात तो कराओ अंजलि से।

से मना लूंगा। मुझे डर लगता है प्रेम। क्या डर लगता है, तुम अपने पापा मम्मी से बात नहीं करवा रही थी, लेकिन वो तो एक ही बार में मान गए। हाँ, पर अंजलि की बात और है, तुम मेरी बात तो करवाओ। प्रेम, मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हें कुछ कह दे। अरे कुछ नहीं कहेगी यार, मैं संभाल लूंगा। तभी मोबाइल पर नजर पड़ते ही पल्लवी चौंकी। ओफो, लंच टाइम खत्म हो गया, चलो काम कर लें, ये सब तो होता ही रहेगा। पल्लवी ने चाय वाले को पैसे दिए और दोनों मॉल की ओर बढ़ गए। एक बार पल्लवी की नजर पीछे देखती है और वो प्रेम के साथ कदम मिलाते हुए आगे बढ़ जाती है। हालांकि पल्लवी भी जानती है कि वो प्रेम के बिना नहीं रह सकती, लेकिन अंजलि की सोच कर वो ये बात कहने में सकुचाती है।

आधी रात होने को है। स्ट्रीट लाइट जल रही है लेकिन घरों में अब लगभग अंधेरा हो चुका है। चौकीदार की सीटी कहीं दूर बज रही है। कहीं पास में किसी घर में रेडियो पर मोहम्मद रफी गा रहे हैं हुई शाम उनका ख्याल आ गया। बुआ की स्कूटी घर के बाहर ही खड़ी है। पूरे घर में अंधेरा है लेकिन पल्लवी के कमरे में हल्की रोशनी है। वो अपने बेड के कोने में नीम दराज होकर फोन पर प्रेम से बात कर रही है। कल के लिए आलू की सब्जी और रोटी ले आऊंगी। कल कुछ मत लाना, कल सैटरडे है, जल्दी छुट्टी होगी, उसके बाद कहीं खाने चलेंगे। अच्छा ठीक है, लेकिन अभी बाय, क्योंकि 12 बज चुके हैं और सुबह जल्दी उठना होता है। हाँ बाय, लव यू। लव यू टू। प्रेम से ये कहते हुए पल्लवी को शर्म आ जाती है और वो फोन काट कर अपने बिस्तर से उठ खड़ी होती है। पहले उठकर मोबाइल चार्जिंग पर लगाती है, फिर रोज की तरह सोने से पहले अंजलि को देखने उसके कमरे की ओर बढ़ जाती है। अंजलि के कमरे का दरवाजा

लगा हुआ है लेकिन बंद नहीं है। पल्लवी कमरे के दरवाजे को हल्के हाथों से खोलती है कि नाइट बल्ब की रोशनी में सोती हुई अंजलि की मासूमियत से उसे दुलार आ जाता है। जैसे ही अंजलि को दुलारने के लिए उसके कंधे को हल्का सा उठाती है कि मम्मा, नींद में ही अंजलि के मुंह से निकलता है, या शायद ये कोई ख्वाब है। पल्लवी उसके कंधे से अपना हाथ हटाने की कोशिश करती है कि अंजलि एक बार फिर मम्मा कहती है, और गहरी नींद में डूबी अंजलि पल्लवी को ही अपनी माँ समझकर उससे लिपट जाती है। पल्लवी का चेहरा न जाने क्यों खिल उठता है। नाइट बल्ब की हल्की रोशनी में

टेबल पर आकर पल्लवी बुआ के साथ नाश्ता करने लगी। दूध खत्म हो गया है, जब बाहर निकलना तो ले आना। बुआ नाश्ता करते हुए अंजलि से बोली, क्यों दीदी नहीं आई? चाय का बड़ा कप हाथ में लेकर अंजलि ने सवाल किया। वो आज नहीं आई, फोन किया था, उसने बताया कि बीमार है। तो आपने अकेले सिलाई मशीन अंदर रखी है? हाँ, तो क्या हुआ? क्यों, मुझे उठा देती या मैं उठ जाती तब साथ में कर देते। तुम्हें और चाय चाहिए क्या? बुआ बात टालकर और चाय लेने किचन की ओर बढ़ गई। अंजलि चाय गर्म कर रही बुआ को एकटक देखती रही। 11 बजे अंजलि ने अलमारी से पैसे लिए और दूध लेने पास की दुकान पर पहुंच गई, लेकिन वहां दूध नहीं मिलने पर अलग अलग दुकानों में दूध पूछते पूछते अंजलि आखिर अरविंद की दुकान पहुंच गई। अंजलि तो उसे नहीं पहचान पाई, लेकिन अरविंद ने उसे जरूर पहचान लिया। फिर भी ऐसे बात करता रहा जैसे उसने उसे कभी पहले देखा ही ना हो। दूध है? अंजलि ने खुद में खोए हुए ही पूछा। हाँ, कितना चाहिए? 1 लीटर। फ्रिज से दूध के पैकेट निकालकर अरविंद ने थैली में डालकर दे दिया। 100 रुपए का नोट अंजलि ने भी जेब से निकालकर उसके हाथ में थमा दिया और बाकी पैसे और दूध का पैकेट उठाकर अपने घर की ओर बढ़ने लगी। लेकिन अरविंद की नजरों से उसे कुछ तो संदेह हुआ। अरविंद भी उसे जाते हुए देख ही रहा था कि गली में मुड़ने से पहले अंजलि ने पलट कर देखा और अरविंद की नजर से नजर मिलते ही झट से गली में मुड़ गई। उसका दिल जोरों का धड़क रहा था।

अगली शाम सफेद शॉर्ट्स और काला टॉप पहने अंजलि रोज की तरह अपनी बालकनी की रेलिंग पर पैर टिकाकर खड़ी थी कि गली के मोड़ से अरविंद आता दिखाई दिया। उसके घर के पास ही एक पेड़ के नीचे रुककर अरविंद अपने मोबाइल में कुछ देखने लगा और अंजलि की नजरें भी गहनता से उसकी ओर ठहर गईं। अरे, ये तो वो दुकान वाला लड़का है, वो मन ही मन कह उठती है और बीते दिन की बात सोचकर उसके चेहरे पर एक लाली छाने लगी।

वहां अरविंद ने मोबाइल पर अपना गाना बदलकर एयरफोन लगाने के बाद जैसे ही नजरें उठाई कि सामने के घर की बालकनी पर खड़ी लड़की दिखी। अरविंद का ध्यान गाने से हटकर उस ओर हो गया। दोनों की नजरें मिली। अरविंद झिझका, लेकिन अंजलि ने एक मीठी सी मुस्कान दी। अरविंद ने भी अंजलि की मुस्कान का जवाब मुस्कुराकर दिया। दोनों में कोई बात नहीं हुई। अरविंद आगे बढ़ गया और अंजलि उसे जाते हुए देखती रही। अरविंद भी बार बार मुड़कर उसकी ओर देखता रहा। अरविंद के गली पार करने के साथ ही मानो अंजलि के दिल का एक हिस्सा भी उसके साथ गली के पार ही चला गया और उसकी नजरों के बारे में सोचकर ही अंजलि की धड़कन बढ़ गई और मन में एक अनोखी हलचल होने लगी। वो बालकनी से हटकर जल्दी से अपने कमरे में पहुंची और आईने के सामने बैठकर खुद को देखने लगी। अपने बालों को, होंठों को, आंखों को, अपने आप को देखते हुए उसके होंठों पर मुस्कान आ गई और जैसे उसके चेहरे से चिपक ही गई। इससे पहले शायद कभी खुद को इतने गौर से उसने देखा ही नहीं था। अब एक सिलसिला सा बन गया। अंजलि रोज इंतजार करती और अरविंद जब आता तो हाय हेलो का एक सिलसिला शुरू हो चुका था, लेकिन बात इससे आगे नहीं बढ़ी। एक रोज अरविंद जब दुकान से वापस आने लगा तो बालकनी पर प्लास्टिक की कुर्सी तो दिखी, लेकिन अंजलि कहीं नहीं दिख रही थी। मासूम अरविंद पेड़ के पास तक पहुंचा ही था कि पेड़ के बगल के पार्क से अंजलि बाहर आई और उसके बिल्कुल सामने खड़ी हो गई। अरविंद की धड़कन तेज हो गई। अंजलि उसे ध्यान से देख रही थी। अंजलि ने ही हिम्मत करके बात की। हेलो, हाय, मेरा नाम अंजलि है, मैं अरविंद। फिर कुछ पल दोनों खामोश रहे। आखिर क्या कहें, मैं आपको देखती हूँ, अंजलि ने अचानक चुप्पी तोड़ते हुए यूं ही कहा। जी, अरविंद ने लगभग चौंकते हुए जवाब दिया। मेरा मतलब है आप मुझे देखते हैं। सॉरी, मेरा मतलब, अरविंद के जो मुंह में आया वो कहने लगा। नहीं नहीं, सॉरी की बात नहीं, मुझे अच्छा लगता है। अरविंद को सुकून आया। अंजलि उसे देखकर मुस्कुराई। दोनों कुछ और पल वहीं खड़े रहे, फिर यकायक जैसे अरविंद को होश आया। अब मैं जाता हूँ। तभी अंजलि ने हिम्मत करके अपना दायां हाथ बढ़ाया और अरविंद ने लगभग कांपते हुए हाथों से हाथ मिलाया और अंजलि की ओर देखे बिना मुस्कुराकर अपनी राह चल पड़ा। इसके बाद से अंजलि और अरविंद एक दूसरे को देखने भर के लिए बेकरार रहने लगे। सारा दिन अंजलि ये सोचती कि वो क्या पहने जो अरविंद को भाए, और ये भी कि आज अरविंद क्या पहन कर आएगा। मोबाइल नंबर का लेन देन भी हो चुका था और मोबाइल पर दोनों की झिझक दूर होने लगी थी, लेकिन आमने सामने अभी भी झिझक बाकी थी। एक दिन अरविंद ने घर से दूर एक कैफे में अंजलि को मिलने के लिए बुलाया। सुबह के 10 बज रहे थे। रोज की तरह पल्लवी बुआ सुबह के नाश्ते के बाद एक और बार चाय बनाने के लिए उठी और अंजलि से चाय पूछने के लिए जैसे ही उसके कमरे का दरवाजा खोला कि अंजलि को आईने के सामने खड़ा पाया। ये क्या कर रही हो? मेकअप? हाँ, वो तो दिख रहा है, पर संडे को कहाँ जा रही हो? घूमने जा रही हूँ। किसके साथ? एक दोस्त के साथ जा रही हूँ। अच्छा, आपको कोई काम था क्या बुआ? नहीं, कोई काम नहीं है, मैं तो बस पूछने आई थी कि चाय पियोगी। हाँ हाँ, बना लो मेरी भी। बुआ के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। फिर अगले ही पल अंजलि का बेतरतीब मेकअप देखकर बुआ झिझकते हुए बोली, सुनो। क्या? मैं कर दूँ मेकअप तुम्हारा? नहीं बुआ, मैं कर लूँगी। अच्छा, बुआ ने ज़्यादा जोर ना देना ही उचित समझा, लेकिन अंजलि ने बुआ का मुँह देखा और बोली, गड़बड़ कर दी ना बुआ। अच्छा ठीक है, आप ही कर दो, आती हूँ चाय रखकर। पल्लवी बुआ अंजलि का मेकअप करते करते उससे सवाल भी करती जा रही थी। किसी लड़के से तो मिलने नहीं जा रही हो ना? नहीं। देखो, अगर जा भी रही हो तो ध्यान रखना। नहीं जा रही। शाम से पहले घर आ जाना और देर हो तो मुझे बुला लेना। बुआ, मैं आ जाऊंगी। पल्लवी बुआ ने अंजलि को अच्छे से तैयार कर दिया और जब अंजलि चिकन का जालीदार काले बूटों वाला सूट क्रीम सफेद दुपट्टे के साथ पहने सामने आई तो उसके खुले लहराते बालों को देख बुआ कह उठी, बाल तो बांध दो बेटा। बुआ, मुझे खुले बाल पसंद हैं। अच्छा बाबा, जैसी मर्जी, आराम से जाना। आपको क्यों लग रहा है कि जैसे मैं पहली बार घर से बाहर निकल रही हूँ? पल्लवी बुआ ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। अगर देती तो यही कहती कि पहली ही बार तो जा रही हो, क्योंकि इसके पहले तो अंजलि कभी इतना तैयार होकर कहीं गई नहीं थी। एक और बुआ अंजलि का ये रूप देख कर खुश थी तो दूसरी ओर अंजलि के घर से निकलने की देर थी कि बुआ को उसकी फिक्र सताने लगी। उन्हें लगा कि एक बार प्रेम से बात कर ले। तभी याद आया कि उनका भी तो प्रेम से मिलने का आज प्लान था, लेकिन ये तो ध्यान ही नहीं रहा। ध्यान आया तो उन्होंने एक मैसेज डाल दिया और मना कर दिया। घर से बाहर निकली अंजलि को अरविंद दो गली छोड़कर मिल गया। सफेद शर्ट, नीली जीन्स और स्पोर्ट शूज उसकी पर्सनैलिटी पर जंच रहे थे। दोनों ने हाथ मिलाया और एक ऑटो में बैठते ही दोनों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कान दी। पहली बार अरविंद और अंजलि एक साथ कहीं जा रहे थे।

थोड़ी देर बाद अंजलि और अरविंद हजरतगंज के कैफे में आमने सामने बैठे हुए थे। टेबल में एक बड़ी प्लेट में पिज्जा के कुछ पीस रखे हुए थे और एक एक पीस उनके हाथों में था। सामने ही अंजलि की फेवरेट स्ट्रॉबेरी शेक के दो गिलास भी रखे हुए हैं। शेक लो, अरविंद ने अंजलि की तरफ गिलास बढ़ाते हुए कहा। अंजलि ने हल्की मुस्कान के साथ हाथ बढ़ाकर शेक अपनी ओर रखा। कुछ बताओ, अरविंद ने बात छेड़ी। क्या बताऊं? कुछ भी, अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में। मैं बीकॉम कर रही हूँ यूनिवर्सिटी से, मेरी बेस्ट फ्रेंड शिवानी है, मुझे लिखना पसंद है। और इतना कहते कहते अंजलि की नज़र अरविंद की उस निगाह पर गई जो उसे ध्यान से देख रही थी। अंजलि ने अपनी शर्म छिपाते हुए आगे कहने की कोशिश की और टेबल पर रखे उसके दोनों हाथों को हल्के हाथों से छूते हुए अरविंद ने कहा, और? अंजलि का दिल जोर से धड़कने लगा और मुलायम हाथों को सहलाते हुए अरविंद ने छेड़ जारी रखी, और? हर पल अंजलि के चेहरे पर बहार बढ़ रही थी। वो किसी खुशनुमा फूल की तरह खिल रही थी जिसकी खुशबू सारे माहौल को रंगीन कर रही थी। उसने मारे शर्म के हाथ पीछे करने की कोशिश की लेकिन अरविंद ने उन्हें पकड़ा हुआ था। तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा? अरविंद के ये पूछने पर शर्म से लाल चेहरे को अंजलि ने ना में हिलाया। इसके बाद उसकी नजरें झुकी ही रहीं। वो चाहती थी कि

अरविंद उसे अच्छे से देख ले, लेकिन उसे अरविंद की निगाहों से बेतहाशा शर्म आ रही थी। वापसी में ऑटो में बैठते ही अरविंद ने अंजलि की ओर देखते हुए कहा, लेकिन मैं तुमसे नाराज हूँ। क्यों? अंजलि हैरानी से अरविंद की ओर देखती है। बस इसलिए कि मैंने तो तुम्हें जी भर कर देखा, लेकिन तुम पीछे रह गई। अंजलि ने प्यार से एक हल्की चपत अरविंद के सीने पर लगाई तो अरविंद कह उठा, हाँ अब कुछ अच्छा लग रहा है। तुम भी ना, कहते हुए अंजलि ने एक बार फिर शर्म से लाल होकर अरविंद के कंधे पे सिर टिका लिया। अंजलि अपने घर की गली में पैदल चलती आ रही थी। घर की बालकनी पर खड़ी पल्लवी बुआ उसका रास्ता देख रही थी। टेंशन में उनके हाथ रेलिंग पर ही चल रहे थे और दूसरे हाथ में मोबाइल के स्क्रीन पर अंजलि की तस्वीर चमक रही थी। अंजलि के जाने के बाद से ही वो कई बार फोन करने का सोचती रही, लेकिन किया नहीं था। अंजलि को देखकर उनके चेहरे पर सुकून आया, लेकिन अंजलि की नजर उन पर न पड़ जाए ये सोचकर वो बालकनी से हट गई। पल्लवी बुआ ने प्रेम के साथ देर रात वाली फोन कॉल पर भी इस बात का जिक्र छेड़ा। तुम क्यों इतनी टेंशन में हो? प्रेम ने पूछा। टेंशन में इसलिए हूँ क्योंकि मुझे फिक्र है। अरे बाबा, इस उम्र में अंजलि किसी लड़के से नहीं मिलेगी तो कब मिलेगी? अपने मोहल्ले में पैदल चलते हुए वो फोन पर पल्लवी को समझा रहा था। तुम नहीं समझोगे, पल्लवी हताश होकर कहती हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन अभी तो तुम्हें ये भी नहीं पता कि वो किसी लड़के से ही मिलने गई थी। मैं खुद औरत हूँ तो ये अच्छी तरह से जानती हूँ। वो जिस तरह से बनठन कर गई थी और जैसा उसका चेहरा खिला है, वो किसी लड़के से ही मिलने गई थी। अच्छा ठीक है, पहली बात तो अपने आप को औरत मत कहा करो, नहीं तो खूबसूरत हो तुम। वेरी फनी, पल्लवी ने झूठे गुस्से से कहा। अरे सच में, और दूसरी बात, तुम अंजलि को लेकर फिक्र मत करो। बस उसे समझा दो कि अगर रिलेशनशिप में जाए तो एक दूरी बनाकर रखे। ठीक कहते हो, लेकिन पहले श्योर हो जाओ। पल्लवी को प्रेम की बातों से कुछ राहत सी मिली। हाँ शायद तुम ठीक कह रहे हो। हाँ मेरी पल्लो। कुछ भी, पल्लवी शर्मा कर बोली। अवध की खुशनुमा शाम की खिलती रात में प्रेम और पल्लवी अपनी मोहब्बत की बातों में लग गए।

सुबह मौसम में आने वाले बदलाव का संकेत देने लगी थी। रोशनदान से आती धूप दीवारों पर रंग बिखेर रही थी। कमर तक हल्की चादर ओढ़े अंजलि अपने बिस्तर पर थी और उसके पांव चादर से बाहर। उसकी आंखें एक सुकून भरा ख्वाब देखकर खुश हो रही थी। मेज पर माँ की तस्वीर मुस्कुरा रही है। माँ की तस्वीर के बगल में रखी अंजलि की डायरी के खुले पन्ने फड़फड़ा रहे थे, जिसमें से एक में लिखा था, किसी को भी नहीं। ये खत मैं किसी को भी नहीं लिख रही, लेकिन लिख रही हूँ। आज अरविंद ने मुझसे पूछा कि मम्मा पापा साथ रहते हैं क्या। मैं क्या कहती, मैं बहुत छोटी थी लेकिन मुझे याद है कि सुबह अच्छे भले गए मेरे पापा वापस नहीं आए, उनका शरीर आया। दादी का रो रो कर बुरा हाल था, बुआ तो कुछ बोल ही नहीं रही थी। दादू मुझे संभाल रहे थे और मम्मा पापा से लिपट कर रोए जा रही थी। फिर पापा का वो शरीर भी धुआं होकर भगवान के पास चला गया। धीरे धीरे सब नॉर्मल होने लगा। पापा नहीं थे पर दादू दादी बुआ थे और मम्मा तो थी ही। दादू दादी गांव लौट गए, बुआ मेरे साथ रहने लगी। फिर एक रोज घर में बड़ा झगड़ा हुआ। मम्मा किसी और से शादी करने की बात कर रही थी और फिर उनकी शादी हो गई। मम्मा कुछ बार आई लेकिन फिर उनका आना बंद हो गया। फोन भी अब नहीं करती। वो भी क्यों आती, जब आती थी तो बुआ झगड़ा करने लगती, फिर वो नहीं आती थी, लेकिन मुझे उनकी याद बहुत आती थी, अभी भी आती है। मम्मा शादी के लिए मुझे छोड़कर चली गई और बुआ ने मेरी वजह से शादी नहीं की। आज जब अरविंद ने पूछा तो सोचा कहूँ कि बुआ ही मेरी माँ है, पर वो मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ मेरी मम्मा है। अंजलि। आसमान घने बादलों से घिरा है और फिजा में उमस का साया है। हल्की बूंदाबांदी से सड़कें गीली हैं और सड़क के किनारे मिट्टी की रहगुजर से भीनी खुशबू आ रही है। हजरतगंज के हलवासिया कंपाउंड के पास एक कैफे में हलचल दिख रही है। युवा लड़के लड़कियां अपने अपने ग्रुप बनाकर मेजों के पास लगी कुर्सियों पर बैठे हैं। इन्हीं में से एक टेबल पर अंजलि अरविंद के साथ बैठी है और साथ में एक और लड़की बैठी है। अंजलि ने गाढ़े नीले रंग का स्लीवलेस टॉप पहना था, सादा सा मेकअप किया हुआ है, बाल खुले और गले में एक चांदी की चेन थी। वो अच्छी लग रही थी लेकिन अरविंद की नजर शायद कहीं और ही थी। वो अंजलि के सामने बैठा था लेकिन उसका ध्यान उसके बगल में बैठी लड़की की ओर था। उसके काले घने बाल उसकी सुराहीदार गर्दन से होकर उसकी काली कुर्ती पर ठहर गए थे। उसकी बड़ी बड़ी आंखों का काजल अरविंद को आकर्षित कर रहा था। उसका चौड़ा माथा और अंजलि से थोड़ा लंबा कद भी अरविंद को भा रहा था। लड़की के गाल सुर्खी से भरे थे और होंठों पर गहरी मुस्कान थी। ये शिवानी है। अच्छा, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, बताया था ना, अंजलि ने चहक कर कहा। हाँ बताया था, अपने नानू के यहाँ गई थी, कल ही आई है। अंजलि कुछ ज्यादा ही खुश थी। अरविंद की गहराती नजर शिवानी को पहचान गई थी। ये वही लड़की है जिसे उसने बालकनी में अंजलि के साथ देखा था। अंजलि अपनी बातों में लगी थी लेकिन शिवानी अरविंद के इस नजर का भाव समझ रही थी। शिवानी ने उस समय कुछ कहना ठीक न समझा और मेन्यू देखने लगी। क्या मंगाऊं मैं, कुछ भी अच्छा सा, अंजलि ने अरविंद को देखते हुए कहा। अरविंद इस बात को भांप गया कि शिवानी उसकी नजर का भाव समझ रही है। कुछ ही देर में तीनों कैफे से बाहर निकल आए। बूंदाबांदी रुक गई थी लेकिन बादल घने थे। अंजलि कुछ और देर रुकना चाहती थी, वो चाहती थी कि कहीं कुछ देर बैठा जाए, लेकिन शिवानी ने आसमान की ओर देखा और फिर अरविंद की ओर देखकर जैसे अपने आप से ही कहा, इससे पहले कि तेज बारिश हो घर ही चलना चाहिए।

अंजलि ने ऑनलाइन एक ऑटो बुक किया और तीनों उसमें बैठकर घर की ओर निकल गए। अरविंद को उसके घर के पास गली में उतारा और शिवानी भी अंजलि के साथ उसके घर आ गई। दोनों कमरे में जाकर बैठी कि अंजलि उसे अरविंद के बारे में बताने लगी। शिवानी अंजलि की भावना को समझ भी रही थी, लेकिन अरविंद को लेकर उसके मन में शक आ चुका था। बाहर तेज बारिश होने लगी। कुछ देर में बुआ कमरे में पकौड़ियाँ और चाय देकर अपने काम में लग गई। ये मशीन यहाँ क्यों रखी है? शिवानी ने बात बदलते हुए पूछा। अरे ऐसे ही रखी है। ऐसे क्यों? पर इतनी जगह है घर में, यहाँ क्यों रखना? तू छोड़ ना उसे, ये बता अरविंद कैसा लगा? मुझे तो ठीक ठीक ही लगा, शिवानी इस बात को खत्म सा करती हुई बोली। बस ठीक? हाँ भाई ठीक बस। अरे यार तेरा आशिक है, तुझे पसंद है ना, इतना काफी नहीं है क्या? हाँ ये तो है, तू पहली बार मिली है ना इसलिए ऐसा कह रही है, एक दो बार मिलेगी तो समझ आएगा। दोनों चाय का कप लेकर बालकनी में खड़े होकर बारिश देखने लगे। अंजलि उस पेड़ की ओर देखने लगी जहां वो पहली बार अरविंद से मिलने गई थी। शिवानी बादलों की गड़गड़ाहट को अपने अंदर महसूस कर रही थी। इस बात को दो दिन बीत गए। घर की बालकनी पर खड़ी अंजलि की नजरें गली की ओर ही टिकी थी। उस मुलाकात के बाद से अरविंद नजर ही नहीं आया। उसने अंजलि से फोन पर भी ज्यादा बात नहीं की। जब सुबह अंजलि ने फोन किया तो अरविंद ने आज सुबह दुकान से वापसी में उससे मिलने की बात कही थी। अब अंजलि का मन हो रहा था कि किसी तरह समय जल्दी चलता हुआ उसी समय में पहुंच जाए। हल्के बादल थे लेकिन आज बारिश नहीं हुई थी। उमस ने मौसम में कसावट पैदा कर दी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई तूफान आने को है। हवा का तेज झोंका पेड़ की एक डाल से सूखे पत्ते बालकनी में फेंक रहा था। हवा से अंजलि के बाल उड़ने लगे और उसे सामने से अरविंद नजर आने लगा। दो दिन से परेशान अंजलि के चेहरे पर एक मुस्कान खिल गई। अंजलि अरविंद से मिलने नीचे आई तो दूर से ही धुंधलाती फिजा में भी उसे अरविंद के चेहरे से साफ नजर आ रहा था कि वो पहले की तरह खुश नहीं है, परेशान है। और ये सोचकर वो भी परेशान हो गई। अरविंद ने दूर से अंजलि को देखा और फिर पेड़ के पास रुक गया। अंजलि उससे कुछ पूछना चाहती थी लेकिन उसे समझ नहीं आया कि क्या पूछना है और कैसे। फिर उसने पूछा, कैसे हो? ठीक हूँ। परेशान हो क्या? हाँ थोड़ा परेशान हूँ। बताओ मुझे, मैं दूर करूंगी तुम्हारी परेशानी, अंजलि ने आशा भरे शब्दों में कहा। नहीं, अपने आप दूर हो जाएगी। अरे हाँ कोई बड़ी बात नहीं है, बस कुछ समय में ठीक हो जाएगा सब। इसके बाद अंजलि बहुत कुछ कहना चाहते हुए भी कुछ ना कह सकी। अरविंद जाने लगा तो एक बार अंजलि का जी चाहा कि उसे रोक ले, लेकिन इसका भी क्या फायदा होता, यही सोचकर खुद को ही रोक लिया। अरविंद चला गया, अंजलि उसे दूर तक जाते हुए देखती रही। दोनों के बीच कुछ बदल चुका था। फोन पर अरविंद बात नहीं कर पाने का कोई ना कोई बहाना बताता। अंजलि को भी एहसास होने लगा था कि या तो अरविंद को कोई बड़ी परेशानी है या फिर वो उससे दूर जा रहा है। यूनिवर्सिटी की छुट्टियां खत्म हो गई थीं। अंजलि दिन में यूनिवर्सिटी जाती लेकिन उसका सारा ध्यान अरविंद की ओर लगा रहता। यूनिवर्सिटी से आकर वो बालकनी पर ही खड़ी रहती। एक हफ्ते से ज्यादा समय बीत गया था, ना तो अरविंद ही उसे रास्ते पर नजर आया और ना ही उसकी आवाज ही फोन पर सुन सकी थी। लेकिन व्हाट्सएप पर वो छोटे छोटे रिप्लाई किया करता था। एक दो बार अंजलि ने अरविंद के भाई की दुकान पर जाकर उससे बात करने की कोशिश की लेकिन वहां उसने बिजी होने की बात कह दी। अंजलि को अरविंद का ये व्यवहार समझ ही नहीं आ रहा था। कहां तो वो प्यार भरे सपने सजा रही थी और कहां अरविंद उसकी खुली आंखों से ही दूर होता नजर आ रहा था।

रोज मोबाइल की रिंग हुई कि अंजलि ने अरविंद का कॉल समझकर लपक कर फोन पकड़ा, लेकिन फोन स्क्रीन पर अरविंद की जगह शिवानी का नाम देखकर उसने बेरुखी से फोन उठाया। हेलो, दूसरी तरफ से आवाज आई। हाँ हेलो, उधर से अंजलि ने रुखा सा जवाब दिया। क्या हुआ तुझे? मुझे क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। फिर दो दिन से यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आई? शिवानी ने धमकाया। नहीं आई बस। अच्छा सुन, मुझे कुछ बताना था तुझे। क्या? मिलकर बताती हूँ। अरे बताना। नहीं, आज शाम को तेरे घर आती हूँ, शिवानी ने गंभीर होते हुए कहा। पर क्या बात है, कुछ हिंट तो दे। अंजलि झुंझला उठी। अरविंद के बारे में है। अरविंद? हाँ, क्या हुआ अरविंद को? कुछ नहीं हुआ उस नीच को, शिवानी चिढ़कर बोली। अरे कैसी बात कर रही है अरविंद के बारे में? आकर बताती हूँ, यूनिवर्सिटी में हूँ अभी। मैं आऊँ यूनिवर्सिटी? नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है, मैं आती हूँ आज शाम को, कहकर शिवानी ने फोन रख दिया। फोन बंद होने के बाद से ही अंजलि उस बात को लेकर बेचैन थी जिसका जिक्र शिवानी करने वाली थी। अंजलि बालकनी पे खड़े अंदाजा लगा रही थी कि उसकी नजर पेड़ के पास खड़े अरविंद पर पड़ी और अंजलि का मोबाइल बजने लगा। देखा तो अरविंद का ही फोन था। घने बादलों से अंधेरा चारों ओर फैल गया था। हवाएं तेज रफ्तार में चल रही थी। फूलदार लॉन्ग स्कर्ट और सफेद शर्ट पहने अंजलि तेज रफ्तार से नीचे आ रही थी कि मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, लेकिन वो गेट खोलकर दौड़ती हुई दूसरे पार पहुंच गई। अरविंद पेड़ के नीचे था लेकिन भीग रहा था। इससे पहले कि अंजलि कुछ कहे, अरविंद बोल पड़ा, तुम मेरा इंतजार मत किया करो। अरे तुम फोन भी? लेकिन अंजलि कुछ और कहती उसके पहले ही अरविंद उसकी बात बीच में टोकते हुए बोला, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। ये क्या कह रहे हो और क्यों? जोर से बादल गरजा और बारिश की बूंदें मोटी हो गईं, क्योंकि यही सच है,

0: सफेद शर्ट पहने अंजलि तेज रफ्तार से नीचे आ रही थी कि मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, लेकिन वो गेट खोलकर दौड़ती हुई दूसरे पार पहुंच गई। अरविंद पेड़ के नीचे था लेकिन भीग रहा था। इससे पहले कि अंजलि कुछ कहे, अरविंद बोल पड़ा, तुम मेरा इंतजार मत किया करो। अरे तुम फोन भी, लेकिन अंजलि कुछ और कहती उसके पहले ही अरविंद उसकी बात बीच में टोकते हुए बोला, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। ये क्या कह रहे हो और क्यों? जोर से बादल गरजा और बारिश की बूंदें मोटी हो गईं, क्योंकि यही सच है। अंजलि अरविंद को आस भरी नजरों से देखने लगी। तभी अरविंद ने कहा, मैं शिवानी से प्यार करता हूँ। उसके इस वाक्य ने अंजलि के आस को पूरी तरह तोड़ दिया। इसके बाद अरविंद ने क्या कहा उसने कुछ भी नहीं सुना। उसने कठोर नजर से अरविंद की ओर देखा और फिर अपने दरवाजे के सामने आकर खड़ी हो गई। अरविंद जाने लगा लेकिन अंजलि ने उसे एक बार भी नहीं देखा। वो अपने दरवाजे के सामने जैसे बेसुध खड़ी हुई थी। कुछ देर में वो घर के अंदर चली गई। शाम होते होते बारिश हल्की हो गई। पल्लवी बुआ अपनी स्कूटी गेट के अंदर ही कर रही थी कि शिवानी छाता लिए ऑटो से उतरती दिखी। दोनों साथ ही ऊपर जाने लगे। अचानक फिर से तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश होने लगी। पानी की बौछारें बालकनी तक आने लगी। अंजलि के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। मेज पर रखी डायरी के पन्ने हवा से उड़ते उड़ते एक पन्ने पर आकर रुक जाते हैं, जिस पर लिखा है, बुआ मुझे मालूम है मम्मा अब नहीं आएंगी। तुम्हें भले लगता हो कि मैं उनका इंतजार कर रही हूँ, लेकिन नहीं, मुझे उनका इंतजार नहीं है। हाँ मैं उन्हें प्यार करती हूँ और तुम्हें भी, लेकिन तुम्हें ज्यादा प्यार नहीं करती। इतना जरूर करती हूँ कि जो साड़ी तैयार कर रही थी वो मम्मा के लिए नहीं तुम्हारे लिए है। अलमारी में रखी है साड़ी, तुम्हें दी नहीं क्योंकि समझ ही नहीं आया कि कैसे दूं। बुआ तुम प्यारी लगोगी उस साड़ी में, और वो जिन्हें तुम चाहती हो वो भी तुम्हें साड़ी में देखकर खुश होंगे। मैंने एक रोज तुम्हें उनके साथ देखा था और मुझे यकीन हो गया था कि तुम प्यार में हो। कितना अच्छा है ना। पता है मेरी मम्मा मुझे बहुत प्यार करती हैं। इस बात का कोई सबूत मेरे पास नहीं है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि यही सच है। तुम भी मेरी माँ के लिए दिल में कड़वाहट मत रखो। मुझे दुख होता है जब तुम उनको कुछ कहती हो। अंजलि। डायरी का पन्ना हवा से एक और बार पलटता है और आखिरी पन्ने पर आकर रुक जाता है, जिसमें लिखा है, मम्मा मैंने तुमसे हमेशा बहुत प्यार किया, तुम्हारा बहुत इंतजार किया, लेकिन वो इंतजार बहुत साल पहले खत्म हो गया था। मुझे एहसास हो गया था कि तुम अब शायद ही कभी आओ, लेकिन लगता था कि कभी तो तुम मुझे फोन कर ही लोगी। पर वो उम्मीद भी खत्म हो गई। एक आस जिसकी वजह से मैं यहाँ थी अब वो भी नहीं रही। मेरी वजह से बुआ अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रही। मैं नहीं चाहती कि हमेशा ऐसा रहे, इसलिए अब मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। आप आना तो ये नहीं सोचना कि मैंने आपका इंतजार नहीं किया, पर अब और नहीं। अंजलि। तेज हवा से डायरी के सारे पन्ने उलट पलट होते हैं और डायरी बंद हो जाती है।
1: तेरी दुनिया से होके मजबूर चला।

गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आप सुन रहे थे अरगवान रब्बही की लिखी कहानी अंजलि, वाचन स्वर नेहा शर्मा का, संपादन सहयोग काजल भदरगे, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अगले सप्ताह किसी नई कहानी के साथ होंगे हाजिर, तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार।

पेश खिदमत है छाया गीत। छाया गीत के सभी सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। मोहब्बत के तराने रात गुनगुनाती है और दिल में उम्मीदों के चिराग मुसलसल जलते हैं। दुनिया के नज़ारे, ये चांद ये सितारे, उसे एक नज़र में समाए लगते हैं, जिनके बगैर सब कुछ बेजार सा लगता है। जब वो आ जाएं तो मौसम बहार आ जाए, कलियों में शोखी, फूलों पे निखार आ जाए।

भारती से आप सुन रहे हैं छाया गीत। छाया गीत कार्यक्रम के बाकी नगमे आपको सुनवाएंगे बस एक छोटे से अंतराल के बाद।

विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं छाया गीत। महफिल में आज उनका ही चर्चा है, हर नजर को ठहरा गए, एक हल्की सी मुस्कुराहट पे अरमान मचल जाते हैं, इस कदर छाए हैं बादलों में जैसे बूंदों का आशियां, खामोश बैठे हैं ऐसे जैसे रात कुछ सोच रही हो। सच कहूं तो ऐसी सादगी का क्या कहना, उस नाज का क्या कहना, उस नाजनी का क्या कहना।

यहाँ भी क्या कयामत है, देखते तो इधर ही हैं। वो तेरी नजर का निशाना खाली जाता नहीं, प्यार उनसे भला किस तरह छुपाएं। साज दिल पे एक तरह ना दिल ने छेड़ा है, चांदनी रात में ये फसाना दिल ने छेड़ा।

मचलती घटाओं की गुलाबी रंगत, प्यारे वो पल जब बादे सबा ने कुछ कहा। दिल कहता है आपके प्यार की दास्तान ये सुनाती हैं, कुछ तूफान दिल में मचलते हैं। ये आपका जाना और जाकर फिर लौट आना, तो बंदिशों के दरवाजे मोहब्बत में रहने दो। कुछ दिल की कहो, कुछ कुछ दिल में ही रहने दो।

अभी राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रम अनुप्रसारित किए जा रहे थे। एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। शाम के 5:30 हुए हैं। लीजिए, अब आपको सुनवाते हैं प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश, स्वागत करती हूँ आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में।
3: नमस्कार, मैं हूँ अजीत। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुविचार, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम राजकोट से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: वो लिखते हैं, भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करें, सारे दरवाजे खुल जाएंगे।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको इतने सुंदर संदेश के लिए। जी हाँ श्रोताओ, भाग्य भरोसे बैठे रहने से बेहतर है कर्म करना, जो सफलता का आधार है।
2: जी,
3: पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम सुन लेते हैं।
2: अयोध्या धाम से राजा बाबू शर्मा, राम बाबू शर्मा, राज बाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा।
3: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे।
2: ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
3: असिटी गोनियाना मंडी पंजाब से गुरप्रीत सिंह जसल जी।
2: ठाणे महाराष्ट्र से शोभा राणे जी।

0: आप सबको संदेश भेजने के लिए उमंग कार्यक्रम की ओर से आभार। स्वागत आप सबका एक बार फिर से श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओ, इस सप्ताह हमारी चर्चा का विषय दुनिया की विभिन्न पेय संस्कृतियों पर रहा है।
1: हमने चर्चा की चाय की, कॉफी की और कोको की।
0: आज
1: हम बात करेंगे एक और पेय की जो चाय, कॉफी और कोको के बाद सबसे अधिक लोकप्रिय है। ये पेय बहुत स्वास्थ्यवर्धक पेय माना जाता है।
0: जी हाँ श्रोताओ, हम बात कर रहे हैं सोया पेय की।
1: जी,
0: इसकी अपनी पेय संस्कृति है, खासकर पूर्वी एशिया में। सोया केवल पेय ही नहीं लेकिन एक स्वास्थ्यवर्धक भोजन भी है।
1: जी,
0: कई समुदायों में खान पान और संस्कृति का ये हिस्सा रहा है,
1: जैसे चीन, जापान, कोरिया और वियतनाम के समुदायों में। इन देशों में सोया दूध सदियों से सुबह के नाश्ते का अभिन्न अंग रहा है। इन देशों में सोया पेय को स्वास्थ्य, पौष्टिकता और ऊर्जा से जोड़कर देखा जाता है।
0: यदि इसकी उत्पत्ति की बात करें तो सोयाबीन मूल रूप से चीन का माना जाता है।
1: जी,
0: ऐतिहासिक और आनुवंशिक अध्ययनों से पता चला है कि चीन की येलो रिवर या पीली नदी की घाटी में यह पहली बार पाया गया।
1: जी,
0: प्राचीन चीन में सोया को गेहूं और धान की तरह पारंपरिक मुख्य फसलों में गिना जाता था।
1: यहां से सोया धीरे धीरे व्यापारिक मार्गों से भारत, कोरिया, जापान, एशिया के अन्य देशों में पहुंचा। सबसे बाद में ये यूरोप और अमेरिका समुद्री मार्गों से पहुंचा।
0: श्रोताओ, इन देशों में सोया पेय उतना ही लोकप्रिय है जैसे भारत में चाय। सामुदायिक खेलकूद प्रतियोगिताओं, जूडो, कराटे और अन्य खेलों में भी इसका बड़ा महत्व है। खिलाड़ी प्रतियोगिताओं के समय इसका विशेष रूप से सेवन करते हैं ताकि उनकी शारीरिक क्षमता और स्फूर्ति बनी रहे।
1: ये गर्म या ठंडा दोनों रूपों में पिया जाता है। कई देशों में सोया पेय के विशेष और आकर्षक स्टॉल लगाए जाते हैं जहां लोग जमा होकर इसे पीते और आपस में बातचीत करते हैं।
0: जहां तक इसकी पैदावार की बात है, ये एक पौध आधारित समृद्ध प्रोटीन का स्रोत है जिसे कई लोग डेयरी के विकल्प के रूप में भी लेते हैं।
1: तकनीकी रूप से ये दलहन यानी दाल है। इसे वार्षिक फसल भी कहते हैं क्योंकि ये साल में एक बार ही होती है। इसके पौधे में हरी पत्तियां, फूल और फलियां होती हैं। इन फलियों में बीज होते हैं। इसके सबसे बड़े उत्पादक देश ब्राजील, अमेरिका, अर्जेंटीना, चीन और भारत हैं।
0: यदि भारत की बात करें तो जलवायु के आधार पर मुख्य रूप से ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में उगाया जाता है। सोया के कई उपयोग हैं जैसे
1: सोया दूध, टोफू, सोया आटा, सोया तेल, सोया सॉस और पशु आहार।
0: अब आइए बात करते हैं आयुर्वेद की। श्रोताओ, सोयाबीन की चर्चा आयुर्वेद के प्राचीन मुख्य ग्रंथों में तिल, मूंग, उड़द और मसूर की तरह स्पष्ट रूप से तो नहीं मिलती, लेकिन आधुनिक आयुर्वेदिक व्याख्याओं में इसे अत्यंत पौष्टिक और शरीर को बल देने वाला पेय माना जाता है।
1: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी सोयाबीन के बारे में। इसकी पेय संस्कृति बहुत रोचक रही है, खासकर मध्य पूर्व एशिया में, लेकिन अब ये एक वैश्विक पेय माना जाता है और इसकी एक अलग पहचान है।
0: तो श्रोताओ, ये थी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है?
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर।
1: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है चींटी।
1: हिंदी की पाठ्य पुस्तक पर आधारित इस कार्यक्रम को एक सुंदर गीत द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिसमें चींटी के परिश्रम और लगन के बारे में बताया गया है और संदेश दिया गया है कि हमें भी सफलता प्राप्त करने के लिए चींटियों की तरह लगनशील और परिश्रमी होना चाहिए।
0: सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। हर पल चलती जाती चींटी,
2: हर पल चलती जाती चींटी,
0: श्रम का राग सुनाती चींटी,
2: श्रम का राग सुनाती चींटी,
0: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
2: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
0: दाना चुनकर लाती चींटी,
2: दाना चुनकर लाती चींटी,
0: सचमुच कैसी कलाकार है,
2: सचमुच कैसी कलाकार है,
0: घर को खूब सजाती चींटी,
2: घर को खूब सजाती चींटी,
0: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
0: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
0: नहीं कभी घबराती चींटी,
2: नहीं कभी घबराती चींटी,
0: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
2: नन्हे नन्हे

0: पैर बढ़ाकर
1: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
0: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
1: काम बड़े करके दिखलाती,
0: काम बड़े करके दिखलाती,
1: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
0: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी।
1: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
0: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
1: हमको यही सिखाती चींटी,
0: हमको यही सिखाती चींटी।
1: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन। आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

तो सुना आपने, कैसा लगा ये गीत? अच्छा लगा ना? तो अब सुनते हैं चींटियों के बारे में कुछ और मजेदार बातें। चींटियां बहुत मेहनती होती हैं। वे समूह में यानी मिलजुल कर काम करती हैं। और तो और, आपको मालूम है अकेली चींटी अपने वजन से 50 गुना अधिक वजन उठा सकती है। इतना ही नहीं, आपने जरूर देखा होगा कि यदि कोई चींटी वजन नहीं उठा पाती तो दूसरी चींटियां तुरंत उसकी मदद के लिए आ जाती हैं। है ना मजेदार बात? तो क्या सिखाती हैं हमें ये चींटियां? हमें हमेशा मिलजुल कर रहना और मेहनत से काम करना चाहिए। अच्छा, अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा मालूम कीजिए कि चींटियां कितने रंगों की होती हैं। एक बात और, इस कविता में चींटी को कलाकार कहा गया है। जरा सोचिए और बड़ों से भी पूछिए कि उन्हें कलाकार क्यों कहा गया है। चींटी, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंग लिंगडो, संगीतकार विकास शंकर, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, कविता वाचन स्वर सोहम, वान्या और मनन, गायन स्वर चार्वी, नव्या और एंजल, निर्माण सहयोग चेतना शर्मा, निर्देशन तथा निर्माण अजीत होरो। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम चींटी। आशा है कि आपको जरूर पसंद आया होगा।

0: तो क्यों ना अपनाएं खुशियां, अपनाकर मनोदर्पण। कॉल करें 8448440632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: और आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है गांव की धरती।
2: कार्यक्रम में भारत के ग्राम्य जीवन के बारे में बताते हुए वहां के सरल जीवन और प्राकृतिक सौंदर्य का बखान किया गया है। कार्यक्रम में गाँव की हरियाली, खेतों और स्वच्छ पर्यावरण की भी चर्चा की गई है और संदेश दिया गया है कि हम भी अपने पर्यावरण का विशेष ध्यान रखें।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गांव की धरती, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है झरना।
1: ये कार्यक्रम भूगोल की एक पाठ पर उपलब्ध जानकारियों पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि झरनों का निर्माण कैसे होता है। इन जानकारियों को एक रोचक गीत और संवादों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

0: जादुई पिटारा, है ना मजेदार साथियों? जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है, तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।

0: बातों से बातों का सिलसिला,
1: आदत से इबादत का सिलसिला,
0: हमारी और आपकी मोहब्बत का सिलसिला।
2: मेरे इश्क पे हक हुआ तेरा।
1: यूं ही चलता रहे कयामत तक, तो सुनते रहिए निमार की सुरीली धड़कन आकाशवाणी।

0: दिलचस्प बातें, मधुर गीत सुनिएगा जरूर इस रविवार प्रातः 10:05 पर। फोन करें, गीत सुने।
1: मुझे कहना कहना तुझसे है कहना।
2: हमारे श्रोता कार्यक्रम में इस बार आपकी मुलाकात होगी सुशील कुमार शर्मा से।
3: जो सामने वाले के चेहरे पे जो मुस्कान दिखाई देती है, उस मुस्कान के लिए मैं सुबह से शाम तक काम करता रहता।
2: तो सुनना ना भूलिएगा हमारे श्रोता इस रविवार सुबह 7:00।

0: फोन करें, गीत सुने।
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है।
3: यही तो प्रेम है सर जी, आप लोगों के प्रसारण, आप लोगों के सुंदर वाणी से जो हम आकर्षित हो जाते हैं सर जी।

0: सुपरहिट संगीत से सजी है ये फिल्म।
1: तेरे चेहरे में वो जादू है।
0: धर्मात्मा इस बुधवार प्रातः 7:20 पर एक ही फिल्म से।
2: अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी के कार्यक्रम FM बैंड 101.2 MHz पर। ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

0: आवाजों की इस महफिल में आपका दिल से स्वागत है, जहां हर लफ्ज एक एहसास है और हर पल नई कहानी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त पलक और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युववाणी। साथियों, कार्यक्रम की शुरुआत से पहले चलिए जान लेते हैं हमारे आज के सामान्य ज्ञान के प्रश्न। हमारा आज का पहला प्रश्न है, भारत का पहला मोती उत्पादन क्लस्टर कौन सा शहर बनाया गया? वहीं दूसरा प्रश्न, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? साथियों, इन दोनों ही प्रश्नों के उत्तर हम हमेशा की तरह आपको बताएंगे हम कार्यक्रम के अंत में। तब तक बने रहिए और सुनते रहिए कार्यक्रम युववाणी। साथियों, 12 जून यानी आज के दिन मुख्य रूप से बाल श्रम के विरुद्ध दिवस मनाया जाता है। तो आइए इस विषय पर आपको सुनाते हैं एडवोकेट पन्ना गुप्ता जी के विचार।
1: आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं एडवोकेट पन्नालाल गुप्ता आपके समक्ष बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986 के संबंध में कुछ चर्चा करना चाहता हूं, जहां हम चर्चा करेंगे 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे जिनसे हम किसी भी प्रकार का काम करवाते हैं या मजदूरी करवाते हैं, उसके संबंध में क्या प्रावधान इस एक्ट में दिए गए हैं, जिसे हम सबके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। श्रोताओं, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से यदि कोई मजदूरी करवाता है, मजदूरी से तात्पर्य यह होता है कि कोई भी काम करवाता है जिससे हम ये कहें कि कोई भी खतरनाक काम, जैसे खदानों में काम करवाना, अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ जहां बनते हों वहां पे काम करवाना, ऐसी जगह पे यदि बच्चों से काम करवाया जाता है तो उसके तहत इस अधिनियम में धारा 14 में सजा का प्रावधान दिया गया है। धारा 3 में उनके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध होता है, जिसमें सजा के रूप में 6 महीने से लेके 2 साल तक की सज़ा उन्हें होगी और 20,000 से 50,000 रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। श्रोताओं, यहाँ जानने के लिए हमारे पास 14 वर्ष से 18 वर्ष की उम्र तक जो बच्चे होते हैं उनसे हम किसी भी प्रकार का मजदूरी करवाते हैं। मजदूरी हम परिवार के अपनी ही दुकान में, अपने प्रतिष्ठानों में उन बच्चों से काम करवा सकते हैं, 14 वर्ष से 18 वर्ष की उम्र वाले बच्चे जो होते हैं। 14 वर्ष से 18 वर्ष की उम्र के बच्चे जो होते हैं उनसे खतरनाक जो काम होते हैं जिससे उनके जीवन में खतरा पैदा होता है, जैसे खदानों में काम करवाना और जहां फटाके की फैक्ट्रियां होती वहां पे काम करवाना, ऐसे कुछ चिन्हित जगह हैं जहां उनका जीवन सुरक्षित नहीं होता है, वहां पर काम करवाना

0: उसके लिए पूर्णतः प्रतिबंधित है। और यहाँ पर एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको कि 14 साल से 18 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए यदि कोई काम करवाता है तो उसे 3 घंटे लगातार काम करवाना ही निश्चित किया गया है, और 3 घंटे से 6 घंटे की अवधि में ही उनसे काम करवाना है, और लगातार काम नहीं करवाना है, 3 घंटे के अंतराल के बाद फिर उनसे काम करवा सकते हैं आप, पर अपने ही प्रतिष्ठानों में, जो अपने घर के प्रतिष्ठान है वहाँ पर काम बच्चे कर सकते हैं। आजकल देखा गया है कि बच्चों को ट्रैकिंग के माध्यम से बच्चों को ले जाया जाता है, उनसे बंधुआ मजदूर के रूप में काम करवाया जाता है। बंधुआ मजदूर के रूप में यदि बच्चों से काम करवाते हैं आप और उनकी उम्र 14 वर्ष से कम है तो आप ये मान लें कि BNS में उसकी धारा 143 के अंतर्गत उस पर गंभीर अपराध पंजीबद्ध होता है, जिसमें 7 वर्ष से लेके आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान दिया गया है। और इसी तरह बच्चों के साथ मारपीट करना और ज़बरदस्ती उनको लेके जाना, तो उसमें भी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत 75 की धारा के अंतर्गत भी अपराध पंजीबद्ध होता है। और इसी तरह हम ये देखें कि बाल श्रम हमारे समाज में एक कलंक के रूप में है, जिसकी शिकायत हम अपने नज़दीकी थाना क्षेत्र में कर सकते हैं या 1098 पर इसकी शिकायत कर सकते हैं। ऑनलाइन में यदि आपको शिकायत करना है तो एक पोर्टल है, पेंसिल के नाम से पोर्टल है, उसमें भी आप शिकायत कर सकते हैं। और हर ज़िले में एक बाल कल्याण समिति होती है जो बच्चों की सुरक्षा संरक्षा के लिए बनी हुई है, वहाँ भी आप जाके इसकी शिकायत कर सकते हैं।
1: किसी शायर ने क्या खूब कहा है, वो दिन गुजरे कि जब ये जिंदगानी एक कहानी थी, मुझे अब हर कहानी जिंदगी मालूम होती है। साथियों, कहानी एक ऐसा शब्द है जो सुनने में भले छोटा लगता हो, लेकिन इसके अंदर भावना, अनुभव, कल्पना और जीवन के अनगिनत रंग समाए हुए हैं। मानव सभ्यता के विकास के साथ ही कहानी कहने और सुनने की परंपरा विकसित हुई है। जब लिखने की कला का विकास नहीं हुआ था, तब लोग अपने अनुभव, ज्ञान और परंपराओं को कहानी के माध्यम से एक दूसरे तक पहुंचाते थे। गांवों की चौपालों में, घरों के आंगन में, पेड़ों की छांव में और रात के सन्नाटे में बुजुर्ग बच्चों को कहानियां सुनाते थे। ये कहानियां केवल मनोरंजन का साधन नहीं थी, बल्कि जीवन को समझने और समाज के मूल्यों को सीखने का माध्यम भी थी। कहानी मनुष्य की कल्पना शक्ति को विकसित करती है और उसे एक नई दुनिया में ले जाती है, जहां हम अपने सपने, भावनाओं और विचारों को विस्तार दे सकते हैं। यही कारण है कि कहानी को मानव जीवन का दर्पण कहा जाता है, क्योंकि इसमें समाज, संस्कृति और जीवन की सच्चाई का प्रतिबिंब होता है।

साथियों, कहानी का महत्व शिक्षा और संस्कारों के क्षेत्र में भी बहुत अधिक है। बचपन से ही बच्चों को कहानियों के माध्यम से नैतिकता, ईमानदारी, परिश्रम, साहस, मानवता जैसे गुणों की शिक्षा दी जाती थी। कहानी का महत्व केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं है, ये समाज, संस्कृति और परंपराओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचाने का माध्यम है। कहानियों के माध्यम से हम इतिहास को जान सकते हैं, महान व्यक्तियों के जीवन से प्रेरणा ले सकते हैं। एक अच्छी कहानी पाठक या श्रोता को सोचने, समझने और सीखने का अवसर प्रदान करती है। कहानी केवल शब्दों का समूह नहीं है, बल्कि ये कल्पना, अनुभव और जीवन के संदेशों को एक सूत्र में पिरोने की कला है। साथियों, यूं तो हम सभी अपना जीवन जीते हैं, पर हम कब किसी के जीवन की कहानी का हिस्सा बन जाते हैं, ये हमें खुद भी पता नहीं होता। अब देखिए ना, अभी जो हम कर रहे हैं, कुछ समय बाद ये हमारे जीवन का किस्सा बन जाएगा और आगे चलकर एक कहानी के रूप में हम अपने जीवन के छोटे बड़े पलों को किसी को सुना रहे होंगे।

मनुष्य के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन जाती है। ये हमारे अनुभव को अभिव्यक्त करने और दूसरों से जुड़ने का एक सशक्त माध्यम है। कहानी हमें भावनात्मक रूप से जोड़ती है और जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा देती है।

साथियों, हर व्यक्ति के जीवन में अनेक कहानियाँ छिपी होती है। किसी की सफलता की कहानी, किसी के संघर्ष की कहानी, तो किसी के सपनों की कहानी। यही कारण है कि कहानी

आधुनिक युग में विज्ञान और तकनीक ने भले ही जीवन को बदल दिया हो, लेकिन कहानी का महत्व आज भी उतना ही बना हुआ है। पहले कहानियाँ मौखिक रूप से सुनाई जाती थी, फिर वे पुस्तकों में लिखी जाने लगी और आज डिजिटल माध्यमों से रेडियो, टेलीविजन, फिल्मों, वेब सीरीज और सोशल मीडिया के जरिए दुनिया भर के लोगों तक पहुँच रही है। माध्यम बदल गए हैं, लेकिन कहानी की आत्मा वही है, मनुष्य को जोड़ना, प्रेरित करना और मनोरंजन करना। आज भी जब भी कोई अच्छी कहानी हमारे सामने आती है तो हम उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाते।

कहानी हमें अतीत से जोड़ती है, वर्तमान को समझने में मदद करती है और भविष्य के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलती है। इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि कहानी केवल साहित्य की एक विधा नहीं बल्कि मानव की एक अनमोल धरोहर है।

साथियों, ये तो था हमारा आज का क्रम शीर्षक संगीत, जिसका आज का शीर्षक था कहानी। आप सभी को कैसा लगा हमें पत्रों और ईमेल्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। साथियों, आपका एक पत्र या ईमेल हम प्रस्तुतकर्ता की सिर्फ एक सराहना नहीं करता, बल्कि और भी अच्छे अच्छे कार्यक्रम आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए हमें प्रेरित करता है। चलिए साथियों, अब जल्दी से जान लेते हैं हमारे कार्यक्रम की शुरुआत में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न था, भारत का पहला मोती उत्पाद क्लस्टर कौन सा शहर बनाया गया, जिसका उत्तर है हजारीबाग। दूसरा प्रश्न, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, जिसका उत्तर है गृह मंत्रालय। साथियों, आपकी रेडियो दोस्त पलक को दे इजाजत, कार्यक्रम को समाप्त करने की। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। शाम के ठीक 7 बजने को हैं। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से नए अवसर खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार अमरनाथ यात्रा करने वाले भक्तों की सुरक्षा और सुगम तीर्थ यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ और सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक शामिल हुए। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जमीन के बदले आम आदमी को उचित कीमत दे रही है और जमीन सौंपने की प्रक्रिया जारी है। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। अमेरिका के साथ प्रस्तावित समझौते पर ईरान ने अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बातचीत में जल्द ही सफलता मिल सकती है। ईरान में उच्च स्तरीय वार्ताएं आगे बढ़ने के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर सैन्य हमले रद्द कर दिए हैं। इस बीच विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मिक्स को तलब किया है। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई अस्वीकार्य है। इसी तरह के एक हमले में जहाज पर तैनात 3 भारतीय मारे गए। दक्षिण कोरिया में सियोल की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को आज 30 वर्ष की जेल की सजा सुनाई। अदालत ने उन्हें उत्तर कोरिया के साथ तनाव बढ़ाने के लिए ड्रोन घुसपैठ का आदेश देने और दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ लागू करने को उचित ठहराने का दोषी पाया। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि मोदी सरकार भारत की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए प्रतिबद्ध है। आकाशवाणी समाचार के साथ एक विशेष साक्षात्कार में उन्होंने ये बात कही।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस दिशा में जिस तरह से काम हुआ है और जो परिवर्तन और प्रभाव उसका दिखाई देता है, मैं जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूँ, जब भारत के विकसित होने का इतिहास लिखा जाएगा तब भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का दौर उसके रूप में परिभाषित और चिन्हित किया जाएगा।
0: भारत की बौद्धिक और सभ्यतागत विरासत की सुरक्षा की दिशा में ज्ञान भारतम मिशन को ऐतिहासिक पहल बताते हुए श्री शेखावत ने कहा कि इस मिशन के तहत सरकार ने राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण शुरू किया है। ये साक्षात्कार अब से कुछ देर में 7:10 पर हमारी विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के विकास के जनकल्याण के में प्रसारित

किया जाएगा। भारत एआई मिशन ने आज वारिया नामक एक वीडियो मॉडल शुरू किया है। इससे कम खर्च पर प्रासंगिक और अत्याधुनिक वीडियो बनाए जा सकेंगे। पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: तेरे चेहरे में वो जादू है।
1: धर्मात्मा इस बुधवार प्रातः 7:20 पर एक ही फिल्म से।

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: फोन करें, गीत सुने।
2: मुझे कुछ कहना है,
3: मुझे भी कुछ कहना है।
4: यही तो प्रेम है सर जी, आप लोगों के प्रसारण, आप लोगों के सुंदर वाणी से जो हम आकर्षित हो जाते हैं सर जी।

दिलचस्प बातें, मधुर गीत सुनिएगा जरूर इस रविवार प्रातः 10:05 पर। फोन करें, गीत सुने। मुझे क्या?

0: सुपरहिट संगीत से सजी है ये फिल्म।
1: तेरे चेहरे में वो जादू है।
0: धर्मात्मा इस बुधवार प्रातः 7:20 पर एक ही फिल्म से।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: हमारे श्रोता कार्यक्रम में इस बार आपकी मुलाकात होगी सुशील कुमार शर्मा से।
2: जो सामने वाले के चेहरे पे जो मुस्कान दिखाई देती है उस मुस्कान के लिए मैं सुबह से शाम तक काम करता रहता।
1: तो सुनना ना भूलिएगा हमारे श्रोता इस रविवार सुबह 7 बजे।

0: FM बैंड 101.2 MHz पर आपने ट्यून किया है निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।
1: कुछ सोच के बोला होगा तुमने,
0: सोच कर ही बोला है कि सुनते रहे निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा, प्यार हो जाएगा।
2: नए जमाने की नई तस्वीर अब छत पर लगे।
3: चार।
4: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
6: हर घर सूर्य घर।
7: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। देश में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इंदौर में आज से दो दिन का ब्रिक्स कृषि मंत्रियों का सम्मेलन हुआ शुरू। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यसभा उम्मीदवारी को लेकर कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका को किया खारिज। और केंद्र सरकार के सफल 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रदेश में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं और पूरे देश में विकास का परिदृश्य बदल रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है और ये अलग अलग क्षेत्रों में साफ तौर पर दिखाई देता है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य किया है, जिसके सकारात्मक परिणाम विभिन्न क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह को सक्रिय सहयोग देकर महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की नीतियां सम्मान, अवसर और सशक्तिकरण के सिद्धांतों पर आधारित है। इन प्रयासों से अब महिलाएं अपनी क्षमताओं को पहचानते हुए राष्ट्र निर्माण में अधिक प्रभावी भूमिका निभा रही है। श्री मोदी ने विज्ञान, अंतरिक्ष और नवाचार जैसे क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की बढ़ती उपलब्धियों की सराहना की। एक संस्कृत श्लोक का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नारी शक्ति राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि देश की माताएं, बहनें और बेटियां हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर भारत का गौरव बढ़ा रही है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: प्रदेश के इंदौर में आज से दो दिन का ब्रिक्स कृषि मंत्रियों का सम्मेलन शुरू हो गया है। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में खेती में महिलाओं, खासकर माताओं और बहनों की भूमिका पर फोकस किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की भागीदारी के बिना खेती की कल्पना भी नहीं की जा सकती।
2: महिलाओं की भागीदारी और कैसी बढ़े, युवा कैसे खेती की तरफ आकर्षित हो और नई तकनीक का इस्तेमाल करके उत्पादन कैसे बढ़ाएं और किसानों की आजीविका कैसे सुनिश्चित करें, आय और बढ़े। एक, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, मतलब भरपूर अन्न लोगों को भोजन के लिए प्राप्त हो और अन्न भी ऐसा हो पौष्टिक आहार।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट सम्मेलन का संयुक्त रूप से उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य भारत की कुछ बेहतरीन डीपटेक प्रतिभाओं को भारत के बाहर प्रदर्शित करना है, जिन्हें शिक्षा मंत्रालय द्वारा चुना गया है। उन्होंने बताया कि 1200 से अधिक स्टार्टअप्स में से 13 क्षेत्रों में 120 से अधिक डीपटेक स्टार्टअप्स का चयन किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जम्मू और कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ और सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के महानिदेशक उपस्थित थे। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका को खारिज कर दिया है।

0: ये याचिका उन्होंने मध्य प्रदेश से अपनी राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के खिलाफ दायर की थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि वो चुनाव अधिकारी द्वारा नामांकन रद्द किए जाने के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। चुनाव अधिकारी ने तेलंगाना में एक आपराधिक मामले की कथित जानकारी छिपाने के आरोप में मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त किया था। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सफल 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रदेश में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। बीते 12 वर्षों में देश ने विकास, सुशासन, गरीब कल्याण, आत्मनिर्भरता और जनसेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। इन उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने और पात्र हितग्राहियों को शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने के उद्देश्य से जन कल्याण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। झाबुआ और खंडवा जिलों में भी सभी विकासखंड और नगरीय निकाय मुख्यालयों पर आज से जन कल्याण शिविर शुरू किए गए हैं। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA ने 21 जून को होने वाली NEET UG पुनर्परीक्षा की परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक कर दिया है। एजेंसी ने कहा है कि NTA ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि NEET UG परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित की जाए। आज बाल श्रम के विरुद्ध विश्व दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस हर बच्चे की शिक्षा, सुरक्षा और सम्मानजनक बचपन के अधिकार की याद दिलाता है। भारत में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से काम कराना कानूनन प्रतिबंधित है। विशेषज्ञों का मानना है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सामाजिक जागरूकता ही बाल श्रम उन्मूलन का सबसे कारगर रास्ता है। प्रदेश के दक्षिणी जिलों में 17 से 18 जून के बीच मॉनसून दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग के अनुसार मौसम की परिस्थितियां अनुकूल रहीं तो अगले 10 से 15 दिनों में मॉनसून पूरे राज्य को कवर कर लेगा। प्रदेश में प्री मॉनसून गतिविधियां लगातार बनी हुई हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान मुरैना, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर जिलों में ओलावृष्टि की संभावना जताई है। इसके अलावा भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर संभागों के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश के आसार हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में कलेक्टर ने आज एक बैठक में MSME उद्योगों के संवर्धन, जिला स्तर पर आने वाली कठिनाइयां और उनके निराकरण आदि पर चर्चा की। राजगढ़ जिले में जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत ग्रामीणों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया। शहडोल जिले में 14 जून को ऑनलाइन योग सत्र का आयोजन किया जा रहा है। सागर जिले में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का आयोजन 28 से 30 जून 2026 तक किया जाएगा। महाराजा छत्रसाल की जयंती के अवसर पर छतरपुर जिले में लोक गायन, लोकनाट्य और संगीत पर केंद्रित विरासत महोत्सव का आयोजन 17 और 18 जून को किया जा रहा है। गुना कलेक्टर ने आकाशवाणी के भ्रमण के दौरान कहा कि आकाशवाणी अपनी विश्वसनीयता, सटीकता और जन सरोकारों से जुड़े प्रसारणों के कारण लोगों के बीच विशेष स्थान बनाए हुए है। शहडोल संभागायुक्त ने वीरपुर से शिवपुर तक रेलवे लाइन का कार्य शीघ्रता से पूरा किए जाने के निर्देश दिए हैं। जबलपुर में अग्नि सुरक्षा, सुरक्षित निकासी मार्ग और लाइसेंस संबंधी नियमों के उल्लंघन पर नगर निगम ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने 24वें स्थापना दिवस के अवसर पर बैतूल वृत्त कार्यालय में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया। उज्जैन संभागायुक्त आशीष सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंदसौर जिले में मॉनसून और संभावित बाढ़ से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का आज नई दिल्ली के एक अस्पताल में निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। श्री राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे। जसपाल राणा ने मनु भाकर को निशानेबाजी में प्रशिक्षित किया और वर्ष 2024 के पेरिस ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीतने में मदद की। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी द्वितीय वर्ष 2026 का परीक्षा परिणाम आज घोषित कर दिया गया। परीक्षार्थी अपना परीक्षा परिणाम मंडल की आधिकारिक वेबसाइट mpbse.mponline.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। दीजिए इजाजत, नमस्कार।

खेती गृहस्थी कार्यक्रम लेना आज आपका साथ आपकी बहन सीमा। कार्यक्रम सुनने वाला सभी किसान भाई बहन नखर राम राम। भाई बहन हूं, हमारा देश को आवना वालों भविष्य छे हमारा नौनिहाल। राष्ट्र की अमूल्य धरोहर छे बच्चा न देश का भविष्य का निर्माता। इनका विकास सीच परिवार समाज न राष्ट्र की प्रगति छे। देश का हर बच्चा का शिक्षा स्वास्थ्य न सुरक्षा का साथ खुशहाल बचपन को अधिकार प्राप्त छे। परंतु गरीबी अशिक्षा का चलता आज भी विश्व का कई देश नमा लाखों बच्चा बाल श्रम करना का मजबूर छे। ये समस्या न केवल बच्चा न का अधिकार न को हनन करज बल्कि समाज राष्ट्र का विकास में भी बाधा उत्पन्न करज। बाल श्रमिक न का प्रति लोग न का जागरूक करना का उद्देश्य से हर साल आज का दिन यानी 12 जून का विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाए। बाल श्रम में बच्चा न का उनकी आयु का अनुसार शिक्षा न विकास का अवसर से दूर करी न मजदूरी कराई जाए। जब बच्चा स्कूल जाने का बजाय कारखाना होटल ढाबा खेत दुकान पर काम करता देखे जाए जिकी बाल श्रम का अंतर्गत आवाज। बच्चा न का शारीरिक मानसिक न भावनात्मक विकास पर नकारात्मक प्रभाव डाला जा। भाई बहनों, बाल श्रम का पीछे कई सामाजिक न आर्थिक कारण भी छे। गरीबी अशिक्षा बेरोजगारी जनसंख्या वृद्धि सामाजिक असमानता जैसा कई कारण छे। बाल श्रम से बच्चा न का जीवन पर गहरो प्रभाव पड़े। बच्चा शिक्षा से दूर हुई जाए। खतरनाक कार्यस्थल पर दुर्घटना न बीमारी न को खतरो बढ़ी जाए। बच्चा को आत्मविश्वास न व्यक्तित्व प्रभावित हो जाए। शासन द्वारा बाल श्रम रोकना का लेना कई कानून न योजना न भी चलाई जा रही। बाल श्रम अधिनियम का अंतर्गत बच्चा नसी कार्य कराण अपराध माने गए। एक अलावा शिक्षा का अधिकार अधिनियम का अंतर्गत 6 से 14 साल तक का सभी बच्चा नखा निशुल्क न अनिवार्य शिक्षा को अधिकार प्राप्त छे। भाई बहनों, बच्चा नका अधिकार न उनका भविष्य के प्रति हम सब की जिम्मेदारी बनज कि हम हर बच्चा का शिक्षा सुरक्षा न सम्मानजनक जीवन को अधिकार देवा। बाल श्रम को उन्मूलन केवल शासन को नहीं बल्कि पूरा समाज को दायित्व छे। किसी भी बच्चा का बचपन का छीनना नहीं देवा। बच्चा न का मजदूरी बिल्कुल नहीं करना देवा। शिक्षा न विकास का अवसर देवाड़ा। एक सशक्त समृद्ध न विकसित राष्ट्र का निर्माण करना हम सब का बाल श्रम को विरोध करना ऐसा बच्चा न का भविष्य का लेना आगा उन होएगा। उनकी आर्थिक न सामाजिक मदद हम का करना होगा। राष्ट्र की उन्नति का लेना इनका एक जिम्मेदार नागरिक बनाऊन हो हम सबको कर्तव्य छे। भाई बहनों, इतो थी हमारी ना आपकी कुछ जरूरी बातचीत ना हो।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: भाई बहनों, अब समय छे आज का प्रश्न को। प्रश्न छे, किसान भाई बहनों का द्वारा कपास फसल लगाना की चौफुली पद्धति काई छे? प्रश्न एक बार फिर से सुनी लो, किसान भाई बहनों का द्वारा कपास फसल लगाना की चौफुली पद्धति काई छे? इना प्रश्न का उत्तर हम आपको बतावांगा कार्यक्रम का आखिर में। सुनता रहो हमारा साथ पूरा कार्यक्रम। भाई बहनों, आय न फसल उत्पादन उर्वरक पर निर्भर करें। नाइट्रोजन फसल का लेना सबसे आवश्यक पोषक तत्व नमसी एक छे। यूरिया का उपयोग सी एक ही पूर्ति करी जाए। सामान्य यूरिया को एक बड़ो हिस्सो वाष्पीकरण न पानी का साथ बहना का कारण नष्ट हो जाए, जेका सी फसल न का पूरो लाभ नहीं मिले पाउतो। इन समस्या का समाधान का लेना नीम कोटेड यूरिया विकसित करे गए, जेमा की यूरिया का दाना न पर नीम तेल या नीम आधारित पदार्थ की परत चढ़ाई जाए, जेकासी नाइट्रोजन को उत्सर्जन धीरे धीरे हो न पौधा न का लंबा समय तक पोषण मिल सका। नीम कोटेड यूरिया का प्रयोग से फसल का अधिक पोषण मिले, फसल की वृद्धि अच्छी हो जाए। नीम कोटेड यूरिया में नाइट्रोजन धीरे धीरे पौधा को उपलब्ध हो, जेकासी बार बार यूरिया डालना की आवश्यकता कम हो जाए। एकासी किसान भाई बहनों का कम मात्रा में उर्वरक को उपयोग करना से उत्पादन अच्छो प्राप्त हो। नीम कोटेड यूरिया का उपयोग से पौधा लंबा समय तक संतुलित मात्रा में नाइट्रोजन प्राप्त करे, न पौधा न की जड़ न मजबूत बनी जाए, न पत्ती न हरी रह। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया अच्छी हो जाए, जिका कारण धान, मक्का, गन्ना ऐसी कई फसल की उपज में वृद्धि देखी गई। भाई बहनों, सामान्य यूरिया का अत्यधिक प्रयोग से मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित हो। नीम कोटेड यूरिया का नाइट्रोजन का संतुलित उपयोग का बढ़ावा देना से मिट्टी की उर्वरता लंबा समय तक रहे। ये मिट्टी का सूक्ष्म जीव पर भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालतो। नीम में प्राकृतिक रूप से ऐसा गुण रहे जे कि कई प्रकार का हानिकारक जीव न की गतिविधि न का कम करे। नीम कोटेड यूरिया का उपयोग से पौधा न का संतुलित पोषण मिलत, जेका से अनाज का आकार, दाना को भराव न फसल की गुणवत्ता अच्छी हो जाए। अच्छा रंग न आकार का कारण अच्छो बाजार मूल्य प्राप्त होने की संभावना न बढ़ी जाए।

0: साथ ही उर्वरक की लागत कम हो जाए न उत्पादन बढ़े। किसान भाई बहन का कृषि लाभ बढ़ोतरी हो। शासन द्वारा यूरिया की उपयोगिता बढ़ावना का लेना नीम कोटेड यूरिया का बढ़ावा दियो गए, जेका सी कृषि क्षेत्र में उर्वरक उपयोग की उपयोगिता बढ़ी जाए न किसान भाई बहन का अच्छो लाभ मिल सका। भाई बहन हूँ कुछ बात न को एमा विशेष ध्यान रखा, मिट्टी परीक्षण का आधार पर इना उर्वरक को उपयोग करा, अनुशंसित मात्रा से अधिक उपयोग नहीं करा, सिंचाई न पोषक तत्व न को संतुलित प्रबंधन करा, उर्वरक का उचित समय पर फसल की आवश्यकता अनुसार देवा, न कृषि वैज्ञानिक न की सलाह को उपयोग करी न एको प्रयोग करा। भाई बहनों हम कही सकान कि नीम कोटेड यूरिया आधुनिक कृषि कलेनो उपयोगी न प्रभावी उर्वरक छे। इन नाइट्रोजन उपयोग दक्षता का बढ़ावज, उर्वरक की बर्बादी का कम करी न फसल उत्पादन न गुणवत्ता में सुधार लावज, पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान देज। वर्तमान समय में टिकाऊ कृषि न संसाधन का अच्छा उपयोग का लेना नीम कोटेड यूरिया का उपयोग बहुत लाभकारी माने गए। इनका वैज्ञानिक न संतुलित उपयोग से कृषि उत्पादन का बढ़ावो न मिट्टी न पर्यावरण की सुरक्षा हम कर सका। भाई बहनों इतो थी आपकी न हमारी आज की बात। न भाई बहनों अब चलान जानकारी की तरफ। नाओ अब सुना भेंटवार्ता विषय छे जायद न खरीफ फसल में कीट प्रबंधन। जानकारी दई राज भगवंत राव मंडलोई कृषि महाविद्यालय का कीट वैज्ञानिक डॉक्टर प्रद्युम्न सिंह। आपसी बातचीत करी रेज बैंड माधुरी सेन।
1: किसान भाइयों बहनों जायद खरीफ फसलों में कीट प्रबंधन, इस विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ है भगवंत राव मंडलोई कृषि महाविद्यालय खंडवा के कीट वैज्ञानिक डॉक्टर प्रद्युम्न सिंह। प्रद्युम्न जी स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार।
2: नमस्कार किसान भाइयों।
1: प्रद्युम्न जी मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि हमारे निमाड़ क्षेत्र की प्रमुख जायद और खरीफ फसलें कौन कौन सी हैं?
2: जहाँ तक निमाड़ क्षेत्र की खरीफ फसलों के बारे में बात करें तो यहाँ पर मूंग, उड़द, लौकी, तोरई ये तो वो फसलें हैं जो मुख्य रूप से किसान भाई उगाते ही हैं। साथ में जायद के बाद जो हमारा मौसम शुरू होने वाला है वो खरीफ का शुरू होने वाला है, जिसमें कपास की प्रमुख फसल है यहाँ, जिसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो यही कुछ फसलें हैं जिनके बारे में हम विस्तार से आगे चर्चा करेंगे।
1: इन फसलों में प्रमुख समस्याएं क्या क्या आती हैं?
2: सबसे पहले हम बात करते हैं मूंग की फसल की। किसान भाई इस मूंग की फसल को जायद में लगाते हैं। ये एक प्रमुख दलहनी फसल है जिसे किसान भाई बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर लगाते हैं। इस फसल में कीट भी आते हैं और रोग भी आता है, दोनों इसके लिए एक प्रमुख समस्या है। मूंग की फसल के लिए जो प्रमुख समस्या है वो मोजेक वायरस है। मोजेक वायरस एक कीट है जिसे हम व्हाइट फ्लाई या सफ़ेद मक्खी कहते हैं, जिसके द्वारा आता है। ये जो सफ़ेद मक्खी है मक्खी की तरह बड़ी न होकर बहुत छोटे आकार की होती है। इस मक्खी का काम उतना नुकसान करना नहीं है जितना ये वायरस का संचरण करके करती है। ये मक्खी एक पौधे से रस चूसती है, दूसरे पौधे में पहुंचाती है। इस तरह से जब एक पौधा पीला पड़ना शुरू होता है उसकी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और जैसे जैसे इस मक्खी की संख्या बढ़ती है और मक्खी इस वायरस को संक्रमण करके दूसरे पौधों तक पहुंचाती है तो धीरे धीरे करके हम देखते हैं कि पूरा खेत पीला पड़ जाता है। तो ये वायरस की समस्या मूंग की और उड़द की फसलों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो किसान भाई इसके लिए सबसे पहले उपाय ये करेंगे तो इस तरह के पौधों को प्रथम दृष्टया दिखाई दें, उनको उखाड़ कर गड्ढे में गाड़ दें। कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक आप उस पौधे को नष्ट नहीं करेंगे तब तक वायरस आपका जीवित रहेगा और वो मक्खी जो इस वायरस का संचरण करती है वो दूसरे पौधों तक इस रोग को फैलाती रहेगी। ऐसे पौधों को नष्ट करने के बाद किसान भाई कीटनाशकों का उपयोग करके, जिसमें रस चूसक कीट है, जिसमें एसीटामपिरेट 20 SP का कीटनाशक आता है जो पाउडर फॉर्म में होता है, उसका किसान भाई 2 ग्राम मात्रा प्रति 3 लीटर पानी में, या ये हम कहें कि 0.66 यानी 0.66 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर किसान भाई यदि छिड़काव करें तो सफेद मक्खी के नियंत्रण को किया जा सकता है, उसको रोका जा सकता है। इसके अलावा दूसरा कीटनाशक इमिडाक्लोप्रिड है, 17.8 SL इसका संरूपण है। इस कीटनाशक के द्वारा भी इस रस चूसक मक्खी का नियंत्रण किया जा सकता है। इसलिए इन कीटनाशकों का उपयोग करके सफेद मक्खी को हम रोक लें तो मूंग की फसल में लगने वाले इस वायरस रोग को हम रोक सकते हैं। इसके अलावा कुछ फली छेदक कीट भी इसमें लगते हैं, चूंकि ये दलहनी फसल है इसमें फलियां लगती हैं, तो जो इल्ली खाने वाले कीट हैं उनके लिए कुछ कीटनाशक जो बाजार में उपलब्ध हैं, प्रोफेनोफॉस, क्लोरपाइरीफॉस, इस तरह के जो हमारे कीटनाशक हैं, या कुछ नए कीटनाशक जिसमें क्लोर एंट्रानिलीप्रोल ये कीटनाशक हैं, इनकी मात्रा प्रोफेनोफॉस की मात्रा 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर किसान भाई छिड़काव कर सकते हैं। क्लोर एंट्रानिलीप्रोल चूंकि ये नए कीटनाशक हैं ये बहुत खतरनाक हैं, इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इनकी

0: मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर यदि किसान वही छिड़काव करें तो फसल में लगने वाली किसी भी प्रकार की इल्ली होंगी उनका प्रभावी तरीके से नियंत्रण किया जा सकता है। पर इन कीटनाशकों का छिड़काव करने से पहले किसान भाई इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पुराने कीटनाशकों को या कीटनाशकों को मिलाकर छिड़काव कतई न करें, क्योंकि हर कीटनाशक का एक अपना विशेष प्रभाव होता है। बार बार कीटनाशकों को मिलाकर रिपीट न करें, क्योंकि एक ही प्रकार के कीटनाशक रिपीट करने से कीट में प्रतिरोधकता उत्पन्न होती है और वो कीट उस दवाई के प्रति अपनी प्रतिरोधकता उत्पन्न कर लेता है, जिससे आपको अगली बार और अधिक मात्रा में आपको दवाई खर्च करनी पड़ेगी। तो ये मूंग की फसल में भी आप नियंत्रण कर सकते हैं, उड़द की फसल में भी नियंत्रण कर सकते हैं, और जो भी मैंने यहाँ पर आपको जो कीटनाशक बताए उससे रस चूसक कीट किसी भी फसल में आप इन दवाइयों का उपयोग करके आप उनको नियंत्रित कर सकते हैं। दूसरी फसल हम बात करते हैं लौकी, तोरई, टिंडा, करेला, ये जितनी भी हैं ये सब कुकरबिट्स में आती हैं, यानी बेलवर्गीय कद्दूवर्गीय सब्जियां कहलाती हैं। इनकी एक प्रमुख समस्या है फल मक्खी। हमने देखा है कि इनके अंदर कई बार इल्लियां निकलती हैं। ये एक फल मक्खी होती है जो इन बेलवर्गीय सब्जियां हैं इनके अंदर अपना अंडरोपा गढ़ाकर अंडे देती है, जिससे उसके अंदर इल्ली निकलती है जो फल को खराब करती है और इस प्रकार के फल बाजार में बेचने योग्य नहीं रहते। तो किसान भाई इसके लिए रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग करने से पहले सबसे पहले सोचें इनका हम गैर रासायनिक कीटनाशक के द्वारा हम कैसे नियंत्रण कर सकते हैं। तो इसके लिए किसान भाई मिथाइल यूजेनोल ड्रॉप बाजार में उपलब्ध है। आप आजकल ऑनलाइन मार्केट में भी आप उसको ढूंढकर उन मिथाइल यूजेनोल के ट्रैप को लगा सकते हैं, आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, जिससे आपका रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग किए बिना इस फ्रूट फ्लाई या कहें फल मक्खी को आप नियंत्रित कर सकते हैं और इन फलों को इस फल मक्खी के प्रकोप से बचा सकते हैं। यदि आप रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करेंगे तो किसान भाई यह सब्जियां जो भी हैं बाजार में आएंगी और हानिकारक फल सब्जियों को हम लोग उपयोग करेंगे जो भविष्य में कैंसर उत्पन्न होने वाले कारण पैदा करती हैं, जिसके कारण से मानव स्वास्थ्य प्रभावित होता है। इसलिए मेरा विशेष निवेदन है कि रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग करने से पहले आप कुछ गैर रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग करें या कुछ बाजार में कुछ फफूंदे जो कीटनाशकों को मारने के लिए जिनमें ब्यूवेरिया वेसियाना बात आती है कि किसान भाई कहते हैं कि हमें मिलेगी कहाँ बाजार में। इसके लिए आपको जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हर जगह उपलब्ध है ये ब्यूवेरिया वेसियाना एक ऐसी फफूंद है जो किसी भी कीट में शरीर पे जाकर वृद्धि करती है और इस प्रकार के कीटनाशकों के शरीर के संपर्क में आते ही ये ब्यूवेरिया वेसियाना, निमोरिया रिली या और भी कई प्रकार के फंगस हैं ये कीटनाशक के शरीर पर वृद्धि करके उस कीटनाशक को रोगग्रस्त करके उनको मार देते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि रासायनिक कीटनाशक जिनका किसान भाई हमारे इस निर्माण क्षेत्र में अत्यधिक मात्रा में उपयोग करते हैं, जैसे मिर्च की फसल ले तो मिर्च में अत्यधिक कीटनाशक का छिड़काव होता है जो कि स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि रासायनिक कीटनाशकों के प्रयोग से जितना बचा जाए उतना अच्छा है, क्योंकि ये भविष्य में बहुत सारी समस्याओं को जन्म देने वाले हैं।
1: बहुत ही अच्छी जानकारी प्रद्युम्न जी। और मेरा अगला प्रश्न आपसे है कि इनसे बचाव का क्या उपाय है?
0: बचाव के लिए जैसे तो मैंने अभी कहा कि गैर रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग करके भी हम इनसे बच सकते हैं
1: जी।
0: जब भी किसान भाइयों को प्रशिक्षण की बात आती है या आकाशवाणी के द्वारा दूरदर्शन के द्वारा, मैंने हमेशा किसान भाइयों से कहा है कि लाइट ट्रैप जिसको कहते हैं प्रकाश प्रपंच एक बहुत ही उपयोगी उपकरण है जिसको किसान भाई अपने खेतों पर लगाकर बहुत सारे कीटों को उसके द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि कीटनाशक के प्रयोग से बहुत ज्यादा नुकसान होता है, अगर चारे पे हम डाल रहे हैं तो वो उस चारे को जानवर खाते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से वो सब कुछ हमारे पारिस्थितिक तंत्र में शामिल हो रहा है और नुकसान कर रहा है। जो हमारे कीट हैं प्रकाश की तरफ आकर्षित होते हैं, ये हम देखते हैं कि जितने भी कीट हैं वो रात्रिचर हैं, रात में ज्यादा उनकी सक्रियता होती है। बरसात के समय में जैसा कि हमने देखा हो कहीं भी रोशनी हो रही हो कीट उसके ओर आकर्षित होते हैं। बरसात में तो उनकी सक्रियता ज्यादा रहती ही है, परंतु उनकी सक्रियता वर्ष भर भी रहती है। तो इसलिए प्रकाश प्रपंच एक ऐसा यंत्र है जिसको किसान भाई अपने खेत पर अगर उसको लगाएं, आप उसको गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं प्रकाश प्रपंच किस तरीके का होता है। हम हमेशा उसको बताते भी हैं, दिखाते भी हैं आपको किस तरीके से आपको ये प्राप्त होगा। इसकी संख्या प्रति हेक्टेयर अपने खेत पर एक लगाई जाती है। लगाने के बाद आपको शाम के समय इसको लाइट जलाना है। आजकल सोलर वाले भी प्रकाश प्रपंच आ रहे हैं जो सूरज के प्रकाश से बैटरी से चलते हैं। जैसे ही दिन अस्त होता है इसमें लाइट जल जाती है जिससे कीट इसकी ओर आकर्षित होकर आते हैं। इस प्रकाश प्रपंच की खास बात यह है कि इसमें समस्त प्रकार के कीट आते हैं, कोई भी कीट होगा सारे कीट इसकी तरफ आकर्षित होकर आएंगे और जैसे ही इसके अंदर आके उड़ते हैं वो स्लिप होकर नीचे एक थैली में या बॉक्स में इकट्ठे हो जाते हैं। इसलिए हम प्रतिदिन यदि इस लाइट ट्रैप को शाम को 7 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक हम इसको चालू करके रखते हैं तो अधिकांशतः कीट इस प्रकाश प्रपंच में फंस जाते हैं। इसमें से नर भी होंगे, मादाएं भी होंगी। मादाएं जो होंगी भविष्य में जाके हमारी फसलों पर जो अंडे देंगी वो अंडे देने से किसान भाई हम इनको रोक सकते हैं, क्योंकि एक मादा करीब 400-500 के करीब अंडे देती है। उतने अंडे देने का तात्पर्य यह है कि 500 अंडे से 500 इल्लियां निकलेंगी, 500 नहीं 400 निकलेंगी, 400 नहीं तो 300 निकलेंगी जो आगे चल के फिर अपनी पीढ़ियों को बढ़ाएंगी, तो हमारी फसलों को बहुत अधिक नुकसान होगा। लेकिन यदि हम इस प्रकार के यंत्र का उपयोग करेंगे तो किसान भाई अपनी फसलों को बहुत अच्छे तरीके से बचा सकते हैं। और ये प्रकाश प्रपंच एक ऐसा यंत्र है जो हर प्रकार की फसलों

0: के लिए हर मौसम में यदि है आपके पास, यदि आप लगाते हैं, तो ये हर प्रकार की फसलों के लिए कारगर है। इसके सफलता में कहीं से कहीं तक कोई संदेह नहीं है। आप स्वयं देखेंगे कि इसको लगाने के बाद हमारे खर्चे में कितनी कमी आती है और किस प्रकार रासायनिक कीटनाशकों के दुष्प्रभाव से बच सकते हैं।
1: जी, बहुत ही अच्छी जानकारी। मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि क्या हमारे किसान भाई कुछ जैविक तरीके से या घरेलू तरीके से भी कीट प्रबंधन कर सकते हैं?
0: जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रासायनिक कीटनाशकों के युग से पहले खेती हुआ करती थी, उस समय भी हमारे किसान भाई गैर रासायनिक कीटनाशकों से अपनी फसलों को बचाते थे, तो अब क्यों नहीं बचा सकते? जरूरत है केवल हमारे दृढ़ संकल्प की, किसानों की इच्छा शक्ति की। समस्या ये है कि हमारे किसान भाइयों को रासायनिक कीटनाशकों पर अधिक भरोसा होने लगा है, उन्हें तुरंत प्रभाव देखना है। हमारी भाषा में कहें तो नॉकडाउन इफेक्ट होता है। कीटनाशक डाला, इल्ली मरी, वो प्रत्यक्ष दिखाई देती है। पर जो जैविक कीटनाशक है, जिनको हम परंपरागत तरीके कहते हैं, कीटों को हम नियंत्रित कर सकते हैं। हमारे किसान भाइयों के मन में जो एक भावना बैठी हुई है कि कीट के ऊपर दवाई डालें और कीट तुरंत मरना चाहिए, यह भावना जब तक किसान भाइयों के दिमाग से नहीं निकलेगी, तब तक हम रासायनिक कीटनाशकों के दुष्प्रभाव से बच नहीं सकते। किसान भाइयों को इसमें बदलना ही होगा, क्योंकि ये हमारी पूरी पीढ़ी को, पूरे समाज को, पूरी दुनिया को खराब कर रहा है। इतनी सारी बीमारियां, इतनी सारी समस्याएं जो पैदा कर रहे हैं रासायनिक कीटनाशक। आप निश्चित तौर पर माने, बाजार में उपलब्ध कोई भी सामग्री रासायनिक कीटनाशकों से मुक्त नहीं है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, चाहे वो हम सीधा सब्जी मंडी से ला रहे हो, फल मंडी से ला रहे हैं, फल की दुकान से ला रहे हो, हम गेहूं ला रहे हो, चने ला रहे हो, आटा ला रहे हो, हर सामग्री, हम जानवरों को जो चारा खिला रहे हैं, हर सामग्री कीटनाशक से ग्रस्त है। इसलिए किसान भाई से मेरा अनुरोध है कि वो रासायनिक कीटनाशकों के प्रति अपने लगाव को थोड़ा सा कम करें। जो गैर रासायनिक कीटनाशक हैं, बाजार में बहुत सारे उपलब्ध हैं, न मिलने की कोई वजह नहीं लगती मुझे, क्योंकि अब वो समय नहीं रहा कि आपको कोई चीज ढूंढनी है। आपके पास मोबाइल है, हर चीज आपके उंगलियों पर उपलब्ध है, तो इसलिए उसको मिलने में कहीं से कहीं तक कोई समस्या नहीं है। आवश्यकता है तो केवल एक दृढ़ संकल्प की, कि जब तक हमारे किसान भाई अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, एक एक व्यक्ति नहीं बदलेगा, तब तक हमारे इसमें बदलाव संभव नहीं है। तब तक हम इसी तरह रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग करते रहेंगे और अपनी फसलों को हम प्रदूषित करते रहेंगे।
1: बहुत ही लाभकारी जानकारी हमारे किसान भाइयों बहनों के लिए। और अंत में आप हमारे किसान भाइयों बहनों को क्या सलाह देना चाहेंगे?
0: हमारी जायद फसलों में जो मैंने जानकारी दी, उसके अलावा एक फसल जो यहाँ के किसान भाई प्रमुख रूप से लगाते हैं, कपास की फसल। हमारे यहाँ इस निमाड़ क्षेत्र में और छिंदवाड़ा क्षेत्र में एक परियोजना वर्षों से चल रही है। उस परियोजना का नाम है कपास में कीटनाशक प्रतिरोधकता प्रबंधन परियोजना। वो परियोजना चल ही इसलिए रही है कि कपास में जो 20-25 बार कीटनाशकों का स्प्रे होता था, उसको कैसे कम किया जाए। उसमें उन तरीकों को किसान भाइयों को बताया जाता है कि आप कपास में बिना कीटनाशकों के किस तरह से उसमें लगने वाले कीटों को नियंत्रित कर सकें। बाद में बीटी कपास का आगमन हुआ, पर बीटी कपास आया इसलिए था कि ताकि इल्लियों की समस्या को कम किया जा सके। पर इल्लियों की समस्या खत्म तो हुई, परंतु उसके बाद उसमें से एक इल्ली, जिसको गुलाबी इल्ली कहते हैं, उसकी समस्या दोबारा से पैदा हुई। उसका कारण था प्रतिरोधकता उत्पन्न हुई, तो उसके लिए ये परियोजना फिर दोबारा से रूप बदल के आई, जिसमें कपास की गुलाबी इल्ली के लिए कीटनाशक प्रतिरोधकता प्रबंधन, जिसमें फेरोमोन्स के द्वारा इस इल्ली की रोकथाम के उपाय बताए जाते हैं। किसान भाइयों से अनुरोध है कि इसका अधिक से अधिक लाभ लें, और जो तरीके बताए जाते हैं फेरोमोन्स, जिसके लिए उसमें क्रीम आती है, पौधे पर लगाई जाती है, जिससे नर कीट आकर्षित होकर पौधे की तरफ आता है अपनी मादा के पास, परंतु मादा उसे वहां नहीं मिलती है, उसको झूठे आकर्षित किया जाता है। इस प्रकार के कुछ तरीके हैं, हम कीट को नष्ट कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, उसके प्रकोप को कम कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, अंत में मेरा आपसे अभी से अनुरोध यही है कि कीटनाशकों का आप जितना कम से कम प्रयोग करें उतना अच्छा है, उतना आपके लिए भी अच्छा है, आपकी फसल की लागत भी कम होगी और आप लाभ भी प्राप्त करेंगे। और दूसरा सबसे बड़ी बात जो हमारी जिम्मेदारी है कि हम मानव जीवन को स्वास्थ्यवर्धक बना सकते हैं, गैर कीटनाशक युक्त संसार को बनाने के लिए आपका योगदान सबसे अधिक बड़ा है।
1: जी प्रद्युम्न जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने जायद खरीफ फसलों में कीट प्रबंधन विषय पर हमारे किसान भाइयों बहनों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, नमस्कार।
2: भाई बहनों, अभी हम सुनी रहा था भेंटवार्ता, विषय थो जायत न खरी फसल में कीट प्रबंधन। जानकारी दे रहा था भगवंत राव मंडलोई कृषि महाविद्यालय का कीट वैज्ञानिक डॉक्टर प्रद्युम्न सिंह। आपसे बातचीत करी रही थी बहन माधुरी सेन। भाई बहनों, अब समय छे कृषि समाचार न को। खरीफ सीजन का बीच जिला में खाद वितरण का लेना लागू करी गई ई टोकन व्यवस्था किसान नका लेना राहत लेना है। किसान नका भूमि का रकबा के अनुसार खाद उपलब्ध कराड़ी जाई रही, जेका सी अनियमित वितरण होना पर रोक लगेगा। भाई बहनों, अब जानी लो मौसम को हाल। तो जिला कृषि मौसम इकाई प्रभारी डॉक्टर सौरव गुप्ता ने बतायो कि ग्लोबल वार्मिंग का चल

0: ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। अगला प्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
2: एक ओर हजारों वर्षों की सभ्यताएं, दूसरी ओर नए भारत की आकांक्षाएं, एक ओर वेदों की वाणी तो दूसरी ओर डिजिटल युग की गति, एक ओर काशी के घाट, दूसरी ओर विश्व मंच पर भारत का बढ़ता सम्मान। पिछले 12 वर्षों में भारत ने सिर्फ विकास की नई इबारत ही नहीं लिखी है, भारत ने अपनी सांस्कृतिक चेतना, विरासत और पहचान को एक नए आत्मविश्वास के साथ दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। काशी के धाम की बात करें या फिर केदारनाथ के पुनर्निर्माण की, विदेशों से आई मूर्तियों की बात करें या फिर ज्ञान भारतम मिशन की, साथ ही साथ वंदे मातरम के 150 वर्षों के राष्ट्रीय उत्सव की बात करें या फिर हम बात करें आज आधुनिक होते भारत के नए स्वरूप की, हर जगह चर्चा है एक ऐसे भारत की जिसकी ओर दुनिया उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। संस्कृति और पर्यटन के क्षेत्र में पिछले 12 वर्ष किस तरीके के रहे, इस पर चर्चा के लिए आज के खास मेहमान हैं केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। आकाशवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद, बहुत सारा आभार यह अवसर प्रदान करने के लिए।
2: शुरुआत यहीं से करते हैं, पिछले 12 वर्ष की हम बात करें तो संस्कृति के क्षेत्र में आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि दुनिया को लगता था कि विरासत और विकास दो अलग अलग विषय हैं, लेकिन भारत ने इसे एक साथ एकाकार कर दिखाया है।
3: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से पिछले 12 वर्षों में एक तरफ जनता के विश्वास पर खरा उतरते हुए सर्वस्पर्शी योजनाओं के माध्यम से, लोक कल्याणकारी सर्व कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से देश को परिवर्तित किया, वहीं दूसरी तरफ जहां भारत का आम व्यक्ति गुलामी की मानसिकता के बोझ से दब करके भारत पर स्वाभाविक गर्व करने की जो व्यवस्था थी, जो विचार था, उससे कहीं दूर भटक गया था, उससे कहीं अलग हो गया था। भारतीयों का भारत के प्रति गर्व का बोध वापस स्थापित करने में पिछले 12 साल में सफलता प्राप्त की है। इस 12 साल के दौर में जिस तरह से विरासत और विकास दोनों एक साथ चले, हम गुलामी की मानसिकता को पीछे छोड़ करके अपनी विरासत का संरक्षण करते हुए विकसित होने की दिशा में आगे बढ़े। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस दिशा में जिस तरह से पिछले 12 वर्षों में काम हुआ है और जो परिवर्तन और प्रभाव उसका दिखाई देता है, मैं जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूँ कि ये 12 साल का कालखंड जब भारत के विकसित होने का इतिहास लिखा जाएगा, तब भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का दौर उसके रूप में परिभाषित और चिन्हित किया जाएगा।
2: जी बिल्कुल, कई सारे ऐसे विषय रहे जिसने संस्कृति मंत्रालय ने पिछले 12 वर्षों में बेहतरीन काम किया। अगर एक एक विषय की बात करें तो विदेशों से जो प्राचीन मूर्तियां आई, उसका आप कितना प्रभाव मानते हैं? सिर्फ वो मूर्तियों का आना नहीं रहा, वो भारत की सांस्कृतिक चेतना का वैश्विक प्रसार भी दिखाता है और साथ ही साथ दिखाता है कि जब संस्कृति की कोई चीज वापस आती है तो विरासत भी हमारी समृद्ध होती है।
3: देखिए, 70 के दशक के प्रारंभ में यूनेस्को का ये वर्ल्ड कन्वेंशन हुआ जिसमें यह तय हुआ कि सांस्कृतिक धरोहरें यदि अनधिकृत रूप से उस देश से कहीं बाहर ले जाई जाती हैं तो इस कन्वेंशन के बाद की इन संपदाओं पर वो राष्ट्र अपना प्रोविनेंस प्रूव करके उसको वापस लाने के लिए क्लेम कर सकता है, अनैतिक तरीके से, इलीगल तरीके से, चोरी से, तस्करी से, जो जिस किसी भी देश की संपदा गई हो। तब से लेकर के 2014 तक जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता ने प्रधानमंत्री के पद पर आसीन किया, विरासत का संरक्षण केवल शब्द नहीं था, उसके प्रति जो भाव था, मैं आज गर्व के साथ में कह सकता हूँ कि वो 13 की संख्या बढ़ करके और 670 से ज़्यादा हो गई है। और पिछले वर्षों में जिस तरह से हमने अनेक देशों के साथ इस पर अपने कल्चरल एग्रीमेंट्स किए, ऑब्वियसली अमेरिका जो सबसे बड़ा मार्केट इसका है, ऐसी सारी संपत्तियां संपदाएं चोरी होकर के अमेरिका जाती थी, उनके साथ जो हमने कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट साइन किया, भारत की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग जब भारत में हुई थी 2024 के वर्ष में, उस समय में उसके चलते हुए एक नया मार्ग प्रशस्त हुआ और हम 670 के आंकड़े को पार कर पाए। और आज जिस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में

भाई बहनों, अभी हम सुनी रहा था जयराम सावनेर ने उनका साथी नसी यो लोकगीत। अब समय छे आज का प्रश्न का उत्तर को। हमने कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे प्रश्न करे थे कि कपास फसल लगावना कलेना चौफुली पद्धति को उपयोग क्यों करे जाए। तो भाई बहनों, कपास फसल लगावना कलेना चौफुली पद्धति इकालन अपनाई जाए कि इन्हीं विधि से फसल बुआई पर पौधाना की संख्या बराबर आवज न दुई दिशा में कोल्पा आसानी से चलावना में सुविधा रहे। उन्नत जाति का 45-60 x 45-60 सेंटीमीटर पर लगाई जाए। भाई बहनों, आज का इना प्रश्न का उत्तर का साथ कार्यक्रम को समय पूरा हो। आज्ञा देव। राम राम।

0: चलें, इस साल के अंत तक जाते जाते हम 1000 के आंकड़े को पार करके हम 4 डिजिट की संख्या में पहुंच जाएंगे। इतना ही नहीं, विभिन्न वैश्विक मंचों पर जहां ये विषय रेलेवेंट है, भारत ने अपनी इस सफलता को दुनिया के दूसरे देशों के साथ में भी साझा करके ऐसे अनेक देश जिन्होंने गुलामी का दंश सहा है उनकी आवाज को बुलंद करने का भी काम किया है। हमारी कल्चरल प्रॉपर्टीज का रेस्टिट्यूशन हमारा सांस्कृतिक सभ्यतागत हक है, ये आवाज वैश्विक मंच पर भारत ने एक नेतृत्वकर्ता बनकर के उठाई है। जब एक संपत्ति, एक संपदा, चाहे वो अन्नपूर्णा की मूर्ति हो, वो ट्रैक करके प्रधानमंत्री खुद इंटरेस्ट लेकर के वापस लाते हैं और वो काशी विश्वनाथ के मंदिर में जब पुनर्स्थापित होती है, वो एक सभ्यतागत मूल्य का पुनर्स्थापन होता है, एक इतिहास का वापस पुनर्स्थापन होता है और एक राष्ट्रीय संकल्प का सिद्ध होना उसके कारण से दिखाई देता है। निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनकी इस विचार के प्रति, इस विषय के प्रति निष्ठा और संकल्प शक्ति, इन तीनों का प्रकटन इसके माध्यम से होता है।
1: अगर हम सांस्कृतिक पुनर्जागरण की बात को थोड़ा और आगे लेकर जाएं, हमने देखा कि काशी विश्वनाथ का पूरा कॉरिडोर बना, केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ, उज्जैन में जो द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है महादेव का मंदिर, वहां पर महादेव लोक बनाया गया और बहुत टूरिज्म को बढ़ावा मिला। इसके दो पहलू हैं, एक तो जो सांस्कृतिक कॉरिडोर का निर्माण होना और उसके जरिए युवाओं को जोड़ना और रोजगार के अवसरों को बढ़ाना। संस्कृति मंत्रालय आने वाले समय में भी इस तरह की किस योजनाओं पर काम कर रहा है?
0: देखिए, हमारी संस्कृति के मानबिंदु, हमारी सभ्यता के मानबिंदु, हमारी आस्था के केंद्र, जिनकी आपने चर्चा की, काशी बाबा का कॉरिडोर बनाने की बात हो, महाकाल लोक बनाने की बात हो, केदारनाथ के पुनर्निर्माण की बात हो, सोमनाथ जो भारत की अदम्य जिजीविषा का प्रतीक है, उसके मंदिर के परिसर के पुनर्निर्माण के साथ साथ में वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट का विषय हो, या सोमनाथ के आक्रमण, उसके ध्वस्त किए जाने के 1000 साल के पूरे होने को, या पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे होने के को वर्ष पर्यंत उत्सव के रूप में मनाने और देश को उसके साथ जोड़ने का विषय हो, जगन्नाथपुरी के धाम से लेकर के देश के अन्य इस तरह के श्रद्धा के केंद्रों को प्रसाद योजना के माध्यम से पर्यटन मंत्रालय द्वारा विकसित करने, वहाँ अवसंरचनाओं के विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ में टूरिस्ट एमिनिटीज को बढ़ाने का काम हो, निश्चित रूप से उसने वहाँ जाने वाले दर्शनार्थियों के अनुभव के स्तर को समृद्ध करने का काम किया है। लेकिन इसके चलते हुए मात्र पर्यटन को या धार्मिक पर्यटन को उछाल मिलाओ ऐसा नहीं है। पिछले वर्षों में जिस तरह से गरीब कल्याण की योजनाएं बनाई गई, उनको जिस तरह से सैचुरेशन के मंत्र के साथ में धरातल पर उतारा गया, उसके चलते हुए जो 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकल पाए, मध्यम वर्ग को जिस तरह से दोहरी राहत प्रदान की गई, एक टैक्स में कटौती करके, इनकम टैक्स के स्लैब्स को रिवाइज करके, जहां 2 लाख रुपए के ऊपर की आय पर इनकम टैक्स लगता था, आज 12.5 लाख तक इनकम टैक्स जीरो हुआ। दूसरी तरफ अप्रत्यक्ष करों में GST का लागू करके, देश में एक कर की व्यवस्था को लागू करके, जो कैस्केडिंग इफेक्ट से टैक्स लगता था, टैक्स ओवर टैक्स, उससे राहत प्रदान करके, और तीसरे, देश की महंगाई को पिछले 12 वर्षों तक निरंतर काबू में रख करके, जो है हिस्टोरिकली लो बनाए रखने में कामयाबी प्राप्त करके, मध्यम वर्ग को जिस तरह से लेवरेज किया, उनकी जेब में जब डिस्पेंसिबल पैसा आया, तो सामान्य भारतीय की जिस तरह की सोच, मानसिकता और जिस तरह का विचार होता है, उसकी जेब में जब डिस्पेंसिबल इनकम होती है, तब वो पहली बार घर से बाहर निकलने का अवसर मिलता है, तो दशकों से, कई केसेस में पीढ़ियों से दबी हुई आकांक्षा कि कभी हमारे पास पैसा होगा तब मैं अपने बूढ़े माँ बाप को लेकर के आस्था के किसी केंद्र में, जहाँ परिवार की आस्था हो या जिन जिन जगहों पर आस्था हो, वहाँ लेकर के जाऊँगा, दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करूँगा, दर्शन कराने का पुण्य प्राप्त करूँगा। ये सपना इन सब परिस्थितियों के कारण से साकार हुआ और इसके साथ साथ में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हुआ, सड़कें बनी, वर्ल्ड क्लास रोड इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ, मॉडर्नाइज रेलवे भारत में आई, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ में उनके परिचालन की गति पड़ी ताकि आवागमन में समय कम हो, नए हवाई अड्डे बने, हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई यात्रा कर सके, इस सपने को साकार सरकार ने किया, उसने भी निश्चित रूप से धार्मिक पर्यटन को बढ़ाया। पर्यटन की गतिविधि जो कहीं भी होती है, पर्यटन की अर्थव्यवस्था जो है वो ओवरऑल

0: जीडीपी में 6% का कंट्रीब्यूशन करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट मार्गदर्शन है, हमको इसको 2047 तक जब भारत विकसित होगा तब तक 10% के ग्लोबल बेंचमार्क के बराबर लेकर के जाना है। लेकिन दूसरा, पर्यटन की अर्थव्यवस्था सबसे डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी होती है। जब आप और मैं पर्यटन के लिए कहीं जाएं, चाहे वो किसी भी पर्पज के लिए होगा, ट्रांसपोर्टर को उसको लेकर के रोजगार मिलता है, ट्रांसपोर्टर का कैस्केडिंग इफेक्ट से ड्राइवर को रोजगार मिलता है, गाड़ियां मैन्युफैक्चरिंग करने वालों को उसके चलते हुए रोजगार मिलता है, वो एक कैस्केडिंग इम्पैक्ट होता है। होटल में ठहरते हैं, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जो है वो सबसे बड़ा रोजगार का प्रदाता है। निवेश विज रोजगार सृजित रोजगार अगर देखें तो हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म सेक्टर सबसे ज्यादा रोजगार सृजन करने वाला होता है, उनको रोजगार मिलता है, रेस्टोरेंट्स को रोजगार मिलता है, स्ट्रीट फूड वेंडर्स को रोजगार मिलता है, कोई सुवेनियर शॉप पर जाकर के कुछ खरीदता होगा उसको रोजगार मिलता है, क्राफ्ट शॉप पर जाकर के कुछ खरीदता होगा उसको रोजगार मिलता है, इसके अतिरिक्त टूरिस्ट गाइड को रोजगार मिलता है, अनेक लोगों को, पूरे समाज को उससे लाभ होता है। रास्ते चलते हुए कोई रोक करके, शायद कोई खेत में से तोड़ करके फल लेकर के बैठी हुई एक महिला से अगर कोई जामुन खरीद करके खाए, कोई अमरूद खरीद करके खाए, कोई फल खरीद, केला खरीद के खाए, उस फार्मर को रोजगार मिलता है। तो ये जो डिसेंट्रलाइज्ड कंट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमी और उसके साथ साथ में रोजगार के नए अवसर पैदा करना, ये दोनों ही पर्यटन के क्षेत्र की खूबसूरती है, खूबी है। और मैं ये मानता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि हम 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था जो आज 4 ट्रिलियन पर है और पूरी दुनिया जिस बात पर विश्वास करता है कि 2047 तक 30 ट्रिलियन से ज्यादा की अर्थव्यवस्था होगी, उसमें जब भारत का ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर 10% का कंट्रीब्यूटर बनेगा, निश्चित रूप से जिस प्रमाण में भारत में डोमेस्टिक ट्रैवल बढ़ेगा उसी प्रमाण में भारत का इनबाउंड टूरिस्ट जो विदेश से आने वाले सैलानियों की संख्या भी बढ़ेगी, क्योंकि भारत की छवि बदल रही है, भारत की तरफ देखने की दृष्टि बदल रही है। तो भारत में एक तरफ भारत की 30 ट्रिलियन की उस संभावित अर्थव्यवस्था में 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर होगा, और वहीं भारत में जो 2,30,000 करोड़ रुपए का आय जो है विदेशी मुद्रा की जो ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर से होती है, ये भी लगभग इसमें जो है 10 गुना की अभिवृद्धि होगी। तो भारत में टूरिज्म सेक्टर भारत की इकोनॉमी का ड्राइवर भी बनेगा, बड़ा स्टेक होल्डर होगा, और क्योंकि जैसा मैंने कहा ये डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी होने के कारण से बहुत सारे रोजगार का अवसर पैदा करती है। जब हम उस मुकाम तक पहुंचेंगे जिस लक्ष्य को लेकर के प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम एग्रीकल्चर के बाद में सबसे बड़े एम्प्लॉयमेंट जनरेटर सेक्टर होंगे।
1: जी बिल्कुल, इसी में दो और पहलू हैं मंत्री जी। छोटे राज्यों की बात करें, बिहार में महाबोधि मंदिर कॉरिडोर की बात हुई, विष्णुप्रयाग मंदिर की बात हुई, साथ ही साथ बिहार में जहां सीता माता का जन्म हुआ था वहां भी शुरुआत चल रही है, रामायण सर्किट महाभारत सर्किट की भी चर्चा जोरों पर रही, इन सब का क्या रिस्पॉन्स आप देख रहे हैं?
0: देखिए, इन योजनाओं पर हम राज्यों के साथ में निरंतर बातचीत करते हुए इस पर आगे बढ़ने के लिए काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे कॉरिडोर्स या विषय हो सकते हैं जिसको स्तंभन करने के लिए जिस पर हम काम कर रहे हैं, हिस्टोरिकल ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, नेचर बेस्ड ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, ट्रैकिंग ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, बुद्धिस्ट बेस्ड टूरिज्म के ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, हम वाइल्ड लाइफ बेस्ड टूरिज्म के ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, इसलिए बहुत सारी ट्रेल्स पर एक साथ में काम हो रहा है। और क्योंकि संभावनाओं का द्वार बहुत बड़ा है, इसलिए हम नए डेस्टिनेशंस डेवलप करने के लिए भी प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण से उनके विजन के साथ में काम कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से पर्यटन के क्षेत्र में एक बड़ा उछाल दिखाई दे रहा है, निश्चित रूप से आने वाले समय में सस्टेनेबिलिटी के लिए, नए अनुभवों की उपलब्धता को बनाए रखने के लिए, बढ़ाने के लिए हमको नए अनुभव सृजित करने पड़ेंगे। जहाँ एक तरफ हम अपनी सभ्यतागत धरोहर, चाहे वो राखीगढ़ी की आर्कियोलॉजिकल साइट होगी वहाँ से लेकर के और चित्तौड़ के किले की ऐतिहासिक साइट तक, उन सब को नए सिरे से ग्लोब जो है देश परियोजना के तहत डेवलप करने के लिए काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ 50 से ज़्यादा विश्व स्तरीय आइकॉनिक डेस्टिनेशंस नए बनाने के ऊपर भी हम माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं।
1: अगर चर्चा को थोड़ी आगे बढ़ाएं, पांडुलिपियों के संरक्षण पर प्रधानमंत्री का बहुत जोर रहता है, ज्ञान भारतम मिशन चलाया जा रहा है पांडुलिपियों के संरक्षण और उसमें AI तकनीक का इस्तेमाल करके उनका डिजिटलाइजेशन, कुछ उसके बारे में बताएं।
0: देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब विरासत के संरक्षण की बात की तब उनका मार्गदर्शन था कि हमको अपनी बौद्धिक संपदा की समृद्ध विरासत का संरक्षण भी करना चाहिए। भारत के हजारों साल के

निरंतरता के सभ्यता के इतिहास में भारत के ऋषियों ने मनीषियों ने जो अनुभूत ज्ञान अर्जित किया, जो समृद्ध ज्ञान की धरोहर खड़ी की गई थी, वो कालांतर में अंग्रेजों की कुत्सित नीतियों के चलते हुए और उससे पहले पश्चिम से आए हुए आक्रांताओं के आक्रमण के समय में नष्ट कर दिए जाने के भय से उनको दबा छिपा करके रखने की पद्धति बन गई थी। दुर्भाग्य से आजादी के बाद में भी जिस तरह की मानसिकता के लोग सत्ता के सिंहासन पर बैठे थे, जो सिर्फ जन्म से भारतीय थे, बाकी मन से, विचार से, आत्मा से, सोच से वो कहीं भारतीय नहीं थे। भारतीय परंपराओं के प्रति, सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति, भारत के ज्ञान के प्रति उनके मन में श्रद्धा का भाव नहीं था। वो पाश्चात्य परंपरा से और पाश्चात्य सोच से प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने भी उदासीन तरह की। ये हमारी हजारों साल की जो है बौद्धिक संपदा धीरे धीरे जीर्ण शीर्ण हो रही थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा इसको चिन्हित किया जाना चाहिए और उनका मार्गदर्शन का था कि इनको चिन्हित करके मात्र संरक्षण करने से काम नहीं चलेगा। किसी एक मैन्युस्क्रिप्ट को अगर हम शिष्य संहिता को अगर हम डिजिटाइज कर देंगे, उसका डिस्क का स्कैन करके डिजिटल वर्जन को अपलोड कर देंगे, उसको हम सुरक्षित तो कर पाएंगे। उसको अगर क्षरण हो रहा है तो उसको कुछ सालों के लिए, आने वाले कुछ सदियों के लिए हम उसको एक बार फिर कंजर्व करके शायद रख तो पाएंगे, लेकिन आज के वर्तमान संदर्भ में वो उपयोगी हो ये नहीं कर पाए। तो ये जो हमारा अथाह ज्ञान का सागर है, ये वर्तमान में विश्व के उपयोग में आए, इसके लिए ये आवश्यक है। और उनका मार्गदर्शन था कि हम तकनीकी का उपयोग करके इसको कंप्यूटर रीडेबल फॉर्मेट में लेकर के आए, ताकि आज की उपलब्ध तकनीकियों के आधार पर उनको देश और दुनिया की विभिन्न प्रचलित भाषाओं में परिवर्तित किया जा सके, ट्रांसलिटरेट किया जा सके। हमने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में इस विषय से जुड़े हुए सारे विशेषज्ञों को बुलाया। 3 दिन तक, सुबह से लेकर रात तक, देर रात तक सभी लोगों ने अलग अलग सेक्टर्स में, जिसमें पांडुलिपियों को रखने वाले भी थे, उनके कंजर्वेशन पे काम करने वाले भी लोग थे, एंडोलॉजिस्ट भी थे, टेक्नोलॉजी के लोग भी थे, जो भाषाएं डिसाइफर्ड नहीं है उनके डिसाइफरमेंट के लिए काम करने वाले विशेषज्ञ थे। ऐसे लोगों ने अलग अलग वर्टिकल्स में बैठ करके जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने दिए थे, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट उन्होंने आइडेंटिफाई किए थे, उसके सॉल्यूशन और उसका रोड मैप बनाने पर विचार विमर्श किया। उन सब के प्रेजेंटेशन माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं 3 घंटे तक बैठ करके सुने और फिर आगे उसका एक रोड मैप उनके मार्गदर्शन में बना। हमने अभी 2026 के मार्च के 20 तारीख को एक ऐप लॉन्च करते हुए प्रधानमंत्री से लॉन्च करवा करके एक सर्वे देश में प्रारंभ किया कि मैन्युस्क्रिप्ट जिसके पास में भी है वो उसका फोटो, उसका मेटा डेटा अपलोड करें। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि 1,90,00,000 से ज्यादा ऐसे ग्रंथ जो हैं वो लोगों ने अपलोड किए, उनकी सूचना अपलोड की। हमने वेरिफिकेशन का प्रोसेस, क्योंकि कहीं डुप्लीकेशन नहीं हो, डी डुप्लीकेशन भी आवश्यकता थी, कहीं हो सकता है कि गलत एंट्री आ जाए, इन सब का ध्यान में रखते हुए इंडिविजुअल एंट्री को वेरीफाई करके हमने अपनी रिपोजिटरी पर रखना शुरू किया है। वो संख्या भी 1,08,00,000 को क्रॉस कर चुकी है। ऐसे में मैं मानता हूँ कि आने वाले समय में जब ये सारी बौद्धिक संपदा, ये सारी धरोहर संरक्षित भी होगी और इस सारी धरोहर और संपदा को आज का विश्व जान सकेगा, आज विज्ञान पढ़ने वाले हम सब लोग, आप और मैं, जिस विषय को और जिन पुस्तकों को पढ़ करके जो हमको पढ़ाया गया, हम जिसको पढ़ करके सीखे, वो ये कहता है कि धरती सूर्य के चक्कर लगाती है, गैलीलियो ने सिद्ध किया था लगभग 400 वर्ष पूर्व। जब उसने ये कहा था तब उसको कितनी तरह की कठिनाइयों और यातनाओं को झेलना पड़ा था, उसूली पर लटकाने तक का उपक्रम किया गया था, लेकिन हम मानते हैं कि उन्होंने ये विश्व में सबसे पहले वैज्ञानिक रूप से प्रतिस्थापित किया। लेकिन भारत की बौद्धिक संपदा ये 400 साल पहले भारत की मैन्युस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है कि 2000 साल पहले ऋषि आर्यभट्ट ने स्थापित कर दिया था कि सूर्य और धरती के बीच में कितनी दूरी है, इस सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, धरती सूर्य का चक्कर लगाने के लिए कितना समय लेती है, धरती अपने एक्सिस पर घूमने में कितना समय लेती है, धरती कितने डिग्री कोण में झुकी हुई है, धरती और चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है, चंद्रमा का सर्कमफेरेंस कितना है और वो धरती का चक्कर लगाने में कितना समय लगाता है, इसके अतिरिक्त अन्य ग्रहों और उन ग्रहों के उपग्रह क्या हैं, उस सब का रचना संसार उन्होंने पुस्तक में लिखा हुआ था। जब मैं आपसे पूछता हूँ कि एक भारत की आने वाली पीढ़ी का बच्चा, चाहे जैन अल्फा होगी, बीटा होगी, जैन जी होगी, जब ये पढ़ेगा कि जो विज्ञान की किताबों में हमको पढ़ाया जाता है, 400 साल पहले जिस खोज को यूरोप में होने की बात की जाती है, वो गर्व करते हैं, वो हमारे ऋषि, हमारे पूर्वज जो है 2500 साल पहले भी जानते थे, जब वो ये अनुभव करेगा कि जब पूरा विश्व और विश्व के लगभग सब देशों

0: स्थित होने का दंभ भरते हैं, अभिमान करते हैं, वो जब अपने आप को पशु से डिस्टिंक्ट करने के लिए, अलग दिखाने के लिए या अपनी लज्जा छुपाने के लिए प्रयासरत थे, जब वो पेड़ की छाल या जानवर की खाल लपेट रहे थे, तब हमारे यहाँ जो है वो भरत मुनि नाट्य शास्त्र लिख रहे, और उस नाट्य शास्त्र में वो मंच सज्जा कैसे हो, फेस एक्सप्रेशन कैसे हो, रस की अभिव्यक्ति कैसे हो, व्यक्ति की आंखों का और भावों की अभिव्यक्ति का सामंजस्य क्या है, हाथ की उंगलियों का लस्य क्या है, बॉडी का जेस्चर्स क्या होते हैं, किस तरह की ड्रेस होती है, क्या कलर कॉम्बिनेशन होता है, इन सब के ऊपर वो लिखित में शोध करके अपने ग्रंथ लिख रहे थे। हमारा भारत कितना समृद्ध था, ये जब हमारी नई पीढ़ी जानेगी तब वो भारत के प्रति गर्व की अनुभूति करेगी, और जिस देश और समाज के लोग अपने राष्ट्र पर, राष्ट्र की परंपराओं पर, राष्ट्र के इतिहास पर, देश की मान्यताओं पर गर्व करते हैं, वो देश निरंतर प्रगति करता है। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये जो ज्ञान भारत मिशन है, ये निश्चित रूप से इस देश को परिवर्तित करने वाला होगा, इस देश के ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत बड़ा योगदान करने वाला होगा, और न केवल भारत के प्रति अभी तो भारत के प्रति पूरे विश्व की देखने की दृष्टि बदलेगी, और इसमें छुपा हुआ अकूत ज्ञान और संपदा जो है वो विश्व के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगी।
1: अब थोड़ी चर्चा वंदे मातरम की कर लेते हैं। 150 वर्ष पूरे हुए हैं, राष्ट्रीय उत्सव मनाया जा रहा है, संस्कृति मंत्रालय की तरफ से कई तरह की पहल की गई, राष्ट्रीय चेतना का एक मंत्र था सिर्फ एक गीत न होकर वंदे मातरम, क्या क्या कार्यक्रम हो रहे हैं और किस तरह की योजनाएं हैं इस दिशा में?
0: वंदे मातरम का गीत वो केवल एक गान नहीं, उस समय की परिस्थिति की कल्पना कीजिए जब अंग्रेजों का दमन चक्र चरम पर था, देश और देश के बारे में विचार करना, देश और देश के भक्ति की बात करना, परतंत्रता से मुक्ति की बात करना, उसके लिए अनेक अत्याचार होते थे, अनेक यातनाएं सहन करना पड़ते, और देश जो है मानसिक रूप से देशवासी और देश के उस समय के लोग टूट रहे थे। उस समय पे बंकिम बाबू ने जो ये अमर गीत लिखा, इस गीत ने एक भारत के उस कम मानसिकता की कमजोरी के उन्मूलन के लिए काम किया, और दूसरा भारत के विभिन्न हिस्सों में जो बायर कालांतर में अलग अलग तरह से अलग अलग जगह पर स्वतंत्रता के लिए अलग अलग मार्ग से संघर्ष हो रहा था, उस सबको एकता के सूत्र में निबद्ध करने का काम किया। और वंदे मातरम का यह अमर गीत जिसने हजारों लोगों को बलिदान होने के लिए प्रेरित किया, समर्पित करने के लिए प्रेरित किया, और उनके बलिदान से इस गीत के माध्यम से, क्योंकि उनके अंतिम शब्द वो मतंगिनी हाजरा से लेकर के अनेक अनेक ऐसे लोग होंगे जिनके जीवन के अंतिम शब्द फांसी के फंदे पर झूलने से पहले या सीने पर गोली खाने के पहले, या वीर सावरकर जैसे लोगों ने कोड़ों की मार खाते हुए कोल्हू में बैल में जुते हुए भी जो वंदे मातरम का उद्घोष किया, उसने लाखों लोगों को देश की आजादी की लड़ाई के साथ जुड़ने का मार्ग प्रशस्त किया था। इसलिए वंदे मातरम भारत की आत्मा का, भारत की सांस्कृतिक चेतना का गीत था। इस अमर गीत के जब 150 साल पूरे हुए, ये दुर्भाग्य था कि आजादी से पहले जिस तरह के विचार के लोग थे, और जैसा मैंने कहा कि उनके हृदय में कहीं भारत की चिति और भारत की सांस्कृतिक परंपराओं के प्रति इस तरह का प्रबल वेग नहीं था, उन लोगों ने वंदे मातरम के विभाजन को स्वीकार किया। जिस वंदे मातरम के विभाजन ने देश के विभाजन का मार्ग प्रशस्त किया, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा, उस वंदे मातरम के एहसास के साथ में, उस वंदे मातरम की भावना के साथ में, वंदे मातरम के गीत के साथ में अपने आप को खपा देने वाले लोगों की प्रेरणा प्राप्त करते हुए, इस महत्वपूर्ण समय में जब देश 140 करोड़ लोगों की ताकत के आधार पर विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ने के महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है, तब वंदे मातरम एक बार फिर प्रेरणा का पुंज बने। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसके लिए साल भर तक इस 150वीं शती पर स्मरणोत्सव आयोजित करने का हम सबको मार्गदर्शन दिया। हमने उस पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला प्रारंभ की, अलग अलग जगह पर इसके निमित्त कार्यक्रम हो, अलग अलग विधाओं के कार्यक्रम हो, उन सबको आयोजित करने पर कहा कि श्रृंखला प्रारंभ की। इसके अतिरिक्त इस पर एक हर एक व्यक्ति इसके साथ में जुड़े, जो वंदे मातरम का डिजिटल प्लेटफॉर्म हमने बनाया, उस प्लेटफॉर्म पर भारत के लोग खुद एकत्रित होकर के अपने स्वर में वंदे मातरम को गा करके अपलोड करें, वंदे मातरम के साथ में उन लोगों को जोड़ने के लिए, प्रेरणा को प्राप्त कर सकें, ऐसा अवसर प्रदान करने के लिए हमने एक प्लेटफॉर्म सृजित किया, जिस पर करोड़ों लोगों ने आकर के वंदे मातरम का गायन करते हुए रजिस्टर किया। वंदे मातरम और वंदे मातरम से जुड़े हुए विषयों की

0: पर मैं अनेक जगह पर प्रदर्शनी आयोजित की गई, वंदे मातरम के इतिहास से जुड़े हुए अनेक गोष्ठियां आयोजित की गई, विचार विमर्श आयोजित किए गए और किए जा रहे हैं। देश भर एक साथ में, एक जगह पर एक साथ में वंदे मातरम का गायन करें, इस तरह के कार्यक्रम आयोजित हुए और उनके साथ साथ में वंदे मातरम पर अलग अलग तरह की, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के अनुकूल फिल्म्स बन सके, वीडियो मटेरियल बन सके, अपने अपने तरह से लोग वीडियो मटेरियल बनाए, इसके लिए कॉम्पिटिशन आयोजित किए जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने अब तक अपने कंटेंट अपलोड किए। इस तरह से पूरे देश में वंदे मातरम को पूरे देश को जोड़ने और एक राष्ट्रभक्ति का ज्वार हम पुनः इस महत्वपूर्ण समय में खड़ा कर सकें, जो उतना ही प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है जितना आजादी की लड़ाई थी, इस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम निरंतर काम कर रहे हैं।
1: दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है मंत्री साहब, और हम बात योग की करें, आयुर्वेद की करें या भारतीय भाषाओं की करें, दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचाना, जिसे आज आधुनिक दौर में सांस्कृतिक कूटनीति भी कहते हैं, संस्कृति मंत्रालय इस दिशा में किस तरह की पहल कर रहा है?
0: देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके इनिशिएटिव पर जिस तरह से योग पूरे विश्व तक पहुंचा, आज दुनिया के हर देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को, जो अभी आने वाले दिनों में 21 तारीख को आने वाला है
1: जी,
0: पूरा विश्व योगमय हो जाता है, ऐसा हम सब देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन विषय वहां तक नहीं है। मुझे, क्योंकि दुनिया के अनेक देशों में जाने का सौभाग्यपूर्ण अवसर माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से मिलता है, डे टू डे लाइफ में भी योग की एक्सेप्टेबिलिटी एज ए वेलनेस प्रैक्टिस, ए बैलेंसिंग प्रैक्टिस इन द लाइफ, वो अपनाने की में बहुत बड़ी गति मिली है। लाखों लाखों लोगों के जीवन का योग हिस्सा बना है और निश्चित रूप से उसके माध्यम से भारत के प्रति सम्मान बढ़ा है। भारत ने जिस तरह से आर्थिक दृष्टि से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रगति की, विभिन्न वैश्विक प्लेटफॉर्म्स पर भारत की प्रासंगिकता बढ़ी, इम्पोर्टेंस बढ़ी, भारत ने एक सदस्य देश से आगे बढ़कर के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से विभिन्न विधाओं में एक लीडरशिप का रोल लेना प्रारंभ किया, भारत ने जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ और इन सब के चलते हुए भारत की तरफ देखने की दृष्टि जिस तरह से विश्व की बदली, मैं मानता हूं कि उसके कारण से भारत की सांस्कृतिक परंपराओं, भारत के ज्ञान, भारत से निकले हुए विषयों की एक्सेप्टेबिलिटी भी पूरे विश्व भर में बढ़ी। हमने योग की बात की, हम भारत की संस्कृत की बात कर सकते हैं, आज दुनिया के 100 टॉप यूनिवर्सिटीज में से 75 में जो है संस्कृत का विभाग काम करता है, लगभग 40 से ज्यादा विश्वविद्यालयों में वेद अध्ययन केंद्र खुले हैं या खुल रहे हैं। इसके अतिरिक्त भारत की जीवन पद्धति, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मिशन लाइफ की बात की, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है क्योंकि क्लाइमेट चेंज के थ्रेट से सारी दुनिया घबराई हुई है। भारत की कृषि परंपरा, भारत की परिवार व्यवस्था, भारत के गौवंश, इन सब की डिमांड पूरी दुनिया में नए सिरे से बढ़ रही है। भारत अब केवल दुनिया के लिए एक देश नहीं, भारत दुनिया के लिए एक इंस्पायरिंग नेशन के रूप में खड़ा हो रहा है और भारत जिस दिशा, जिस गति से प्रगति कर रहा है, आज भारत विश्व के लिए एक भरोसेमंद मित्र और पार्टनर के रूप में खड़ा हो रहा है। हम भगवान बुद्ध के रेलिक्स को लेकर के दुनिया के विभिन्न देशों में गए, निश्चित रूप से उसका बहुत बड़ा कूटनीतिक प्रभाव पड़ा है और इन सब विषयों को लेकर के भारत की छवि, जो कभी भ्रष्टाचार से ग्रसित देश, कभी कमजोर देश, आतंकवाद से पीड़ित देश, नक्सलवाद से ग्रसित देश के रूप, छवि के रूप में बनी हुई थी, आज एक सशक्त आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हुए देश की तरह छवि बनी है।
1: आपसे एक और सवाल समझना चाहेंगे कि जब हम बात अमृतकाल की करते हैं और 2047 में विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की बात करते हैं, तो संस्कृति मंत्रालय किन भविष्य की योजनाओं पर काम कर रहा है?
0: देखिए, आजादी के 100 वर्ष पूरे करने तक देश विकसित देश बने, एक बहुत विजनरी और बहुत बड़ा संकल्प देश के प्रधानमंत्री ने लिया। जो देश 2014 से पहले अविश्वास के भाव में या आत्मविश्वास की कमजोरी से ग्रसित था, जहां व्यवस्था पर से विश्वास डगमगाया हुआ था, उस देश को 12 साल के इस कालखंड में, जो बहुत छोटा है किसी देश के परिवर्तन के दृष्टिकोण से, उससे बदल करके विश्वास से भरे हुए देश के रूप में परिवर्तित

0: करके हम विकसित हो सके, इस दिशा में ले जाने का एक साहसिक काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। देश के 140 करोड़ लोगों की ताकत पर हम कदम दर कदम दिन प्रतिदिन उस दिशा में आगे बढ़ रहे। इस मंत्र के साथ में हम भारत को विकसित करते हैं कि भारत विरासत का संरक्षण करते हुए विकसित होगा, तो निश्चित रूप से संस्कृति मंत्रालय की भूमिका बहुत बढ़ती है। जब कोई देश प्रगति करता है, विकसित होता है, तो निश्चित रूप से सम्मान अर्जित। मैंने एक दिन कहीं ऑन एयर इंटरव्यू में कहा था, और मैंने वो पत्रकार मित्र जो बातचीत कर रहे थे उनसे कहा, क्या आप कभी किसी ऐसे विक्षिप्त व्यक्ति के घर गए हैं जो एक छोटे से झोंपड़ी में कहीं रह रहा हो, चारों तरफ दुर्गंध हो, महीनों से नहाया नहीं हो, कपड़ों में से दुर्गंध आ रही हो, बालों में शायद कीड़े रंग रहे हों, चारों तरफ बर्तन गंदे पड़े हों, मैले कुले चले कपड़े पड़े हों, सब कुछ अव्यवस्थित हो, क्या आप वहां जाकर के आपके मन में क्या भाव होगा जब आप जाएंगे? या तो करुणा का भाव
1: जी,
0: या घृणा का भाव होगा, या दया का भाव होगा, या दान का भाव होगा। आपके मन में सेंस ऑफ ओनरशिप उसके लिए नहीं होगी। तो भारत की छवि जब ऐसी थी, तब देश और दुनिया के लोगों की भारत के प्रति सेंस ऑफ ओनरशिप नहीं थी। अब जब परिस्थितियां बदल गई, अब जब भारत विकसित होने वाला है, विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो भारत की तरफ देखने की दृष्टि और भारतीयों की भारत को ओन करने की दृष्टि बदली है, का विचार बदला है, भाव बदला है। और ये जब भाव बदलता है, जब देश अपनी सांस्कृतिक परंपराओं पर गर्व करना शुरू करता है, जब देश अपनी विरासत पर गर्व करना शुरू करता है, तब राष्ट्रीय भाव से उत्प्रोत होकर के जब काम करने लगता है, तो राष्ट्र का संकल्प स्वतः सिद्ध हो जाता है। इसलिए संकल्प को सिद्ध करने में भी संस्कृति मंत्रालय और भारत की सांस्कृतिक परंपराओं का पुनरुद्घाटन, भारत का सांस्कृतिक पुनर्जागरण निश्चित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। लेकिन उसके साथ साथ में भारत जब विकसित होगा, तब भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत परंपराएं, भारत की एकता में विविधता और विविधता में एकता, ये दोनों विश्व को भारत की तरफ आकर्षित करने और भारत की तरफ सम्मान की दृष्टि से देखने का एक नया नजरिया जो है वो सशक्त रूप से पैदा करेगी।
1: कार्यक्रम के अंत में युवाओं को क्या संदेश देंगे कि वो अपनी भारतीय संस्कृति से जुड़ें, उन पर गर्व करें और उनका प्रचार प्रसार भी करें?
0: देखिए, भारत युवाओं का देश है और युवाओं की ताकत के आधार पर ही भारत विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वो हमारी सबसे बड़ी धरोहर है और ये धरोहर देश की सांस्कृतिक परंपराओं के साथ में जुड़े हैं। उसके लिए मैं कहूंगा कि हम सब लोग जब कभी भी अवसर मिले, जहां कहीं भी अवसर मिले, जैसा भी अवसर मिले, हम देश की विरासत के साथ में, सांस्कृतिक संपदा के साथ में, धरोहर के साथ में, परंपराओं के साथ में जुड़े। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि वो सभी तीर्थयात्रा के लिए जाएं, वो भावना का विषय है, वो श्रद्धा का विषय है। वो भारत को देखें, भारत की विविधता को अनुभव करें, भारत की सांस्कृतिक वैधव्य को, जो विविधता है, वैविध्य को अनुभव करें, वो भारत की जो है नेचुरल लैंडस्केप की जो डाइवर्सिटी है उसको अनुभव करें, भारत के भोजन की जो समृद्ध परंपराएं हैं और उनका जो वैविध्य है उसको अनुभव करें, और उसके साथ साथ में भारत को जाने और पहचाने। जब वो ये सब करेंगे तो निश्चित रूप से भारत के प्रति उनके मन में श्रद्धा और सम्मान दोनों बढ़ेगा और वो उनको भारत के लिए जुट जाने के लिए अभिप्रेरित करेगा। आइए हम सब मिलकर के भारत को जानना प्रारंभ करें, भारत को पहचानना प्रारंभ करें, भारत को जीना प्रारंभ करें और भारत को जान पहचान करके भारत के लिए जीना प्रारंभ करें।
1: कहते हैं नील गगन में सांध्य तारा का, पावस में प्रथम फुहारा का, और माला में जो स्थान प्रथम मणि का रमणीय होता है वो ऐतिहासिक होता है। भारत के विकसित होने की इस यात्रा में संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय की जो पहल है वो इसी तरह की ऐतिहासिक पहल है। आकाशवाणी पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
0: धन्यवाद।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094

0: मोहित चौहान और उज्जैनी की आवाज में अभी आपने सुना फिल्म तनु वेड्स मनु का गीत, राजशेखर के बोल और कृष्णा का संगीत था।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: सोनू निगम की आवाज, फिल्म का नाम संघर्ष, गीतकार हैं समीर और संगीतकार जतिन ललित।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य वो उनकी जवानी जो

0: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ। आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर।
1: वंदे मातरम सुजला।
0: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।
1: शस्य श्यामला मातरम वंदे।
0: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष। प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे।
1: जय घोष वंदे मातरम।
0: लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष।
2: और अब आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व में विकास को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का काम शुरू। भारत ने अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब कर भारतीय नाविकों वाले वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी हमलों का कड़ा विरोध किया। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने उत्तर कोरिया में ड्रोन घुसपैठ और शक्ति के दुरुपयोग के लिए पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 30 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। और पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के कदमों पर जानकारी दे रहे हैं।
1: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। इन पहलों में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का जज्बा और काम करने की लगन दोनों शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन कोशिशों को जिम्मेदारी और सबको साथ लेकर चलने की भावना से जोड़ा गया है, जिससे भारत की आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है। भारत ने इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखते हुए अपनी विदेश नीति में नई ऊर्जा भरी है, पुराने रिश्तों को मजबूत किया है और नए दोस्त भी बनाए हैं। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारत ने श्रीलंका को हर तरह की मदद दी। पानी साफ करने वाली किट, दवाएं व सर्जिकल उपकरण और 60 टन विशेष मशीनें शामिल थी। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। चक्रवात दित्वा के बाद प्रभावित इलाकों में रास्तों को फिर से जोड़ने और मजबूत करने के लिए भारत ने 14 लोहे के अस्थायी पुल भेजे। भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए श्रीलंका के बंदरगाह और नागर विमानन उप मंत्री जनित रवान कोदितवक्कू ने कहा कि भारत ने श्रीलंका के लोगों के प्रति प्यार और अपनापन दिखाया है। भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की, जो इंसानों को ध्यान में रखकर की गई भारत की कूटनीति का एक बड़ा उदाहरण है। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत अपने पड़ोसी देशों को सबसे आगे रखा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बांग्लादेश के रहने वाले फिजियोथेरेपिस्ट और योग शिक्षक डॉक्टर ज्योतिष को विश्वास ने कहा,
2: इंडिया जो किया हमारे लिए वैक्सीन, वो टाइम पे फास्ट रिस्पॉन्स किया और भेज दिया, हम भी वो वैक्सीन लिया तो हमारे भी बहुत अच्छा हुआ। हमारा रिलेटिव्स और देशवासी को लिए वो एक बहुत अच्छा तोहफा था इंडिया से, तो इसलिए हम बहुत कृतज्ञ हूँ।
1: पिछले 12 वर्षों में वैक्सीन मैत्री, ऑपरेशन सागर बंधु जैसी पहलों के जरिए भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे आया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्ष के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
1: भारत सरकार की शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
0: देश में 2014 में स्टार्टअप की संख्या लगभग 350 थी, अब 2,35,000 से अधिक स्टार्टअप और 131 यूनिकॉर्न है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत अब स्टार्टअप के मामले में विश्व का तीसरा प्रमुख देश है।
2: पिछले 12 वर्षों में सरकार द्वारा किए गए अनेक सुधारों जैसे स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत, अटल इंक्यूबेशन सेंटरों की स्थापना, फंड ऑफ फंड्स की व्यवस्था तथा अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल बनाने जैसे कदमों ने भारत के उद्यमिता परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया है। आज देश का स्टार्टअप इकोसिस्टम डीप टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष, रक्षा, कृषि प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी और स्वच्छ ऊर्जा जैसे विविध क्षेत्रों तक विस्तारित हो चुका है। शिखर सम्मेलन में जिन स्टार्टअप्स को विशेष रूप से प्रदर्शित किया जाएगा उनमें मेडेव प्लस भी शामिल है। भारत फ्रांस इनोवेशन ईयर के अंतर्गत आयोजित यह सम्मेलन दोनों देशों के बीच उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप्स और वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत बनाने का प्रयास है। आकाशवाणी समाचार के लिए नीस फ्रांस से शैलेश मेनन जी की रिपोर्ट के साथ सकलैन अख्तर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की और तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। एक रिपोर्ट।
2: बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने ड्रोन, सीसीटीवी और आधुनिक निगरानी प्रणाली जैसी तकनीकों का उपयोग कर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने पर जोर दिया। श्री शाह ने कहा कि सीएपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पूरी यात्रा के दौरान शिविर स्थलों पर प्रबंधों की लगातार निगरानी करेंगे। उन्होंने तीर्थयात्रियों के पंजीकरण, रहने की व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाओं और आपदा प्रबंधन सहित सभी जरूरी सेवाओं के लिए पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने मौसम की मौजूदा स्थितियों और पूर्वानुमान के अनुसार तीर्थयात्रियों के जत्थों की आवाजाही को नियंत्रित करने के भी निर्देश दिए। यह भी कहा गया कि यात्रा से जुड़े सभी स्थानीय लोगों और जानवरों का पंजीकरण किया जाए और उन्हें QR कोड वाले पहचान पत्र जारी किए जाएं। दीपेंद्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जमीन के बदले आम आदमी को उचित कीमत दे रही है।
3: जमीन हैंडओवर करने का काम कर दिया, डेली हैंडओवर हो रहा है। अब तो 100 किलोमीटर के आसपास की जमीन हम लोग हैंडओवर कर दिया है। नॉर्थ बंगाल में कुछ एरिया जो चिकन लेग से लगा हुआ है उसमें फेंसिंग का काम BSF चालू भी कर दिया है। हम लोग समयबद्ध तरीके से ये भी पूरा करने का काम करूँ, ये देश की सुरक्षा का सवाल है।
1: कैबिनेट सचिव डॉक्टर TV सोमनाथन ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनः परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनः परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। नीट पुनः परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच NTA ने 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी।

0: है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि असैन्य जहाज पर जानलेवा हमला और खतरनाक साधनों का उपयोग गंभीर चिंता का विषय है और ये बात अमरीका राजनयिक को बताई गई। इसी तरह के हमले में जहाज पर तैनात 3 भारतीय मारे गए। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से

0: इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि असैन्य जहाज पर जानलेवा हमला और खतरनाक साधनों का उपयोग गंभीर चिंता का विषय है और ये बात अमरीका राजनयिक को बताई गई। इसी तरह के हमले में जहाज पर तैनात 3 भारतीय मारे गए। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। ईरान ने कहा है कि अमरीका के साथ प्रस्तावित समझौते पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इससे पहले अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बातचीत में जल्द ही सफलता मिल सकती है। एक रिपोर्ट।
1: पश्चिम एशिया के लिए ये नई कूटनीतिक कोशिश बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पर हो रही है। राष्ट्रपति ट्रंप के हमले रद्द करने की घोषणा से कुछ समय के लिए ये उम्मीद जगी थी कि इलाके में बड़े टकराव को टाला जा सकता है। हालांकि ईरान का कहना है कि किसी भी अंतिम समझौते को मंजूरी नहीं मिली है और कई बड़े मुद्दे अब भी नहीं सुलझे हैं। मुख्य अड़चनों में ईरान का परमाणु कार्यक्रम, रोकी गई संपत्ति की बहाली और हॉर्मुज जल डमरू मध्य से जुड़ी भविष्य की सुरक्षा व्यवस्था शामिल है। भले ही बातचीत करने वाले पर्दे के पीछे काम कर रहे हों, लेकिन पूरे इलाके में सैन्य गतिविधियां जारी हैं, जिससे ये खतरा बना हुआ है कि कोई भी गलत कदम कूटनीतिक प्रगति को तेजी से पटरी से उतार सकता है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हॉर्मुज जलडमरू मध्य में भारतीय नाविकों वाले जहाजों पर ड्रोन हमले करने का आरोप लगाया है। उनका ये बयान भारत में अमेरिकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मिक्स को तलब कर हमलों का कड़ा विरोध करने के बाद आया है। दक्षिण कोरिया की अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को आज 30 वर्ष की जेल की सजा सुनाई। अदालत ने उन्हें उत्तर कोरिया के साथ तनाव बढ़ाने के लिए ड्रोन घुसपैठ का आदेश देने और दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ लागू करने को उचित ठहराने का दोषी पाया। पूर्व रक्षा मंत्री किम योंग ह्यून को भी इस मामले में 30 वर्ष की सजा सुनाई गई है। पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपेई की चेन सू यू को हराया। सेमीफाइनल में उनका सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज ग्रुप बी के मैच में सह मेजबान कनाडा का मुकाबला बोस्निया हर्जोगोविना से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। 10वां आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप आज से इंग्लैंड और वेल्स में शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच रात 11 बजे से इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। मौसम विभाग ने कल असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल पूर्वोत्तर क्षेत्र, बिहार, केरल, माहे, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों में तेज वर्षा की आशंका है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी, पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा तथा झारखंड में और आगे बढ़ गया है। कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण और गोवा में बिजली चमकने और तेज हवा चलने की संभावना है। अगले 2 दिनों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह के मौसम की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व में विकास को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का काम शुरू। भारत ने अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मिक्स को तलब कर भारतीय नाविकों वाले वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी हमलों का कड़ा विरोध किया। दक्षिण कोरिया की अदालत ने उत्तर कोरिया में ड्रोन घुसपैठ और शक्ति के दुरुपयोग के लिए पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 30 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। और पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

थोड़ी सी बेवफाई। जी हाँ, अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म का दो गाना। स्वर लता मंगेशकर और किशोर कुमार के थे। गीत को लिखा था गुलजार साहब ने और धुन बनाई थी खय्याम ने। कार्यक्रम का अगला गीत किशोर कुमार की आवाज में है। ये फिल्म है शर्मिली। गीत रचना नीरज की और संगीत सचिन देव बर्मन का।

0: सुमत हमसे खुद से हम।
1: किशोर कुमार की आवाज थी और फिल्म का नाम था शर्मिली। लीजिए कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए। मदन मोहन का संगीत है, राजेंद्र कृष्ण के बोल, लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम अदालत।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ

0: atrevit para ti par.
1: यह आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की। फिल्म का नाम है प्यार का मौसम। शब्दकार मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार राहुल देव बर्मन हैं।

नमस्ते दोस्तों, आ गई हूँ मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज के फनकार। आज के फनकार हैं गुजरे जमाने के जानी मानी ऐसी अदाकारा जो हैं बला की खूबसूरत, जिनके चेहरे पर है नूर।

0: अभिनेत्री श्यामा लाहौर में एक मुस्लिम परिवार में जन्मी थी। उनके माता पिता ने उनका नाम खुर्शीद अख्तर रखा था। फिल्मों में आने के बाद उनका नाम श्यामा पड़ा।
1: एक दिन मैं गई प्रकाश पिक्चर
0: जी।
1: प्रकाश पिक्चर वालों ने मुझे बुलाया और उसमें कहा, नई माँ एक पिक्चर थी, उसमें रोल था

0: छोटी लड़की का
1: जी,
0: तो मुझे बीजू भाई ने कहा कि तुम्हारा क्या नाम है, तो मैंने कहा खुर्शीद अख्तर। तो कह लगे खुर्शीद तो गाने वाली है, और फिर हमारे पास एक दूसरी भी है खुर्शीद, वो है खुर्शीद जूनियर, और ये तुम सीनियर कहाँ से आ गई
1: जी।
0: तो मैंने कहा तो फिर क्या किया जाए, तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं। मैंने कहा जैसे आप कहें। तो उन्होंने मुझे मेरा नाम श्यामा दिया।
1: अच्छा, उस समय
0: और
1: से आपका
0: मुझे
1: नाम
0: वो नाम इतना पसंद आया कि लोगों को अभी तक याद है कि श्यामा कौन है
1: जी। बिल्कुल।

दोस्तों 9 साल की नन्ही खुर्शीद ने पहली बार फिल्म जीनत की कव्वाली में बतौर सिंगर काम किया। उन दिनों नूरजहां की किसी फिल्म की शूटिंग चल रही थी और खुर्शीद अख्तर यानी श्यामा अपनी सहेलियों के साथ पहुंच गई दादर के स्टूडियो में शूटिंग देखने। तभी उस फिल्म के निर्देशक और नूरजहां के पति शौकत हुसैन ने पूछा कि तुम में से कोई लड़की इस फिल्म में काम करोगी। इस पर श्यामा ने तुरंत कहा, हाँ मैं करूँगी। बस इस तरह श्यामा का फिल्मी पर्दे की शुरुआत हो गई। हालांकि श्यामा के माता पिता हरगिज नहीं चाहते थे कि वे फिल्मों में काम करें, लेकिन श्यामा के जिद के सामने उन्हें झुकना पड़ा।

दोस्तों इस गाने में सिचुएशन ये है कि कार में गुरुदत्त और श्यामा हैं और रूठे हुए गुरुदत्त को श्यामा मना रहे हैं। उन्होंने आंखों और चेहरे के भावों से ऐसी खास अदायगी की है कि जब जब आंखों से और चेहरे से अभिनय की बात चलती है तो श्यामा का नाम आता है।

श्यामा को बचपन से ही एक्टिंग और डांस से बेहद प्यार रहा है। स्कूल के दिनों में लंच टाइम में वे डेस्क पर खड़ी होकर डांस किया करती थीं। बाद में उन्होंने नृत्य और गायन की बाकायदा तालीम ली। घर में फुर्सत के लम्हों में डांस की प्रैक्टिस किया करती थीं। अब सुनिए फिल्म शारदा का ये गीत।

0: श्यामा को फिल्म शारदा के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। फिल्म देखने की बड़ी शौकीन रही हैं श्यामा। खास बात यह है कि करीब करीब हर फिल्मों से जुड़ी उनकी याद आज भी ताजा है।
1: जब मैं साइड हीरोइन बनी
2: जी,
1: तो तब दिलीप साहब के साथ एक पिक्चर आई थी मेरी, उसका नाम था तराना
2: जी।

0: जिसमें थी मधुबाला और दिलीप साहब और श्यामा ही कहूंगी अपने आप को अब
1: बिल्कुल
0: और उसके बाद फिर पिक्चर मिली मुझे सजा। सजा पिक्चर में भी देवानंद साहब थे और निम्मी जी।
2: उस दौर के जाने माने सिनेमेटोग्राफर फली मिस्त्री ने श्यामा की खूबसूरती को कैमरे के लेंस से देखते हुए और सेल्यूलॉइड पर उतारते हुए उन्हें दिल में उतार लिया। फली मिस्त्री और श्यामा पहले प्यार के बंधन में बंधे और सन 1953 में फली मिस्त्री से उनका विवाह हो गया।

1979 में श्यामा अकेलेपन से घिर गईं और उनके पति फली मिस्त्री उन्हें इस फानी दुनिया में अकेला छोड़ गए। लेकिन श्यामा हिम्मत नहीं हारी, वे कदम दर कदम आगे बढ़ती गईं फिल्म संसार में। अभिनेत्री श्यामा ने तकरीबन 200 फिल्मों में काम किया। फिल्मी पर्दे पर लगभग एक दशक श्यामा का एक छत्र राज था, यानी पांचवें दशक में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में उनका नाम शुमार था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की इस छवि को श्यामा ने कभी धूमिल नहीं होने दिया। उन दिनों सशक्त अभिनय के चलते उनके पास फिल्मों की भरमार थी, उनकी अदाकारी के जलवे थे और श्यामा उन दिनों खूब व्यस्त रही फिल्म संसार में।

अभिनेत्री श्यामा ने पर्दे पर हर तरह के किरदार निभाए, लीड रोल भी किए, चरित्र अभिनेत्री के किरदार को भी बड़ी कुशलता से निभाया और कई फिल्मों में खलनायिका के रोल को भी पर्दे पर उन्होंने साकार किया। बहरहाल सुनिए बरसात की रात फिल्म का ये गाना।

0: मैंने ऐसे ऐसे डायरेक्टरों के साथ काम किया है कि वो कहते हैं ना कि प्यास बुझ गई
1: जी।
0: उसका नाम है बीमल रॉय
1: जी,
0: गुरुदत्त
1: जी,
0: कारदार साहब, फिर सत्यन बोस, फिर शक्ति सामंता, फिर ऋषिकेश मुखर्जी, फिर एसपी ईरानी, फिर बी मित्रा
1: जी,
0: और फिर आईएस जौहर।

0: लेकिन कई ऐसे भी डायरेक्टर आए जिनके साथ वाकई मेरी तमन्ना थी कि मैं काम करूं।
1: जी
0: वैसे तो मैंने बचपन से लेके अभी तक 60 साल हो गए इंडस्ट्री में, तो कहते हैं ना कि सिर्फ एक आदि बचा होगा बेचारा
1: जिनके साथ काम नहीं किया।
0: बेचारा कि जिनके साथ मैंने काम नहीं किया।
1: जी दोस्तों, आइए अभिनेत्री श्यामा की मशहूर फिल्मों पर एक नजर डालें। फिल्म मिर्जा साहिबा, खानदान, छोटी बहन, स्वर्ण सुंदरी, भाई भाई, छू मंतर, लाला रुख, दरवाजा, धूप छांव, भागवत महिमा, शबनम, निशाना, रूपलेखा, पतंगा, तकदीर, आसमान, ठोकर, मुसाफिर खाना वगैरह वगैरह। बाद की कुछ फिल्मों में अभिनेत्री श्यामा चरित्र अभिनेत्री के रूप में नजर आईं, लेकिन उन फिल्मों में भी उन्होंने अपने अभिनय की बारीकी से दर्शकों को खूब आकृष्ट किया। श्यामा की उस दौर की फिल्में हैं खेल खेल में, सेवक, अजनबी, नया दिन नई रात, हनीमून, सूरज और चंदा, कंगन, जिंदगी जिंदगी, पायल की झनकार वगैरह वगैरह। अभिनेत्री श्यामा चली गईं इस फानी दुनिया से, दे गईं फिल्मी दुनिया को खलिश और सन्नाटा। जब इंसान नहीं रहता तब वो हमारे आसपास और ज्यादा रहता है। उसके न होने का एहसास कचोटता है, दुख देता है। जब सुनी थी श्यामा जी की आवाज तो वे सामने थीं, उन्हें छूकर उन्हें नमन किया था, लेकिन आज सिर्फ उनकी आवाज है, वे नहीं है हमारे साथ।

0: शोध आलेख और स्वर रेडियो सखी ममता सिंह का, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले की। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: छाया गीत में आप सभी का स्वागत है। ये दुनिया ही अजीब है, यहाँ कोई प्यार मांगता है तो उसे मिलती है झिड़की। उस पर आलम ये है कि एक मुस्कान को भी लोग प्यार समझ बैठते हैं और संजोने लगते हैं ढेर सारे एहसास। मौका मिलते ही चल पड़ते हैं इन भावनाओं का बोरिया बिस्तर बांधकर अपनी मंजिल की ओर। पर कहते हैं ना, होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। एक ना एक दिन असलियत सामने आ ही जाती है और होता है कुछ ऐसा हाल।
1: लो जी बुझ गई बिजली प्यार की, हुआ खत्म फसाना दिल वाला, हुआ खत्म फसाना दिल वाला, जिसे डस गई, जिसे डस

0: एक बार जो दिल टूट जाता है तो गिनी जाती हैं अपनी कमियां। 100 नुक्स खुद में निकाले जाते हैं तो 100 इल्जाम दिए जाते हैं हालातों को। यूं होता तो ऐसा ना होता, यूं ना होता तो ऐसा होता। पर क्या इन कमियों को गिनकर कभी गुजरा वक्त और बिगड़े हालात सुधरते हैं भला? लेकिन करें क्या, मन तो यही सोचता रहता है कि शायद यूं होता तो यूं ना होता।
1: हारमोनियम बजाया, तबला बजाया, ये भी बजाया और वो भी बजाया, मगर अफसोस
2: गाना न आया, बजाना न आया।

देसी की सड़क टेढ़ी है देसी राग की ई ई ई ई चल मोड़ ले टमटम गले को गर्म कर ले गले को गर्म कर ले छोड़ अंग्रेजी में एक एटम हाँ अंग्रेजी में एक एटम हाँ अंग्रेजी में एक एटम ता तारा पापा

Life, absurd, absurd, absurd, absurd, lekin.

ना ना आया दिल भर को अपना बनाना ना आया गाना ना आया बजाना ना आया अरे ये नहीं आया अरे वो नहीं आया गाना ना आया।

जब अपनी कमियों और हालातों को दोष देकर कुछ आराम मिलता है, तब समझ आता है कि भाई सारा कसूर है इस दिल का। ये बदमाश न जाने क्या क्या मन में घोलता रहता है और मन इसके इशारे पर नाचता रहता है। लाख कोशिशें की जाती हैं कि दिल और दिमाग की दुश्मनी करवा दी जाए, न ये दिल बहकाएगा और ना ही डोलेगा मन, वरना इस दिल का क्या भरोसा, पता नहीं कब कहाँ कौन सी मुसीबत खड़ी कर दे।

छाया गीत में आप सुन रहे हैं दिल और दिमाग का सुरताल। लो जी, लाख समझा लो पर मन को तो करनी है अपनी ही। अब देखिए ना, आ पहुंचा है किसी के पीछे पीछे इतनी दूर, और उस पर ये दिल मन को बहका रहा है कि कुछ बदमाशी तो की जाए। अब इन दोनों बदमाशों के चक्कर में लेने के देने ना पड़ जाएं। जाने कौन सा सुर साध रहे हैं और कौन सा राग चल रहा है इनका।

बाघ अपने सुर और ताल मिला ले, वहां समझो इंसान का बंटाधार है। उस पर जो नजर आए कोई खूबसूरत चेहरा, तो मानो हम गए काम से। डरते डरते भी आ पहुंचे हैं उनके पीछे, लेकिन वो भाई वो तो वो हैं, क्या कहने।

निगाहे माशा अल्लाह बाकी अदाए माशा अल्लाह पलकों की उठती गिरती चिलमन तीर चलाए माशा अल्लाह दिल का करार हो तुम जाने बहार हो तुम करने को आए हैं नजारे हम

तुम्हारी सबसे आला ला ला ला ला। बात तुम्हारी रस का प्याला अपना तो हाल कुछ ना पूछो कैद हुआ है चाहने वाला जुल्फों के जाल में हम तेरे ख्याल में हम उलझे हैं अरमा हमारे हम बेचारे प्यार के मारे और तुम तो तुम हो बहरे बहरे लो डरते डरते।

0: दिल और दिमाग की ये तिकड़म कभी कभी काम भी कर जाती है। जी हाँ, भले ही सामने हमसे बातें ना की हों, लेकिन खिड़की से वो भी झांकते हैं चुपके चुपके। तो क्या उधर भी चल रही है दिल और दिमाग की सरगम? क्या वहां भी हो रही है वही तिकड़म? अब ये बात जाने भी तो कैसे। हाँ, एक रास्ता है
1: वो झरोके।

हूँ मैं क्या हूँ ये सब भूल चुका हूँ। यहाँ खड़ा अब मैं यही सोच रहा हूँ कि झरोखे से जो छाके तो इतना पूछूं मैं रुकूं या चला।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
1: भारत सरकार की शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम श्री अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान श्री शाह ने तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया।

0: श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक चलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की रक्षा अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। ये परिसर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल परिसर का हिस्सा है। रक्षा मंत्री ने भारत की तकनीकी उत्कृष्टता, रणनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय सुरक्षा में DRDO की मिसाइल प्रणाली तथा सामरिक समूह प्रणाली के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। श्री सिंह ने कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण साकार करने के लिए अनुसंधान और विकास के कई उपाय किए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रेलवे भर्ती बोर्ड प्रक्रिया पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। श्री वैष्णव ने पारदर्शी, सटीक और प्रौद्योगिकी आधारित व्यवस्था पर जोर दिया। श्री वैष्णव ने विभागीय परीक्षाओं को कंप्यूटर आधारित टेस्ट में बदलने की प्रगति की भी समीक्षा की। रेल मंत्रालय ने बताया कि भारतीय रेलवे ने वित्त वर्ष 2025-26 में 6 प्रमुख श्रेणियों में 47,000 से अधिक पदों की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर 43,000 से अधिक उम्मीदवारों की भर्ती की है। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। कैबिनेट सचिव डॉ TV सोमनाथन ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। इस बीच NTA ने 21 जून को होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमेरिकी दूतावास के उप प्रमुख जैसन मीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमेरिकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल हैं। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ प्रस्तावित समझौते पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। PV सिंधु ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया। अब उनका सेमीफाइनल में मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज ग्रुप बी में सह मेजबान कनाडा का मुकाबला बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Juliet Arakel. Prime Minister Narendra Modi today highlighted that from financial inclusion and entrepreneurship to education, healthcare, sanitation, housing, sports, science and governance, women are playing a prominent role across diverse sectors. In a social media post, Mr. Modi said the growing participation of women in emerging fields such as drone technology is opening new avenues of opportunity and transforming the development landscape across the nation. He noted that over the last 12 years, the NDA government has worked to further women-led development and this is visible across sectors. Union Home Minister Amit Shah has said that the government is fully committed to ensuring the highest level of security and a smooth pilgrimage experience for devotees undertaking the Amarnath Yatra. He said this while chairing a high-level meeting in New Delhi to review the preparedness of the Sri Amarnath Yatra. The Amarnath Yatra will begin on 3rd July and conclude on 28th of August. Fencing work in the border areas of West Bengal has started. West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari today informed the media at a program in Kolkata. Mr. Adhikari said people are giving their land for fencing along the Indo-Bangladesh border.
2: The work of handing over the land has been completed. So far, we have handed over land covering nearly 100 kilometers. In North Bengal, adjoining the Chicken's Neck corridor, the Border Security Force has already begun the fencing work. We will complete this task within the stipulation.

0: Akash Makhdum informed that the competition section will feature 144 films, including 52 international and 92 national entries. In badminton, PV Sindhu has stormed into the women's singles semi-final of the Australian Open tournament in Sydney. The third-seeded Indian outclassed Chinese Taipei's Chen Suyu in a one-sided quarter-final clash today. Sindhu will face top seed Akane Yamaguchi of Japan in the semi-final tomorrow morning. And that is the end of this news bulletin.
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात के 11:10 और 5 सेकंड हुए हैं। अब हमारी ये सभा यहीं समाप्त होती है। कल सुबह 5:55 पर आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।